0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है। यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है, सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवां रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल ना पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए, हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें, तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है, और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है। इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगशाला में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूं, वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म आयाम, सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में 1 बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आगे करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नासिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना व दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना। यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपालभाति के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना। कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर। उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना। पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कोहनी को निरंतर मोड़ते रहना है। दोनों हाथ कंधे के समांतर उंगलियों से कंधे को छूना है।
दोनों हाथ कानों से सटाते हुए ऊपर नीचे की ओर लेके जाना, उंगलियां कंधों पर रखकर कोहनियां गोल गोल घुमाना, दोनों हाथ घुटनों पर कंधे का संचालन करना। तो ये है कपालभाति प्राणायाम में द्वितीय चक्र सूक्ष्म व्यायाम का। कपालभाति प्राणायाम का तृतीय यानी तीसरा चक्र, प्रथम चक्र की भांति ही 5 मिनट इसे हमें करना है। तृतीय चक्र में सूक्ष्म व्यायाम आता है। बाएं जांघ पर दाएं पैर को मोड़कर रखें, ऊपर नीचे दबाएं व बाल मंचन आसन करना है। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करना है। पैर के दोनों तलवों को आपस में जोड़कर दोनों हाथों से पैर की उंगलियां पकड़कर बटरफ्लाई करना है। आइए अब कपालभाति के प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र और तृतीय चक्र के साथ में लाभ की ओर चलते हैं। चेहरे की आभा सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ पेट की सभी बीमारियों जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, शरीर की गांठें, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, एलर्जी एवं समस्त वात पित्त एवं कफ दोष, कैंसर की गांठें इत्यादि ठीक होते हैं और मन में उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आज आपको मैं ये बता दूं कि ये जो समय सारणी आज हम आपको बता रहे हैं, ये निरंतर ही योगशाला में हम आज आपको कराते रहेंगे, क्योंकि ये समय सारणी अगर आपने नित प्रतिदिन कर ली तो आपको कोई और प्राणायाम करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। इसके बाद आता है तीसरा यानी वाय प्राणायाम, 5 बार करेंगे। नाक से श्वास फेफड़ों में अधिक से अधिक भरें, फिर नाक से ही पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। पेट को ऊपर की ओर खींचें यानी उद्यान बंध में, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर की ओर उठाकर रखें यानी मूल बंध को, हुड्डी को कंठ से लगाएं यानी जालंधर बंध को, और एक त्रिबंध लगाकर साथ में करते हैं। इसके बाद एक प्राणायाम और आसन आता है जो कि है अग्निसार, सहायक क्रिया प्राणायाम। 5 बार फेफड़ों में नाक से श्वास अधिक से अधिक भरें, फिर पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर रोक दें। पेट को ढीला करके अंदर बाहर चलाना है। आइए अब अग्निसार के लाभ। समस्त उदर, मूत्र व किडनी संबंधी रोग इस प्राणायाम को करने से दूर होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम साथ ही साथ में हमें हाथों का, पैरों का और कंधे का करते रहना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समय सारणी में इसके अगले पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि लिसनर्स आपको पता है कि हम योग की एक समय सारणी को आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो पहला उसका पार्ट समय सारणी में हो चुका है जो वाय प्राणायाम तक हुआ था। आइए अब अनेक और प्राणायाम ऐसे हैं जिसे हम अपनी समय सारणी में ला सकते हैं। अगला प्राणायाम है अग्निसार, सहायक क्रिया प्राणायाम हम साथ ही साथ में करते रहेंगे। 5 बार फेफड़ों में नाक से श्वास अधिक से अधिक भरें, फिर पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर रोक दें। पेट को ढीला करके अंदर बाहर चलाना है। लाभ जो इससे होने वाले हैं वो है समस्त उदर, मूत्र व किडनी संबंधी रोग दूर होते हैं। अगला है उज्जयी, गले को सिकोड़ते हुए लंबी सांस भरें, गले से आवाज निकलेगी। कुछ समय के लिए हुड्डी को कंठ से लगाएं, फिर गर्दन सीधी करके दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद कर बाई नासिका से सांस बाहर निकाल दें। इसका लाभ थायराइड, टॉन्सिल व खर्राटे ठीक होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम उज्जयी प्राणायाम के अंतर्गत दाहिनी भुजा व बाई भुजा को क्रमशः 5 बार सीधा उल्टा घुमाते रहना है। इसी क्रम में दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम आइए करते हैं। लगातार 5 मिनट तक करना है। प्रथम चक्र दाई नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करके बाएं से श्वास अंदर भरें, फिर बाई नासिका को मध्यमा व अनामिका से
बंद करके बाहर निकालें। फिर दाईं नासिका से श्वास भरकर दाहिने अंगूठे से दाईं नासिका बंद कर लें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। सूक्ष्म व्यायाम अनुलोम विलोम के अंतर्गत 5 मिनट लगातार प्रथम चक्र की भांति ही करना होगा। द्वितीय चक्र सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथ ऊपर ले जाकर आपस में कलाई पकड़कर अंगड़ाई की मुद्रा में दोनों कंधों की तरफ कम से कम 2-2 बार स्ट्रेच करें। फिर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर सर के पीछे लगाकर सर का दबाव हथेली की तरफ और हथेली का दबाव सर की तरफ बनाएं। दायां हाथ दाहिनी कनपटी पर रखकर दबाव बनाएं, बायां हाथ बाईं कनपटी पर रखकर दबाव बनाएं एवं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जोड़कर मत्थे से ले जाकर लगाएं। हाथ से मत्थे पर उसी हाथ को विपरीत बल लगाने पर मेरुदंड में कंपन होने पर छोड़ दें। 3 अभ्यास करें। हाथ घुटनों पर रखकर कंधे का संचालन करें। यह सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज्यादा आवश्यक होता है हमारी शरीर की पूरी नस नाड़ियों के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट लगातार प्रथम चक्र की भांति, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र साथ में। सूक्ष्म व्यायाम पैर फैलाकर नी कप सिकोड़ना और छोड़ना, जांघ को नीचे से पकड़कर पैर से साइकिलिंग करना, पैर को गोल दाएं व बाएं घुमाना, तितली आसन करना। लाभ डिप्रेशन, माइग्रेन तथा आँखों के रोगों में अत्यंत लाभ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानेश्वरी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभू को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नई सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभू की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व की शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभंक्षाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी नागे

जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्र वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय।

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ अगत्स्य गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिन्नाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक। पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वापनोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवाय यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसी इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती। यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

0: तो दोस्तों, आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं, आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको से रूबरू कराते हैं। भोलेनाथ, भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो, चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप, अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो, गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी, हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है, अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं, तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: सम्मान करो इसका, शुक्र करो, क्योंकि प्यार
2: से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।

दोस्तों, शिव पूजन में बेलपत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप, पसीने और तप ऊर्जा से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे बेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। बेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि बेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। बेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम, तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता, शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें, तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होकर रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव। अनादि, जिसका आरंभ ना हो। शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं। एक सनातन सत्ता, इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा यानी

नहीं होते, तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं। होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गले में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी गंगा चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारी प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो फल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो, तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजी आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो यानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गोंडा की अपील।
1: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आज जुल्फ ने नहीं बल्कि मौसम ने खुद छाया किया है। जी हाँ, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून किया है रेडियो 11.6 FM और यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो आज की सुबह नो डाउट आप खुद भी इसको फील कर सकते हैं, उठकर देखा ही होगा आपने। सो आज की सुबह लिटरली इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो आज की सुबह सच में बहुत खूबसूरत है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो लेटे लेटे सोच रहे हैं कि आखिर किस खूबसूरती की बात हो रही है। तो मुझे लगता है इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहते ना कि नेक कामों में देरी कैसी, नेकी और पूछ नहीं। सो बिल्कुल, मुझे लगता है काफ़ी वक्त बाद आप ऐसी सुबह देखने वाले हैं। तो अगर नहीं उठ के देखा है अभी भी तो चलिए फटाक से उठ जाइए और देखिए कि आज की सुबह आपके लिए क्या पैगाम लेकर आई है, आज की सुबह आपसे क्या कहना चाहती है जो आप तक अल्फाज पहुंचा रही है। फिलहाल आप सभी का वेलकम करते हैं जो सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी से, जो सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, और जो सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से, आप सभी का मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान वेलकम करते हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा में। सो चलिए, आज का थॉट क्या है और आज की सुबह क्या पैगाम देकर जा रही है आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite, Arjun Khan.

अंजी, तो आज का थॉट क्या कहता है? आज का थॉट कहता है कि कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। वाह, क्या बात है। थॉट कहता है कि कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है, और ये कहना आज के थॉट ऑफ द डे का। आखिर किस बात पे कह रहा है ये थॉट? जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर आप तो अपनी जगह सही हो, लेकिन आपको समझाना जा रहा हो सही, और आपको कुछ ऐसी बातें कही जा रही हो या कुछ ऐसी बातों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो जिसके लिए आप जिम्मेदार हो ही नहीं, ठीक है, मौन हो जाना भी कई बार बेहतर होता है। कई बार शायद आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है और आप वहां मानते हैं कि हाँ, हो सकता है, वहां भी कई बार आप मौन हो जाते हैं। कई बार आप एक्सप्लेनेशन बहुत देते हैं, अरे ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, और आप सच में, आपको पता है कि ऐसा नहीं था, लेकिन वहां पर भी उस बात को समझा नहीं जा रहा है, बट आप शायद जुटे हुए हैं कि किसी तरह से हम कह दें। लेकिन कई बार कहते रहना और भी चीज़ों को बढ़ा देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो ऐसी जगह पे भी ज़रूरी नहीं है कि कहा ही जाए, रोका जा सकता है और इन चीज़ों को भी समझा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौन एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। मौन के कई मायने होते हैं, पर सबसे बेहतर होता है कि अगर आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या जवाब दिया जाए, जब कुछ भी नहीं है तो मौन हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, समटाइम्स के लिए बोला गया है, तो इसलिए मौन जो है वो आपको कई ऐसे लफ्ज या कई ऐसी बातें जो आप के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी और आप बोलने वाले थे, सो ऐसी चीजों से बचा लेता है ये मौन, राइट? इसलिए हमने कहा कि ये मौन कितना ज़्यादा अहम है, कितना ज़्यादा अलग है और कितना ज़्यादा अपना है। हर जगह लफ्ज नहीं होते बोलने के लिए। कई बार ऐसी होती है बातें कि कई बार तारीफ़ों में भी इंसान मौन हो जाता है, कहते कहते रुक जाता है। आखिर बात क्या होती है? क्यों? क्योंकि उसके पास जो फील कर रहा है उस वक्त, बिल्कुल उसी वक्त उसके पास वो लफ्ज़, वो अल्फाज ही नहीं है जिससे कि वो बयां कर सके, और इसीलिए शायद कहते कहते हुए शख्स रुक जाता है। कहता हुआ शख्स ये बात को, इसका आभास हो जाता है कि उसके पास ऐसा लफ्ज़ ही नहीं है कि जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, वो उसको बयां कर सके। यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो मौन हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपके पास हर बार कुछ है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि होते हुए वहाँ बोलने का मतलब नहीं होता है, इसलिए मौन हो जाना बेहतर होता है। कई बार कुछ बुरा बोलने से बेहतर हो जाता है कि मौन हो लिया जाए, और कई बार कुछ एक मैसेज होता है आपकी तरफ से जो कि बिना किसी शब्द के बोले आप अपने मौन से, अपनी चुप से जाहिर कर देते हैं, ये होता है मौन। सो मौन कभी कभी रह जाना गलत नहीं होता, पर हाँ, याद रखिए लफ्ज़ एक कभी कभी है, हर बार नहीं। तो कभी अगर कोई बात ऐसी लगती है कि कहा जाए और कह सकते हो तो बेशक कहिए, और कभी लगता है कि इस बात को कैसे कहा जाए, लफ्ज़ ही नहीं है, तो मौन हो जाना कोई गलत बिल्कुल भी नहीं है। कैसा लगा थॉट बताइएगा।

क्या बात है भाई, बड़ी प्रैक्टिकल बात कही है चैट बॉक्स पर आकर के हमारी प्रीति जी ने बहराइच से। कहती हैं कि वाद विवाद का हल मौन रहना ही सबसे सटीक हथियार होता है। ज़रूरत पड़ने पर बोलना भी ज़रूरी होता है, और कभी कभी नहीं तो लोग उसको कमज़ोरी समझ लेते हैं। बेशक इसीलिए मैंने कहा था कि लफ्ज़ कभी कभी का इस्तेमाल हुआ है, हर बार का नहीं हुआ है। सो मौन रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उन सिचुएशंस में मौन रह कर के समझ चुके हैं जहाँ पर आपके मौन रहने से चीज़ें आगे बढ़ी नहीं थी और आप उन सिचुएशन से आगे निकल गए थे। और आपने बोलते रहने का भी अंजाम देखा है कि समटाइम्स आपके सामने ही कुछ ऐसी बहस होते होते होते होते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको फिर रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर लगता है कि भैया अब कौन बुलाए और किससे इस मैटर को सही कराए, राइट? सो इसीलिए मौन रह जाना कोई ऐसी गलत बात नहीं है, और कभी कभी आप मौन रह कर के भी अपनी चीज़ों को जाहिर कर देते हैं। मैंने कहा ना, ये एक इशारे की तरह भी होता है कि आप अगर मौन हैं तो आप उससे जाहिर कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या फील कर रहे हैं या आपको क्या महसूस हो रहा है। इसके अलावा प्रीति जी लिखती, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। गीता श्रीवास्तव जी का भी मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग आरजू सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आज का दिन है बड़ा ख़ास क्योंकि आज ऐसा दिन है जिसके बाद अब इस महीने का आखिरी दिन कल आने वाला है। सो आज 29th ऑफ जून है और कल है 30th ऑफ जून, यानी कल जून जो है वो पूरी तरह से 2026 का हमसे विदा ले लेगा। लेकिन इस जून ने कुछ दिया हो ना दिया हो, अगर दशहरी आम आप तक पहुंचा दिया है सो यू आर ब्लेस्ड। सो भाई अगर दशहरी आम आप खा चुके हैं, उसका टेस्ट ले लिया है आपने, सो डेफिनेटली अब जो है वो आपके लिए जून एक मीनिंगफुल मंथ गया है। एंड इसके बाद मुझे ये बताइए कि दशहरी के बाद यूजुअली कौन सा आम आता है सबसे लास्ट के सीज़न में, सीज़न के सबसे लास्ट में आता है और उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, काफ़ी बड़ा होता है वो आम और उसका टेस्ट भी लोगों को पसंद आता है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। वैसे मीठे से याद आया, एक सवाल पूछना था, अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम बताएंगे कि आखिर मिठास के नापने का पैमाना क्या है। जी हाँ, अब आप सोचते हैं कि भाई जैसे लीटर में नापा जाता है कोई लिक्विड होता है, कोई चीज़ का मास होता है द्रव्यमान तो उसको अपने केजी में नापते हैं, किलोग्राम्स ग्राम्स में नापते हैं, एंड इसके अलावा दूरी को नापते हैं आप मीटर्स में। उसी तरह से जैसे आप सुनने को यानी बोलने को कोई बोलता है और सुनते हैं तो उसको डेसिबल में कहते हैं, उसी तरह से मिठास का पैमाना क्या होता है। यानी मान लीजिए कि कोई आम कम मीठा है कोई ज़्यादा, या कोई फ्रूट मीठा है या कोई बहुत ज़्यादा खट्टा है, सो उसको आखिर मिठास के नापने का पैमाना क्या है, आपको पता है या नहीं पता है, या आपके लिए भी ये नई बात होने वाली है। तो चलिए अगर आपको भी नहीं पता है तो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले गीता जी लिखती हैं कि सर हम लेडीज़ चुप रहकर कई बार कुछ रिश्ते बचा लेते हैं टूटने से। बेशक बहुत प्यारी बात कही आपने और बहुत बड़ी बात कही कि कई बार चुप रह कर के कुछ रिश्ते बचा लेते हैं। सो ये बड़ी बात है, मतलब खामोशी या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो हमने मौन की बात रखी है, ये जिसने भी अपना लिया, ये जो भी जान गया वो इसको जानता है कि ये कितना पीसफुली आपको रहने देता है। हाँ, कई जगह बोलना बहुत ज़रूरी होता है और बोलना भी चाहिए, जैसा कि आप खुद भी मानते हैं, क्योंकि देखिए लाइफ में किसी भी खाली एक चीज़ को फॉलो करके नई चीज़ें चल सकती है। लाइफ कभी हाँ या ना नहीं होती है, लाइफ हाँ और ना के बीच में होती है।

0: बात चली थी पैमाने की, भाई मिठास का पैमाना आखिर किस तरह मापा जाता है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कुछ मैसेजेस आ गए हैं हमारे श्रोताओं की तरफ से, और उसके बाद हम बताते हैं कि आखिर क्या है पैमाना मिठास मापने का।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो कई सारे मैसेजेस आ गए हैं जिसमें हम बता दें कि आशु जी लखनऊ से आ चुकी हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और दीपक जी हथियागढ़ गोंडा से मौजूद है, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। दीपक जी आपका स्वागत है, वेलकम है। साथ ही लिखते हैं कि आज मैं रेडियो सेट से भी अपने यहाँ कार्यक्रम सुन रहा हूँ और 55 किलोमीटर दूर है रेडियो स्टेशन से। वाओ क्या बात है। तो देखिए फ्रिक्वेंसी कितनी दूर तक पहुँच रही है। और मैं कहता हूँ कि जब दिल से जुड़ाव हो जाता है तो गोंडा FM महज 55,000 किलोमीटर दूर तक जाता है। यही तो खासियत है इस छोटे से भारत की, इस छोटे से जहां की, जिसको हम मिनी इंडिया कहते हैं। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। इसके बाद जो है प्रीति जी ने भी बताया है कि आम्रपाली आम भी सबसे मीठा होता है। मुझे लगता है ये तो खैर आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा मिठास वाला आम लग रहा है। कुछ तो कॉमन होता है कि भाई उसको पैमाने से माप कर बताते हैं कि हाँ इसकी स्वीटनेस का लेवल सबसे ज़्यादा है। एंड पसंद पे तो खैर सबके अपने डिपेंड करता है, किसी को दशहरी, किसी को आम्रपाली, किसी को चौसा, किसी को लंगड़ा, किसी को गवरजीत, न जाने कितनी किस्में होती हैं आम की। और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी ही पसंद के अनुसार उन आम को खाते हैं या पसंद करते हैं। एंड आशु जी लिखती हैं कि शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल ही रहा तो दामों मिले, शब्द नहीं मोल न तोल, क्या बात है। एंड यस, चलिए हम बताते हैं भाई, पैमाने की बात हो रही है और किस तरह से इसको मापा जाता है। सो फलों की जो मिठास है उसको मापने के लिए ब्रिक्स BRIX पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। और 1 डिग्री ब्रिक्स का मतलब होता है 100 ग्राम रस में घुली हुई चीनी, यानी शुगर की 1 ग्राम मात्रा। आम या किसी भी फल में ये मिठास जो है वो रेफ्टोमीटर से मापक जाती है, यानी एक उपकरण होता है जिसका नाम होता है रिफ्रेक्टोमीटर, जिससे किसी भी फल की मिठास मापी जाती है फलों में, है ना। और आम की अलग अलग किस्में जैसे दशहरी, चौसा, लंगड़ा, इसमें ब्रिक्स का लेवल क्या होता है ये भी इसी से पता किया जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी मिठास है जिसका पता जो है वो ब्रिक्स से लगाया जाता है। सो मुझे लगता है अभी तक आपको ही नहीं पता था कि भाई फलों में, और स्पेशली अगर हम आम की बात कर रहे हैं क्योंकि सीज़न उसी का चल रहा है, तो उसमें मापने का क्या पैमाना है, BRIX, ब्रिक्स। अब आपको पता चल गया है, अब आप मापने बैठ मत जाइएगा। चाहे जितने उपकरण लगा दे, लेकिन जो बात होता है कि भाई आप अपने घर के उस छोटे से बच्चे को दीजिए जो सच में एकदम कहते ना कि टू दी पॉइंट बात करता हो या बहुत क्लियरली चीज़ों को बताता हो, वो जब बताता है तो लगता है कि ये बहुत सही पैमाना है अपना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पैमाना जो है घर का वो छोटा बच्चा ज़्यादा क्लियर बताएगा जो इन सब से डर से निकला हुआ है, और वो क्लियर बोलता है कि भाई जो बात है वो है। वो बताता, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हैं मिठास, उसके चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन आ रहा है। सो वो चीज़ अपने आप में बयां कर देती है। एंड आई होप कि आपके घर में भी ऐसा कोई ज़रूर शख्स हो जो टेस्ट को लेकर के और उसके स्तर को लेकर के ज़रूर ईमानदारी से बता देता हो। भाई सभी ये घर में होते हैं, आपके घर में भी कोई है या नहीं, और अगर कोई नहीं है तो ये काम खुद क्यों नहीं करते हैं, हैं? चलिए बहुत बेहतरीन काम है इन चीज़ों को बताना कि भाई नमक कितना ज़्यादा कम है और मिठास कितनी ज़्यादा या कम है। जादू तेरी नज़र, भाई इतना खूबसूरत मौसम है और मंडे मॉर्निंग का शो है, सो ऐसे गाने तो आने ही थे ना। और अगर आ गए हैं तो मिलकर एंजॉय करते, क्योंकि बातों में बहुत कुछ है जो आज आपके लिए मंडे स्पेशल मॉर्निंग में आरजे अदनान साथ लाए हैं।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या बात है भाई, ऐसी म्यूजिक जो आपको गाने पर मजबूर कर दे वो चली आती है यूजुअली आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग होना में। बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक शार्क ऐसी भी जो तैरती नहीं चलती भी है। और जरा सोचिए आपके पीछे कंधे पे हाथ अचानक कोई चलते हुए रखे और कहे और बाजी क्या हाल चाल, और आप पीछे देखें मुड़ कर की शार्क है। सो क्या एक्सप्रेशन होगा आपका, एक्सप्रेशन होगा या सारे एक्सप्रेशंस कुल हो करके आप जो है वो जम जाएंगे। वैसे इस शार के बारे में मुझे भी नहीं पता था, इवन मुझे लगा कि जैसे ही मुझे पता चला, और ये बात आपको भी बतानी चाहिए कि एक ऐसी शार्क भी है जो तैरती नहीं बल्कि चलती भी है। कौन है ऐसी शार्क, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

देखिए हमारे वैज्ञानिकों का तो वैसे भी है, मतलब वैज्ञानिकों की ये बिरादरी होती है कि वो चैन से सो ही नहीं पाते हैं, वो कुछ ना कुछ खोजा करते हैं। दुनिया के सारे ही वैज्ञानिक एक ही जाति में आते हैं।

ऐसा है जैसे लगता है कि इंडियन है या नेपाली है या क्या है, हालांकि इंडोनेशिया के एरिया में ऑफ कोर्स इसको किया गया है, तो वैसे ही नाम है एंड इसका नाम है कादे देकेदवा। सो इस शार्क की सबसे ख़ास बात यह है कि ये समुद्र की तलहटी पर अपने पंखों की मदद से चल सकती है। मतलब अगर समुद्र की ज़मीन है तो वहाँ पर अपने पंखों की मदद से चल सकती है, इसी वजह से इसे वॉकिंग शार्क कहा जा रहा है। सो ये दुर्लभ प्रजाति जो है ये मेनली उथले कोरल रीफ एरियाज़ में पाई जाती है, और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस खोज से इंडो पैसिफिक जो एरिया है वो कोरल रीफ इकोसिस्टम को समझने और उसके संरक्षण यानी उसको बचाने में मदद मिलने वाली है। सो नई प्रजाति मिलने के बाद अब वैज्ञानिक शार्क की जो व्यवहारिक गतिविधियाँ हैं, समुद्री जैव विविधता है या समुद्री संरक्षण से जुड़े कई नए रिसर्च वो अब कर सकते हैं। सो ये खोज समुद्री दुनिया के उन रहस्यों को याद दिलाती है जिनके बारे में इंसान को अभी तक बहुत कुछ जानना है। मैंने कहा ना कि इंसान पहुंच तो गया है चांद तक, लेकिन नहीं पहुंचा है तो समुद्र की तलहटी तक। इसी जहां इसी दुनिया में मौजूद ऐसे ऐसे जीव हैं जिसको आज तक नहीं खोजा गया, इतने करोड़ों लाखों सालों बाद भी कुछ नहीं खोजा गया। यानी अभी भी जैसे ही समुद्र में थोड़ा सा भी अंदर वैज्ञानिक जाते हैं या खोज होती है तो इतनी नई नई चीज़ें निकल के आती है। ऐसे ऐसी गहराई में ऐसी ऐसी चीज़ें छिपी है जिसको शायद कहा जाता है कि अगर बाहर आ जाए तो हम हैरान हो जाए। सो ऐसा बहुत कुछ है और इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि ये खोज जारी रहेगी। और जब से हमारे वैज्ञानिकों ने, जब से इस दुनिया ने समुद्र में जाना शुरू किया है उसके बाद से उसको बहुत कुछ नया नया लिखने लगा है, बहुत कुछ नया सा मिलने भी लगा है। और इसके बारे में तो भाई आप भी समझते हैं क्योंकि हम खुद भी अपडेट्स आपको दिया करते हैं कुछ भी ऐसा होता है। सो फिलहाल जो प्रजाति खोजी गई है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है भाई साहब। मुझे लगता है अगर समुद्र तल की तलहटी में हम भी गए अगर आराम से तैरते हुए, तो मुलाकात के बाद चाय के लिए या कहीं किसी स्पॉट पर जाने के लिए कंधे पे हाथ रख के ये शार्क चल देगी, चलिए भाई साहब रास्ता हम बता देते हैं आपको अगर आप भटक गए तो। जस्ट इमेजिन कैसा होगा कि अगर आप भी समुद्र तट की तलहटी में जाते हैं और इस शार्क से आपकी मुलाकात हो जाती है। सो फिलहाल है तो शार्क, ये भी हो सकता है कि ज़्यादा भूखी होगी, तो खैर आगे आप जानते ही हैं, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मतलब ऐसा बहुत कुछ है हमारी इस दुनिया में और हमारे इस जहां में, इस समुद्र में, कि जिसको खोजना भी बहुत कुछ बाकी है और बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठना भी बहुत बाकी है। फिलहाल रहस्य तो खोजे जाते रहेंगे, रिसर्च चलती रहेगी, वैज्ञानिक भी जागते हुए सब कुछ खोजते रहेंगे, लेकिन आप जागते हुए एंजॉय करते रहिए अपना मॉर्निंग वाला शो।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मलंग मलंग इश्क है मलंग मेरा, ऑफ कोर्स वापस से आ गए हैं आपके मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। भाई साहब, स्कैम्स का आपको पता है कि हर रोज़ नए नए स्कैम्स हो रहे हैं। हालांकि आज इतने रोमांटिक से मौसम में मुझे स्कैम के बारे में बताना पड़ रहा है, दरअसल ये एक छोटी सी मजबूरी भी है, लेकिन एक बात है जो कि मेरे जहन में थी कि भाई इस तरह से शायद आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा नया टाइप का स्कैम है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस पर बिलीव करने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। और इस तरह से आपके सारे अकाउंट खाली हो जाएंगे अगर आप इसमें फंस गए तो। इवन कोई भी फंस सकता है, मैं भी बहुत इजीली फंस सकता था जब तक इसको मैं नहीं जान पाया था। सो मुझे लगता है कि ये जो स्कैम हम बताने वाले हैं वो आप तो जानिए ही जानिए, अपने उन लोगों तक भी ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा कि इस तरह का स्कैम है जिसमें लोगों को बिलीव में ले करके तब स्कैम किया जा रहा है। So, है ये क्या और किस तरह का है, आइए आपको बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

देखिए, ये जो स्कैम है वो किसी और तरह से नहीं बल्कि बहुत चालाकी से, और इस बात को देखते हुए कि लोग बिलीव आखिर किन बातों पे करेंगे, क्योंकि आप वहाँ परेशान हो जाते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल गुमान नहीं होता कि अरे ये भी कोई तरीका हो सकता है क्या। बट हाँ, होता है, ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे कि आपके साथ स्कैम किए जाते हैं। एंड ये स्कैम जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये व्हाट्सएप पे किया जा रहा है। एंड आपको बताया, व्हाट्सएप का नंबर उन्हीं के पास होता है जिनको आप देते हैं, जो आपके ख़ास कॉन्टैक्ट में होते हैं, राइट। बट अभी क्या है कि व्हाट्सएप वेब यूज़र्स के लिए बहुत परेशानी है। जो वेब यूज़र्स हैं, जो PC पे अलग अलग जगह अपने अकाउंट्स को लॉग इन करते हैं, सो CERT इन ने जारी कर दी है हाई वार्निंग। सो क्या है व्हाट्सएप को लेकर के ख़तरा, आइए बताते हैं। नया ख़तरा दरअसल ये है कि CERT इन के मुताबिक एक ख़तरनाक मालवेयर अभियान व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप यूज़र्स को निशाना बना रहा है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे किस तरह से निशाना बना रहा है, हो क्या रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि हैकर्स पहले किसी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करते हैं, फिर उसी अकाउंट से उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में .vbs फाइल भेजते हैं। ज़रा गौर करिएगा, ये हाईलाइट करने वाली बात है। कौन सी फाइल? डॉट लगा होगा और स्मॉल में vbs, और ये हम मेंशन करा दे रहे हैं आपके चैट बॉक्स पर ताकि आपको दिख जाए कि फाइल का एक्सटेंशन क्या है, आखिर किस फाइल के एक्सटेंशन से ये फ्रॉड किया जा रहा है। ऑपरेटर के थ्रू भेज दिया गया है मैसेज .vbs। जी हाँ, सो ये .vbs की फाइल भेजते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले किसी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करेंगे, अब जाहिर सी बात है व्हाट्सएप पे आप कैसे बिलीव कर लेंगे, आपको लगेगा भाई जिसका नंबर है वही होगा, जाहिर सी बात है। बट उसको भी हैक कर लेते हैं और उसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं। मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरा ही वेब जो अकाउंट है, कहीं मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ ऑफिस में, कभी मैं घर पे करता हूँ या कहीं किसी अलग जगह किसी काम को लेकर किया, और उसी में हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके पास .vbs करके फाइल जाएगी, जो कि आप अभी चैट बॉक्स पर आकर के चेक कर सकते हैं। मैंने भेजा है ऑपरेटर के थ्रू, ये चीज़ गई है .vbs। सो इसको भेजते हैं हमारे हैकर्स जो हैं। और सबसे बड़ा ख़तरा क्या है कि ये मैसेज किसी दोस्त को जाता है या रिश्तेदार को जाता है या साथ में काम करने वालों को जाता है। यानी इस अगर व्हाट्सएप अकाउंट से आता है, कोई आपका बहुत क्लोज दोस्त है जिससे आप रोज़ मिलते हो या अक्सर यह बात होती रहती है, या आपके रिश्तेदार से आ सकता है, आपके भाई बहन के पास से भी आ सकता है, आपके साथ में काम करने वाले हैं जिनके साथ आप रोज़ काम करते हैं उनके अकाउंट से आ सकता है। और इसीलिए लोग बिना सोचे फाइल खोल देते हैं कि भाई अरे ये तो अपना दोस्त है, अपना ही तो मुन्नू है, जो भी है। सो इसलिए क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। और प्रॉब्लम होती क्या है? प्रॉब्लम होती ये है कि फाइल खोलते ही सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है और पासवर्ड बैंकिंग डिटेल्स चोरी हो सकती है, क्योंकि जब भाई कोई जासूस उसमें एक्टिव हो गया है तो वो सारी एक्टिविटी आपकी देख रहा है और निजी डेटा तक हैकर्स पहुंच बन जाती है। जो आपकी निजी डेटा है, व्हाट्सएप पे आपके पर्सनल फोटोज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे जो बात है, उनको जो आपने मीडिया का आदान प्रदान किया, वो भी हैकर्स के हाथ में सीधे पहुँच जाता है। सो CERT इन की जो सलाह है वो क्या है? पहली बात यह है कि अनजान फाइल को तुरंत ना खोलें, भले ही कोई पहचान वाले के नंबर से आया हो, आपके खुद के भाई के नंबर से आया हो, आपके सहकर्मी के नंबर से आया हो, चाहे रोज़ जिनके साथ आप काम करते हैं, उनको तुरंत ना खोलें। जो भी कोई फाइल आई है अनजानी, पहले भेजने वाले से कॉल या मैसेज करके उसको कन्फर्म करें, भाई अगर मेरे फ्रेंड के कॉन्टैक्ट से आया होगा मेरे पास तो मैं डायरेक्ट अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा कि भाई तुमने कोई फाइल भेजी है क्या, वहीं से क्लियर हो जाएगा, कहेगा नहीं मैंने तो कुछ नहीं भेजा है, तो इसका मतलब फ्रॉड है। और .vbs लास्ट में लगा है तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसको तो टच भी नहीं करना है। सो या फिर अजीब भाषा या कुछ संदिग्ध मैसेज लगे, यानी कोई ऐसी बात अचानक से आपके ही दोस्त के, आपके ही रिलेटिव के या सहकर्मी के अकाउंट से ऐसे कोई अचानक सी ऐसी बातें हो जिसको थोड़ा आपको अजीब सा लगे, यार ये तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है,
एंड या कोई मैसेज बड़ा संदिग्ध लगे, अरे इसमें इतना ऑफर है और इसका मिल रहा है, आज ही करो, मैंने भी किया है करके इस तरह से, तो फिर आप उसको बिलीव ना करें उस पर। सो कैसे खुद को सुरक्षित रखेंगे? व्हाट्सएप और सिस्टम आपको हमेशा अपडेट रखना है, यानी अपडेट्स जो आता रहता है उसको आपको अपडेट करते रहना। दूसरी बात यह कि एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, अगर आप लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर चलाते हैं तो आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करें ताकि इस तरह के मालवेयर्स को रोके। दूसरा है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें, आपकी व्हाट्सएप सेटिंग में टू स्टेप वेरिफिकेशन यानी दो लेवल पे वेरिफिकेशन होगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक स्टेप पर तो आराम से भेद हो जाता है हैकर्स के ज़रिए, लेकिन टू स्टेप करते हैं तो वहाँ मुश्किल होती है उनको। और संदिग्ध फाइल और लिंक से आपको बचना है। जी हाँ, कोई भी ऐसी फाइल या लिंक आए जो डायरेक्ट आए, भले ही आपके अपने बहुत पहचान बहुत करीबी के उससे आए, लेकिन आपको उस पर टैप करके फौरन खोल नहीं लेना है, राइट? सो एक छोटी सी गलती क्या हो सकती है इससे, व्हाट्सएप पर आने वाली हर फाइल को बिना जांचे कभी नहीं खोलना है, बिना उसके बारे में जाने। सो ये छोटी सी गलती आपके पूरे अकाउंट, पूरी मेहनत और सब कुछ सेविंग्स हटा सकती है, लूट सकती है, इवन आपकी जो निजी चीज़ें हैं वो भी आउट हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने आपको तरीके भी बताए हैं कि कोई भी पहचान के नंबर से भी आता है और आपको लगता है कि यार ये .vbs है या .vbs नहीं भी है, कोई अनजान लिंक है, तो आप बिना उससे पूछे, बिना कॉल करे, बिना जाने आपको नहीं करना है इस तरह से, क्योंकि ये अब जो लोग भी वेब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, और वेब व्हाट्सएप वो होता है जो डायरेक्ट बिना एप्लीकेशन के आप किसी गूगल पे जा करके वहाँ पर वेब व्हाट्सएप के ज़रिए अपने अकाउंट को लॉग इन और लॉग आउट करते हैं, सो उनके साथ में ऐसे लोगों को ये शिकार बनाया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं कि आप यहाँ भी लगा रहे हैं, आप उसको वहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी खोल रहे हैं, हर पीसी पे कभी कभी काम पड़ रहा है तो उसको आप यूज़ कर रहे हैं, और उसी से आपके ऑफिस वालों को सोचिए कोई इस तरह का लिंक जाए तो आपको लगेगा कि ऑफिस का ही कोई है, बट ऐसे नहीं है, ये फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, इसलिए बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि भाई अब आप ये बात जान गए हैं और ये बात आप दूसरों तक भी पहुंचा देंगे। फिलहाल चैट बॉक्स पर .vbs करके जिस तरह से फाइल बन के आती है वो ऑपरेटर के ज़रिए आपको बता दी गई है, आप एक बार इस पे भी आके चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ याद रखिए कि बिना किसी पुष्टि के, बिना कोई कन्फर्मेशन के आपको अनजान फाइल या लिंक को ओपन नहीं करना है, भले ही वो व्हाट्सएप पर हो, भले ही वो आपके फैमिली मेम्बर्स के किसी अकाउंट से आया हो या किसी बहुत ख़ास इंसान के अकाउंट से आया हो, क्योंकि इसी तरह से इसमें ये लोग स्कैम करते हैं और इसी तरह से उनको पता होता है कि लोग बिलीव करेंगे और इजीली उनके ट्रैप में आ जाएंगे, इजीली उनके जाल में फंस जाएंगे।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: एक्सक्यूज मी मैम।
2: यस सर।
1: क्या ये लंच टाइम है?
2: जी नहीं सर, एक्चुअली आज बैंक में कैश खत्म हो गया है, आप कल आइएगा।
1: मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी।
2: सर थोड़ा शांति से काम लीजिए और धीरज से बात कीजिए।
1: ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, शांति को बुलाइए, आज उसी से बात करूँगा, और साथ में धीरज को भी बुलाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि ये दोनों मुझे बिना बताए साथ में कल क्या रहे।
0: हाँ जी, तो फिलहाल मैसेज आ गया है चैट बॉक्स पर, और आपको बता दें कि हमारी फैमिली मेंबर्स में से ऑफ कोर्स एक जो है रेखा कुशवाहा जी, उनके बेटे यानी आयुष्मान कुशवाहा का बर्थडे है। सो सबसे पहले आयुष्मान, आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और आपकी मम्मी को स्पेशल थैंक्स क्योंकि उन्होंने बताया कि आज आपका बर्थडे। सो ऑफ कोर्स आपका बर्थडे है और हमको पता चल गया है, तो स्पेशल तो होना बनता है बॉस। सो बहुत ढेरों सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की पूरी टीम की तरफ से, सभी लिसनर्स की तरफ से और आरजे अदनान की तरफ से, और आपको बर्थडे डेडिकेटेड एक ये स्पेशल सॉन्ग ज़रूर सुनिए। और हाँ, मम्मा को थैंक्स बोलना बिल्कुल भी मत भूलिए, एंड थैंक्स टू यू, दिस इज़ रेखा कुशवाहा जी।

0: Happy birthday to you, Ayushman. आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद. और ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि कई सारी विशेज चैट बॉक्स पर आ भी गई है. आइए बताते हैं किसकी क्या विशेज आई है.
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

सो भाई मैंने विशेस भेजी थी, उसके बाद प्रीति जी ने बहराइच से बोला है आयुष्मान बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, और बहुत सारे आपको गिफ्ट्स भी दिए हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नौ केक्स भेजे हैं प्रीति जी ने बहराइच से आयुष्मान आपको। सो आप खुश हो जाइए और आइसक्रीम भी है चार चार। इसके अलावा आशमिश जी ने लखनऊ से हैप्पी बर्थडे आयुष्मान बेटा बोला है, और उन्होंने भी बहुत सारे केक्स, बहुत सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स और बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं आपको। सो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सविता दुबे जी ने तो बहुत सारा सेलिब्रेशन आपके लिए मनाया, उन्होंने भी बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें आपको भेजी है। सो भाई हम सब लोगों की तरफ से आयुष्मान, आज का दिन तो आपका खास हो ही, लेकिन आपकी आने वाली लाइफ बहुत पीसफुल हो और आपके सपनों को पूरा करने वाली हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम दुआएं करते हैं। वैसे भी 89.6 FM जो चैनल है, दरअसल मिनी भारत जिसे हम कहते हैं, ये हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। ना सिर्फ सेलिब्रेट करता है बल्कि ये स्पेशल डे और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि उसमें शामिल हो जाते हैं आप और हम सब मिल करके हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है और खुशियों में झूमा जाता है। इसी के साथ मिश्र ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड सविता जी ने भी लिखा है सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात। साथ ही साथ गीता श्रीवास्तव जी ने बोला है कि भाई ब्रिस स्केल का काम उनकी जीभ खुद ही कर देती है, यानी उनको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है जो स्वीटनेस को नापे, बल्कि उनकी जीभ ये काम बहुत अच्छे से कर देती है। और मुझे लगता है कि लगभग हर घर में यही काम होता है कि भाई एक लोगों को फिर टेस्टिंग का काम दे दिया जाता है कि अच्छा टेस्ट करके बताओ और कितना है, क्या है, कैसा है, ये सब पता लगाया जाता है। सो ये सब बहुत ही एपिक होता है। ये इंडियन फैमिलीज़ का अपना एक मैजिकल वर्ल्ड है, एक पूरी दुनिया है जादुई सी जहाँ ये सारे कार्य किए जाते हैं। एंड इसके अलावा अब हम इसके बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको एक ऐसे रियल सुपर हीरो के बारे में बताएंगे जो कि कहीं ना कहीं कपल के नाम पे, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल बड़ी ही ट्रेंडिंग रील्स होती है, बहुत अलग अलग पोजेस में कपल्स फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, या फिर कहीं डेस्टिनेशन पर घूमने जाते हैं, या विशेस पूरी करते हैं, या गेम्स खेलते हैं। लेकिन एक ऐसा कपल जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के 80 साल से ज़्यादा वक्त दे चुका हो और इतना इंटेंस लव हो, और जो कहीं ना कहीं एक नहीं, दो नहीं, 80,000 बच्चों को पाल रहे हों, अब ज़रा सोचिए क्या इनको रियल हीरो और सुपर हीरो नहीं कहा जाएगा? डेफिनेटली कहा जाएगा। क्या है कहानी, कौन है ये लोग जिनके बारे में हम इतनी खुशी से बता रहे हैं? बहुत खुशी होगी आपको भी जानकर, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस से आएंगे और ज़रूर बताएंगे अपने रियल हीरोज़ के बारे में।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: सो फाइनली वो वक्त आ गया जब हम अपने रियल सुपर हीरो के बारे में आपको बताने वाले हैं। हमने जाने से पहले एक हिंट दिया था कि भाई एक ऐसा कपल जिनका इतना इंटेंस लव है, जो 80 साल तक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 80,000 बच्चों की परवरिश करते रहे, आखिर कौन है ये कपल, आखिर कौन है ये सुपर हीरो जिनके बारे में आज हम बताने वाले हैं। और ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चा किस्सा है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन 80,000 पेड़ इनके परिवार थे। 80 साल तक इन्होंने हर पौधे को ऐसा पाला जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। जी हाँ, दरअसल ये जो हम बात बता रहे हैं ये कर्नाटक के तुमकुरु ज़िले में जन्मी थिमक्का की ज़िंदगी शुरू हुई संघर्षों से कम नहीं थी। क्यों? क्योंकि कम उम्र में शादी, खदान में मजदूरी और एजुकेशन का मौका तक नहीं मिला। पर यूनिवर्स को लेकर के, इस दुनिया जहाँ के प्रति, नेचर के प्रति इनका प्रेम किसी से और किसी भी शिक्षा से बहुत बड़ा था। सो इनके पति चिक्कैया के साथ इन्होंने 10 बरगद के पौधे से शुरुआत की। सूखे इलाके में बिना संसाधनों के चिक्कैया गड्ढे खोदते और थिमक्का पानी ढोती हर रोज़ लगातार। सो वक्त के साथ ये नंबर्स बढ़ते गए और पौधा रोपण एक मिशन बन गया। गांव तक फैला ये अभियान, थिमक्का को एक नाम दे गया वृक्ष माता, यानी मदर ऑफ ट्रीज। जी हाँ, आज भी वहाँ के लोग प्यार से थिमक्का को वृक्ष माता के नाम से ही बुलाते हैं। 400 बरगद के पेड़ों को इन्होंने सालों तक बच्चों की तरह पाला। गर्मी, बारिश, सूखा, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका। फिर वो दौर आया

सबसे गहरा संदेश जो है वो ये है कि हमारा भविष्य तभी बचेगा जब हम धरती को बचाएंगे, सीधी सी बात कहती हैं। और आज ये बात दुनिया भी कह रही है और हर पर्यावरणविद भी कह रहे हैं। आज थिमक्का जी भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी लगाई हर हरियाली, हर हवा का झोंका, हर छांव इनकी कहानी ताउम्र कहता रहेगा जब तक हर वो एक पेड़ जिंदा रहेगा। वृक्ष माता थिमक्का ने सिखाया कि बदलाव के लिए बड़ी डिग्री नहीं, बस बड़ा दिल चाहिए। 80 साल तक सेवा करने के बाद पेड़ों की माँ थिमक्का हम सभी को छोड़कर चली गई और पीछे छोड़ गई हरी छांव और हरी भरी एक विरासत। जी हाँ, सो ये कहानी, मैंने कहा था ये कोई ऐसा किस्सा नहीं है जो किताबों का हो, बल्कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, ये एक सच्चा किस्सा है थिमक्का जी के बारे में, जिन्होंने किसी औलाद के हुए बिना 80 साल तक 80,000 से ज़्यादा पेड़ बड़े किए। कब लगाए, पूरी पूरी उम्र लगा दी उनको बड़ा करने में। ज़रा सोचिए, हम कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जब एक महिला और एक महिला पुरुष होकर के वो इस तरह से कर सकते हैं और जाने के बाद भी हर कोई याद कर रहा है। जाने के बाद का तो छोड़िए, मुझे लगता है उनके रहते, उनके जीते जी उनको जो सेटिस्फैक्शन मिला होगा वो उनको और कोई नहीं दे सकता है और कोई दे ही नहीं सकता है। सो शायद हमारे लिए भी एक छोटा सा स्टेप शुरू करने में हमको बहुत देर नहीं करनी चाहिए। वैसे हमारी रियल सुपर हीरो थिमक्का जी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? चूंकि वो अकेले शुरुआत उन्होंने की नहीं थी, उनके हस्बैंड चिकैया जी भी थे। सो थिमक्का जी और चिकैया जी, ये दोनों जो कपल थे, इन्होंने अपने प्यार को जिस तरह से पर्यावरण में उसके बीज बोए और आज 80,000 से ज़्यादा पेड़ तैयार हैं, तो क्या कहेंगे इस मोहब्बत को और क्या कहेंगे उस प्रेम को जो नेचर को लेकर था और आज नहीं बल्कि हमेशा और उससे बढ़ते पेड़ों में ये जिंदा हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? आप ज़रूर अपनी बातों को कह सकते हैं 89.6 FM की एप्लीकेशन की चैट पर आकर के। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, वापस से आते हैं। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो 11 89.6 FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपकी मॉर्निंग जॉक अर्जुनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट अर्जुनान।

सो भाई अब चलने का वक्त तो हो गया है, लेकिन उससे पहले हम एक ऑफ कोर्स कंटेंट आ चुका है हमारे पास में प्रीति जी का, बहराइच से क्या लिखती हैं ये बताते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लिखा है उन्होंने, विद्यार्थी मन सर्वश्रेष्ठ जीवन को लेकर के। आप लिखती हैं कि विद्यार्थी मन सर्वश्रेष्ठ जीवन, सबसे अच्छा विद्यार्थी जीवन, ना जिम्मेदारी का बोझ कोई, ना दुनिया का कोई गम, केवल पढ़ने पर फोकस, बेफिक्रा विद्यार्थी मन, वाद विवाद दीन दुनिया से दूर, सबसे अच्छा विद्यार्थी जीवन, मंजिल पाने पर भी जुड़े रहना विद्या से, यही होता एक वास्तविक विद्यार्थी व्यक्तित्व, मधुर वाणी और सदव्यवहार के सभी के प्रति रखना, वास्तव में सार्थक तभी होता हर विद्यार्थी का वास्तविक अर्थ, कोई साथ दे या ना दे लेकिन परदेश में भी साथ निभाती सबकी अपनी ही विद्या, विद्या धन वो धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना ही भाई बंधु बांट सकते हैं, इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। क्या बात है प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और विद्यार्थी मन मुझे लगता है आज आपके अंदर अभी भी है, जिस तरह से आपने डिफाइन किया है ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने सारे घर के काम के बीच में भी वक्त निकाल कर बड़ी ही प्यारी बात बता चुकी है, थैंक यू सो मच। और आपने लिखा है सल्यूट है ऐसे कपल्स को। सो ऑफ कोर्स हमने बताया था कि भाई किस तरह 80,000 पौधों को संरक्षित किया है इस कपल ने, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है आज तो काफ़ी कुछ आपके लिए रहा, बहुत मज़ा आया, आपने एंजॉय भी किया आज का मॉर्निंग वाला शो, एंड उम्मीद है कि आपको ये शो ज़रूर पसंद आया होगा क्योंकि आज हमने बहुत सारी बातें बताई। तो भाई वो स्कैम वाली बात अपने लोगों तक आप ज़रूर पहुंचा दिएगा ताकि आपके जो लोग हैं वो इस स्कैम से बचे रहे, क्योंकि ये स्कैम बड़ा ही ख़तरनाक है, ये व्हाट्सएप पे भरोसे के साथ ही किया जाता है। और फिलहाल आज का ये शो कैसा रहा ये आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल आरजे दान के चलने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले ये गाना आपके लिए जो आपकी एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी हार्ट बीट और साथ ही साथ आगे बढ़ने का इरादा। Stay tuned only on Radio Gyanasthali 89.6 FM.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: अरे सुना?
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
10: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
11: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
10: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
11: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
10: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
11: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
12: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद हम सभी मिलकर एक नया एपिसोड फिर से ला रहे हैं, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे गीतों की माला पिरोई गई है और हमारी प्यारी किरण दी की आवाज में है, जिसका साथ देने आ रही हैं खुशबू जी, जिमी जी, समता जी और स्वयं किरण जी। हमारी इस बार के गांव के गूंज का जो एपिसोड का नाम है वो है गोंडा। आइए तो चले हम गोंडा की गलियों का भ्रमण करेंगे सॉन्ग के साथ में।
13: श्वेता, खुशी, जिम्मी, कहाँ हो सब?
9: अरे इतना सन्नाटा क्यों है? और सबके चेहरे उतरे हैं, क्या हुआ? लो गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, धनिया की चटनी भी है।
13: कोई बात नहीं, हम अकेले ही खा लेते हैं।
14: हम लोग दुखी हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि पकौड़े नहीं खाएंगे।
15: जब इतनी गर्मी पड़ती थी तब हम लोग गाँव जाते थे, आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो लगा टेढ़ी नदी में बोटिंग करेंगे तो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
16: अब ना किरण दीदी का गाना सुन पाएंगे, हफ्ते में एक ही दिन तो होता है जब हम फ्री होते हैं। अब बताइए कैसे लोकगीत सुने हम?
9: सब अपने अपने मोबाइल यहीं छोड़ो और चलो मेरे साथ। सब हमारा हाथ पकड़ो और आंखें बंद करो, कोई चैटिंग मत करना, बस चुपचाप चलो।
14: कहाँ ले चल रही है भाई, हम लोग का किडनैप तो नहीं हो जाएगा?
15: बताइए ना किरण दीदी।
16: वहाँ हम सब बारिश में भीगने चल रहे हैं, मजा आ गया, कितनी तेज बारिश हो रही है।
9: देखो देखो समता छिप रही है, उसे बारिश से डर लगता है, सब पकड़ के ले आओ उसे।

0: आज पहली बार बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बारिश हो रही है। गाने पर डांस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है।
1: सच में अनोखा अनुभव है। इतनी तपती गर्मी के बाद ठंडी फुहार, बहुत मजा आ रहा है। किरण दी, एक और लोकगीत हो जाए।

0: चलो पानी रुक गया है, सब लोग कपड़े चेंज कर लो और देखो टेबल पर कितनी सारी चीजें सजा दी है मालती ने खाने के लिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
1: नमकीन पूड़ी, अदरक तुलसी की चाय, लहसुन का अचार, आम का गलका, मुंह में पानी आ रहा है।
2: अरे मेरी प्लेट क्यों हटा रहे हो तुम लोग?
3: पहले रलिया बैरन पिया का गाना, फिर कोई और सुनाइएगा।

0: यह लीजिए गर्मा गर्म पूरी, आज का दिन तो हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे मालती, हाथ में तुमने गुदना गुदवाया है क्या?
1: ये तो बहुत पेनफुल होता है मालती, ध्यान रखना, भीगने मत देना हाथ को, इन्फेक्शन हो सकता है।
0: हमें तो देख कर दर्द हो रहा है, मालती को कितना दर्द हुआ होगा, पर बहुत सुंदर लग रहा है।
2: अरे गुदवाई लो हो गुदनवा, गुदवाई लो।

0: हर चीज पर आपके पास लोकगीत होता है, कानों को कितने मीठे लगते हैं।
1: आप लोग हमको गोंडा का बाजार घुमा देंगी? बहादुर की लड़की आई है शादी के बाद पहली बार, उसको मुझे कुछ देना था तो सोचा वहाँ से कुछ खरीद लूं।
2: चलो हम चलते हैं गोंडा के चौक बाजार में, कपड़े की चूड़ी की बहुत सी दुकान है।
0: पर सब ई रिक्शा से चलेंगे, पहले किरण दी गाने के जरिए गोंडा बाजार घुमाएंगी, फिर शॉप पर लेकर चलेंगी।

0: हम लोग बाजार जा रहे हैं मालती, तुम आराम करना और अपने हाथ का ध्यान रखना।
1: खुशबू, गोंडा में दो बाजार हैं, एक रानी बाजार और दूसरा चौक बाजार, दोनों बहुत पुराने हैं।
2: अब तो दुखरनाथ मंदिर से GGIC तक कई ब्रांडेड शॉप खुल गए हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं।
3: लीजिए, ई रिक्शा आ गया, चलो सब लोग वहाँ। 89.6 FM पर गांव की गूंज चल रहा है। समता मैम, आपका फेवरेट लोकगीत।

0: यह रघुनंद मार्केट है, इसके बाद पीपल चौराहा, यहाँ से सब पैदल चलते हैं, तभी बाजार का मजा आएगा।
1: लौटते समय जय माता दी हॉट एंड कूल पॉइंट पर कॉफी पियेंगे, अभी तो पेट बहुत भरा है।
2: जगत, झाबड़ा, सेठ, लक्ष्मी, यह सब बहुत पुरानी शॉप है। चलिए चूड़ी वाली गली में चलते हैं।
3: ये गली तो कितनी पतली और कितनी सकरी है, और इतनी सारी शॉप्स। ये तो लखनऊ के अमीनाबाद से भी पतली गलियां हैं।
0: हाँ, चूड़ी की शॉप, लेस बहुत सुंदर मिलती है यहाँ, शादी का हर सामान मिलता है, और इन शॉप में बर्थडे पार्टी का सामान भी है, और ये शॉप है जहाँ कॉस्मेटिक सामान है।
1: खुशबू, यहाँ तुम्हें सब मिल जाएगा, पूरी गली में ज्ञानस्थली रेडियो सब सुन रहे हैं। हाँ भाई, यह वही किरण दीदी है जिनका गाना आप सभी सुन रहे हैं।

0: चूड़ी वाली गली को घूमने में तो लगता है पूरा दिन चला जाएगा। चलिए, हमारे मतलब भर का सामान हो चुका है,
1: चलिए फिर वापस चलते हैं। सीधे सीधे चलिए, हम लोग फल वाली मंडी के पास निकलेंगे।
2: ये गली चार अलग अलग सड़क पर खुलती है, क्रॉस के शेप में है।
3: यहाँ सारी बुक्स स्टेशनरी की शॉप है, इसके पीछे सब्जी मंडी, चलो ई रिक्शा लो, तुम्हें राधा कुंड घुमा दें।
0: हाँ, याद आया, कृष्णा मैम ने एनएसएस की स्टूडेंट्स को भेजा था इस कुंड की सफाई के लिए।
1: अब तो यह बहुत सुंदर हो गया है, दीपावली पर दिए भी जलते हैं।
2: हेलो, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो गांधी पार्क चलते हैं। वहाँ ना एक लेडीज क्लब का प्रोग्राम्स है, जिसके लिए बुला भी रहे थे।
3: चलिए चलिए, वहाँ तो बहुत मजा आता है, खूब खाने को मिलेगा, सब नाचेंगे गाएंगे, खूब मस्ती करेंगे।
1: वहाँ महात्मा गांधी की स्टैचू है, वह एरिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। क्लियर इंडिया मिशन के चलते इसे बहुत साफ कर दिया गया है।
2: जिम्मी खुशी समता, सबसे मिलो तुम लोग। रोली, तुम इन लोगों का ध्यान रखना। लाओ लाओ लाओ ढोलक, बस दो मुझे दो। इस सुंदर मौसम में धमाल करते हैं।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: प्यार ने जहाँ पर रखा है उसी के पीछे कोई खड़ा है। देखिए आपके पीछे कोई खड़ा है क्या? अरे देख भी लो भाई। अच्छा देख लिया। तो हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी भी? गुड आफ्टरनून, और आपका स्वागत करते हैं आपके आफ्टरनून वाला शो ज्ञानस्थली लाइव में। मैं हूं आपकी अर्जुनती और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, और भैया धड़कन में आज आपकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन डर की जो डराते कम हंसाते ज़्यादा है। आपको पता होगा ना कि घर पे जब मम्मियाँ होती हैं और अक्सर उनके जो जमा हुआ दही होता है अगर उसको हिला दो तो कहती हैं घर से निकल जाओ। मेरी मम्मी तो अक्सर मुझसे कहा करती हैं तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम दफा हो जाओ, तुम निकल जाओ। और ये मेरे पहले बचपन का डर हुआ करता था कि अरे अरे अरे मम्मी ने कह दिया घर से निकल जाओ तो अभी कहाँ जाना पड़ेगा। और अभी तो मुझे लगता है मम्मी बस कहें तो घर से निकल जाओ, मैं मुँह उठा के स्टूडियो ना पहुँच जाओ तो बताना, और उसके बाद मम्मी का खुद ही कॉल आएगा कि है घर आ रही हो कि नहीं आ रही हो, कि वहीं तारा बोलिए अब इस तरह भेज दे। वैसे ऐसा होता भी है मेरे साथ, फिलहाल कुछ डर कभी डर नहीं लगते, वो या तो हंसाते हैं या तो गुदगुदाते हैं। और भाई कुछ ऐसे भी डर होते हैं ना जो आपको लग सकता है कि ये कुछ डरावना नहीं है, लेकिन दूसरे वाले की जान निकल रही होती है। आज उन्हीं बातों पर करने वाले हैं बात, यानी कि उन्हीं डर पर करने वाले हैं बात। वैसे डर के आगे जीत है और जीत के आगे माउंटेन ड्यू है, ऐसा बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब हमें डर लगता है ना किसी चीज़ से, फिर चाहे हमें माउंटेन ड्यू पिला दो, चाहे थम्सअप पिला दो, चाहे कोला पिला दो, चाहे पानी पिला दो, चाहे हनुमान चालीसा सुना दो, डर डर ही रहता है। वो कहते हैं कि डर बहुत ज़्यादा लगता है, फिर रहा नहीं जाता, हाथ पैर सब कुछ हिल जाता है, पूरी दुनिया घूम जाती है, घर बैठे बैठे सर घूम आता है हमारा कहीं और। और उस डर को लोग हंसी में उड़ा देते हैं। भाई देखो बाकी डरों को तो इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर कोई कहता है कि ओ माय गॉड मुझे तो घुटन होती है बंद जगह से, तो लोग कहते हैं उन्होंने बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसे मत जाइएगा, आपको क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट वहीं पर जब कोई कहता है ना हमको कुत्तों से डर लगता है, लोग मजाक बना लेते हैं कि आए ये कैसा डर है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर कुत्तों से डर है, तुम इंसान हो कि नहीं हो। कोई कहते बिल्ली से डर लगता है, बिल्ली से डर लगता है, तुमको बिल्ली से डर लगता है, मतलब ऐसे जजमेंट वाली आंखें घुमा देते हैं कि बिल्ली से डर लगता है। और वहीं पर छिपकलियों को लेकर के चलता है कि छिपकली से बहुत लोगों को डर लगता है। इवन आपको भी मे बी लगता होगा, और स्पेशली गर्मियों के वक्त में जब आप बाथरूम के अंदर जाते हैं सोच के कि ठंडा ठंडा पानी से नहाऊंगा, गाना गाऊंगा, और ऊपर आपको दीवार में एक मोहतरमा चिपकी हुई मिल जाती है, और वहीं से चीख निकलती है ना कि आए हाय हाय मम्मी कहती क्या हो गया। मम्मी का बस चलता है तो झाड़ू वाड़ू साथ में लेकर आती है, अगर खाना बना रही है तो हाथ में बेलन ही रहता है। कहती क्या हो गया, पता चलता है कि बाथरूम में छिपकली थी। मम्मी छिपकली को छोड़ के खुद ही को पीटने लग जाती है कि क्या लड़की है ये, एक छिपकली से डर गई। भले ही वो खुद भी बचपन में डरा करती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे जैसा इंसान जो मकड़ियों से डर जाता है उसकी तो बात ही अलग है। मम्मी छिपकली देख के तब भी थोड़ा सा नरम दिल बरत देती हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा डर सकता है। मेरी मम्मी कहती मकड़ी से डर रही है लड़की, ये मकड़ी से डर रही है। फिलहाल आपके डर क्या है आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, और हम आज बताते हैं आपको वो दुनिया भर के सबसे फनी फियर्स जो लोगों को डरा रहे हैं प्लस आधी जनता को हंसा भी रहे हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता है। सुनते रहिए ज्ञान असली लाइव। बताइए छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं इन फनी फियर्स के बारे में, ताकि आप भी हंस सकें, गुनगुना सकें, मुस्कुरा सकें, और अगर आपको डर लगता है तो आपको ये ना लगे कि आप इस दुनिया में अकेले हैं, आपका डर भी वाजिब है। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस, और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

ये बताइए कि आपने कभी पीनट बटर खाया है? आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है पीनट बटर। हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं कहता है कि मूंगफली वाला मक्खन खाइए और बॉडी बनाइए, क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन चिल्ला रहे हैं ना हर कोई। बट अगर आपने खाया है तो आपने देखा होगा कि प्रोटीन के लिए वो जो पीनट बटर आप खा रहे हो वो आपके मुंह के आसपास कहीं ना कहीं चिपक जाता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, थोड़ा ड्राई ड्राई सा फील करवाता है। बट उस दौरान आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें इसी पीनट बटर का खौफ हो। आपने नहीं सोचा ना? मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे कुछ देर पहले ही पता चला कि लोगों को पीनट बटर खाने का भी खौफ होता है, और उनको इस बात का खौफ नहीं होता कि पीनट बटर के अंदर एलर्जी है या वो एलर्जिक हो सकते हैं। उन्हें इस बात का डर होता है कि उनके मुंह के ऊपर यानी कि तालू पर पीनट बटर चिपक गया तो क्या करूँगा मैं। मतलब वो साफ किया जा सकता है, पानी से साफ हो सकता है, आप नहीं चिपकता है, बट चिपक गया तो अब तो का कहाँ से मैं जवाब लेकर आऊँ। फिलहाल के लिए आप सुन रहे हैं 1180 लाइव, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने एफएम रेडियो 1189.6 एफएम, यही गोना शहर की धड़कन पर। एंजॉय कर रहे हैं आप अपना आफ्टरनून वाला शो मेरे यानी कि उन्नति के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं उन जबरदस्त हिला देने वाले फियर्स के बारे में, डर के बारे में, खौफ के बारे में, जो ना आपने सुने ना मैंने सुने, और आज हम दोनों मिलकर सुन रहे हैं और जान रहे हैं, समझ रहे हैं बड़े अजीब और गरीब डर होते हैं लोगों के, जिसमें से एक हमने जान ही लिया, नोमोफोबिया, अपने फ़ोन को खो जाने का डर, एग्रोफोबिया, जॉब मिल जाने का डर। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो फिटनेस तो बनाना चाहते हैं, जो चाहते तो हैं कि हम प्रोटीन इंटेक पूरा कर लें, और उसके लिए हो सकता है उनके डाइटिशियन ने सजेस्ट कर दिया हो या उनके जिम ट्रेनर ने सजेस्ट कर दिया हो कि पीनट बटर आप ले सकते हो एंड वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, आप उसे खा सकते हो, और उनको डर रहता है चिपक गया तो क्या करूँगा मैं, मर तो जाऊँगा यार। और ट्रेनर वहाँ पे समझा रहे बैठ के, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, नहीं चिपका जाता है कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, पानी पी लेना डर लगे तो। नहीं नहीं खाऊंगा मैं, खा लिया मैंने तो चिपक गया तो, और मैं मर गया तो तुम क्या करोगे उस चिपक से। और ट्रेनर सर पे हाथ रख के बैठा है कि ये कैसा क्लाइंट मिला है ना मेरे को, इसको इस बात का डर है कि अगर इसके तालू पर पीनट बटर यानी कि मूंगफली का मक्खन चिपक गया तो ये मर जाएगा। बट डर है तो डर है, ट्रेनर भी समझा रहा है बैठ के, नहीं ऐसा नहीं होता। और जब एक घंटा पूरी थेरेपी हो जाती है, एक घंटा अच्छी खासी बात हो जाती है, उसके बाद ट्रेनर हार के कहता है भैया तुम पीनट बटर ना खाओ, तुम कोई बटर ना खाओ, तुम प्रोटीन पाउडर ही पी लेना, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो पनीर ही खा लेना, मतलब कुछ तो ऐसा कर लो जिससे तुम्हारी बॉडी बन जाए। और हर बात में वो कह देते तो, अगर हो गया तो। आप उस इंसान की मेंटालिटी समझिए, उस इंसान का उस वक्त क्या नजरिया रहा होगा उस इंसान को समझाने के लिए जो इस खौफ से गुजर रहा है। अब आप ये भी समझ सकते हैं, भैया जिसको डर होता है वो डर होता है, डर की कोई वजह नहीं होती। जब आपको भूतों से डर लगता है, भले आपकी मम्मी हजार बार कहती रहे भूत कुछ नहीं होते हैं, जाओ बंद करके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, हाँ आपको तो लगता है ना कि है तो है, मतलब कोई तो पीछे खड़ा है ना मेरे। और ऐसा ही एक डर और भी है जिसको कहते हैं कि कहीं से किधर से कभी भी एक बत्तख मुझे निहार रही होगी। है बत्तख निहार रही होगी? जी हाँ, कुछ लोगों को डर होता है इस बात का कि हो सकता है कहीं दूर से किसी भी तरह से कैसे भी उन्हें एक बत्तख ताड़ रही है, देख रही है, घूर रही है, उन पर नजर रख रही है। मतलब बत्तखों के पास कोई और काम नहीं बचा है क्या लोगों को ताड़ने के अलावा? मतलब है, बट लोगों को डर होता है। वो जब भी कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें इस बात का डर रहता है कहीं उनके पीछे बत्तख तो नहीं चल रही, डक तो नहीं चल रही, हो सकता है वो पीछे से उसको देख रही हो। वो बीच पर जाते हुए लगता है कोई बत्तख उन्हें देख रही होगी, वो स्विमिंग पूल में जाते हैं उन्हें बत्तख देख रही होगी, वो घर के अंदर बेडरूम में सब तरह से लॉक करके बैठते हैं कि क्या पता बत्तख कहीं से झांक के उन्हें देख रही हो। अब आप भी सोचिए बत्तख को क्या काम है तुमको देखने का, बट डर तो डर है भाई, डर तो लगता है, क्या पता बत्तख भी देख ही रही हो तो आप क्या कर लोगे। तो भाई इस तो का जवाब तो किसी को भी नहीं मिलता है। बट हाँ, एक और है जो आपको, जिसका जवाब आई थिंक आपके पास होना चाहिए, वो ये है कि लोगों को मेहमानों से डर लगता है। मतलब वो जो अतिथि देवो भव हम कहकर जिनको सादर आमंत्रित करते हैं और कहते हैं आप हमारे घर पर आइए, हम डिनर करेंगे, लंच करेंगे, बात करेंगे, शात करेंगे, चिट चैट करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इन्हीं मेहमानों से डर लगता है, और वो जैसे ही मेहमान आते हैं वो रफू चक्कर हो जाते हैं, 9-2-11 कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ये मत कहना कि आजकल की जनरेशन यही कर रही है, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि ये डर है। मेहमानों के घर आने का डर है, मेहमानों से मिलने का डर है, मेहमानों से टकरा जाने का डर है, और किसी भी मेहमान से ना मिलना उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है।
वो घर जहाँ कोई नहीं आता, जहाँ कोई नहीं जाता, बस मैं ही मेरा खुदा, मैं ही मेरा भगवान। मैं अपनी पूजा करूँ तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना, मैं अपनी आरती खुद उतारूँ तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना। ये वो वाले लोग हैं, ये अपनी चीज खुद ही करना चाहते हैं और इन्हें किसी मेहमान से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, नक्को कत्ते ही नहीं, इल्ले नेवर। मेहमान का नाम सुन के इनके पसीने छूट जाते हैं और ये ऐसे भागते हैं जैसे कि अगर टेलीपैथी होती तो ये भागने की जरूरत नहीं होती, चुटकी बजाते और गायब हो जाते हैं और तब तक नहीं आते जब तक वो मेहमान चले नहीं जाते। ये वो लोग हैं जिन्हें अक्सर अकेला रहने की आदत होती है। फिलहाल आप बताइए कि आपको मेहमानों से डर लगता है क्या, कि मेहमान आते हैं तो आप भी अपने कमरे में भाग? हम तो ऐसा करा करते थे क्योंकि कुछ अंकल लोग मेरे घर में ऐसा आते थे भैया, आते ही पूछते थे अच्छे मैथ में तुमने क्या पढ़ा है, और मैथ में थोड़ा सा हम वीक थे, मैथ हमको देख के ही डर लग जाता था, वो भी स्पेशली 10th क्लास की मैथ। और जैसे ही वो आते थे और हम ऐसे गायब हुआ करते कि नहीं नहीं नहीं मैं तो हूँ ही नहीं, मुझको देखो ही मत, मैं घर का एक मामूली सोफा हूँ, मुझको मत देखो, नहीं तो हमसे मैथ के थ्योरी पूछ डालोगे और हमको नहीं आता। और ये भी डर नहीं है कि आप पूछोगे, आपके जाने के बाद जो होता है ना उसका डर मुझे ज़्यादा था। फिलहाल आप बताइए आपको इनमें से कौन सा डर सबसे ज़्यादा लगता है, मेहमानों वाला या फोन को खो जाने वाला? सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं ज्ञानसी लाइव अपनी आरजी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

हां जी, और एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम इस बेहतरीन से गाने के बाद, जो कि प्रीतम के म्यूजिक के साथ रेडी फिल्म का गाना था। कैरेक्टर ढीला है और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोरा शहर की धड़कन पर मेरे यानी आरजनति के साथ आपका अपना शो ज्ञानस्थली लाइव। और भैया, हमने बात कर ली डर की, खौफ की और डर की दस्तक की, और जाने से पहले एक आखिरी डर और बता जाते हैं आपको, वो है सीखने का डर। जी हाँ, अगर किसी इंसान से आप मिलो और वो कहे ना हमको सीखने का डर है, तो आप हंसिएगा नहीं, हा हा हा हा मत कीजिएगा, क्योंकि ये सच में होता है और इसका नाम होता है सोफोफोबिया। सोफोफोबिया सोफे का फोबिया नहीं है, सीखने का फोबिया है। वैसे पता नहीं क्यों ये सारे नाम एकदम अलग होते हैं। नोमोफोबिया ऐसा लगता है नाम का फोबिया है, सोफोफोबिया सोफे का फोबिया होना चाहिए था, बट नहीं, ये सीखने का फोबिया है, वो भी कुछ नया। मतलब कि अगर आप मुझे कहेंगे ना कि चलो यार कुछ बढ़िया सीख के आते हैं, साइकिलिंग सीख के आते हैं, वो हाथ पैर जोड़ के बैठ जाएंगे, कहेंगे नहीं हमको नहीं जाना, हम बिल्कुल नहीं जाऊँगा, हमको डर लगता है। और आप कहेंगे हैं डर लगता है साइकिल सीखने में, डर लगता है, वो कहेंगे नहीं हमको साइकिल सीखने में नहीं डर लगता, हमको नया सीखने में डर लगता है। और आप कहेंगे क्या है ये, कौन है ये लोग, कहाँ से आए ये लोग, ये लोग यहीं से आए हुए हैं और इनको डर है कि अगर ये कुछ नया सीखेंगे तो कुछ हो जाएगा। और वैसे एक महान इंसान ने भी कहा था, क्या कहा था, कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश वही है जिसे कुछ नहीं पता है, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी वही है जिसे सब कुछ पता है। और इस बात को इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया, दिल पे ले लिया, फेफड़ों पे ले लिया, और इसीलिए अभी कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि सोचते हैं ज़्यादा सीख लूँगा तो खौफ बैठ जाएगा, डर लगेगा, दुनिया जहान सब जहन्नुम हो जाएगा, सीखने का मतलब है नहीं, क्या करेंगे सीख के, एक दिन सब कुछ छूट जाना है। उड़ते हुए आसमान में बादल आपने हजार दफा देखे होंगे और आपको पता है कि कितने खूबसूरत नजर आते हैं। मेरा तो पूरा बचपन निकल गया इन बादलों के ऊपर चित्रकारी करते हुए। जी हाँ, मैं तो पूरे टाइम हमेशा बादलों को शेप ढूंढती रहती थी, ये आज इसका शेप दिख रहा है, कल कुत्ते का दिख रहा है, आज मछली का दिख रहा है, जलपरी भी दिख गई, मतलब सारे जितने भी शेप होते हैं मैंने सब के सब बना डाले बादलों में। लेकिन कुछ ऐसे भी जनाब और मोहतरमा हो सकती हैं जिनको इन्हीं बादलों से डर लगता हो। आसमान में उड़ते बादलों को ख्याल से भी वो लोग डर जाते हैं, ये सोच कर डर जाते हैं कि आसमान में बादल उड़ रहे हैं, मतलब बादल उड़ रहे हैं ऐसे कैसे उड़ रहे हैं, नहीं उड़ने चाहिए, घर में बैठना चाहिए उनको भी। ऐसे लोगों को लगता है कि बादल उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। बादल को भी नहीं पता ये बात कि कुछ लोग उसको सोच रहे हैं कि वो साजिश रच रहा है, वो तो बेचारा अपने फ्लो में उड़ता चला जा रहा है और वो कह रहा है अगर मैं नहीं उड़ूंगा तो ये सूरज का क्या होगा। आजकल जो इतनी गर्मी बढ़ रही है इसके पीछे का कारण भी यही है कि आसमान में बादल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बादल होते थे तो सूरज ज्यादा को थोड़ा ढक देते थे और हमको तसल्ली मिल जाती कि चलो सूरज की किरण धरती तक कुछ सेकंड के लिए सही, लेकिन रुकी तो बादलों ने टाटा बाय बाय कर लिया है। अगर उन्हें ये बात पता चल जाए कि लोग सोचते हैं कि मैं उनके खिलाफ साजिश कर रहा हूं, जो कि खुद हवा का बना हूं, पानी का बना हूं, क्या लगता है बादल आएंगे वापस, मुझे तो नहीं लगता। आप बताइए आपको क्या लगता है। आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि घड़ी ने इशारा कर दिया आपसे है वक्त विदा लेने का। तो हमारे साथ दिलीप जी जुड़े थे जो लिख रहे थे गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। गाने को लिखा है तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ और आगे बने हैं बहुत सारे इमोजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। स्माइल भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी इस खूबसूरत मुस्कान को देखकर हमारे चेहरे पर जो मुस्कान आती है, ओए होए, मतलब लिसनर की स्माइल मेरी स्माइल इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS यही हो जाता है, इक्वल टू होता है, वैसे इक्वल टू मैं ही बोल रही हूँ, आप मत बोलिएगा। बेबी जॉन हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने हमें सैंडविच, एवोकाडो और सैलेड भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही एवोकाडो खाने लग गई हूँ। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग ज्ञान असली रेडियो, गुड आफ्टरनून जनाब एंड गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप। इसके बाद लिखा है आशीष जी ने हाय हाय। फिलहाल आप सब हमारे साथ जुड़े थे और हमारे साथ भाई वो लोग जो फ्रीक्वेंसी से रेडियो गार्डन से एप्लीकेशन से जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन पर। आपका अगला कार्यक्रम है सेहत या सिंह, सेहत वाला कार्यक्रम सुनना मत भूलिएगा। अपनी आरजी नदी को दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
3: पहले घंटे से शुरू होती है बच्चे के दिमाग और जीवन की मजबूत नींव। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जुड़ी है एक नन्ही सी जान से और उसकी जिंदगी से, यानी कि उसकी जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श, और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हमने दोनों, यानी के सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। नमस्कार भैया जी, और भाभी आपका भी स्वागत है।
4: नमस्ते आरजी
3: जी, स्वागत है आपका भाभी और भैया। तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
5: आप दोनों लोग हमें ना बुलाते तो भी हम आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती है, और इनके प्रमुख कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
4: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है तो अब सबसे बड़ा काम हो गया है, बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
3: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि ये गोल्डन आवर और या ये सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
5: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने से सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
3: यानी ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
4: जी हाँ, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस चल रही है सही से या नहीं ये भी देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चा का पहला टीका माना जाता है। ये बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।
5: और अच्छी बात ये है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें बहुत सरल हैं। सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
3: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है इन सभी से बचाव के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम यानी कि सेहत सही और लाभकारी में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया भैया दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चों को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही जरूरी हैं?
1: बिल्कुल जरूरी है। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त में दिए जाते हैं। इनमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता है, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वह माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचने की बात नहीं है, यह बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत होने लगती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले ही बोल ना सकता लेकिन वो महसूस तो कर सकता है ना। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों की मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए जरूरी हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है।
0: वो क्या भाभी?
2: वो ये कि कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि ये बच्चे की पहली सुरक्षा कवच है।
0: तो साफ संदेश ये है आपका कि पहला पीला दूध फेंकना नहीं है, बच्चे को देना है।
2: जी बिल्कुल, और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है और बच्चा भी सीख रहा होता है, तो ऐसे में नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
1: सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
0: बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन भाभी, क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी?
2: हाँ, नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग से सलाह न दे। शहद, घुट्टी, पानी या कोई भी बाहर की चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। न पानी, न शहद, न घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
0: और जब गर्मी है और गर्मी में बच्चे का गला सूखे या उसके उसको प्यास लगे तो गर्मी में भी पानी नहीं देना चाहिए।
1: पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह ना दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
0: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हर रोना भूखा नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंडक, नींद या पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
2: बिल्कुल। अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना चाहिए। सिर्फ सलाह देना काफी नहीं बल्कि काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
0: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और आखिर में इसकी जरूरत क्यों है?
1: त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधे लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कांगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। या खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्म बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। ये केवल शरीर की गर्माहट नहीं है बल्कि ये भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा है।
0: भैया, क्या पिता भी ऐसा कर सकता है?
1: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं। खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वह थकी हुई हो। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुले रहें, बच्चा दबे नहीं और वह आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना जरूरी है।
2: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है।
0: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
2: और सच्चाई कि पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
0: और अब दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
1: पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग सलाह न दे।
0: तीसरी गलतफहमी, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दें।
2: और सच्चाई ये है कि पहले सही स्तनपान की सहायता लें। माँ को दोष ना दें, स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें।
0: अब आते हैं चौथी गलतफहमी पर, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
2: बिल्कुल नहीं। पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी, ये सब की भूमिका होती है।
0: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
1: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
2: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्यकर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
0: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
1: ये याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
2: हर घर 5 संकल्प ले सकता है। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल और केवल माँ का दूध ही देंगे और माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
1: 6वां संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
2: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चे को जीवन की सुरक्षित शुरुआत देते हैं।
0: बहुत स्पष्ट बात है कि बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
1: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता ले, ये सीखने की प्रक्रिया है।
2: माँ को ताना नहीं, सहारा चाहिए। बच्चे को घुट्टी नहीं, माँ का दूध चाहिए। परिवार को अफवाह नहीं, बल्कि सही जानकारी चाहिए।
0: साथियों, आज की 5 जरूरी बात याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें और उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दे। चौथा, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है, जिसे कंगारू केयर विधि भी कहते हैं। पांचवा, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
2: और 6ठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार न करें।
0: इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिल कर लेंगे सेहत की शपथ।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
3: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: पहला दूध पहला प्यार,
2: पहला घंटा जीवन का आधार,
0: माँ का साथ पिता का हाथ,
2: बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत,
0: सेहत सही लाभ कई।

0: निभाए।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अरे सुना?
1: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853346।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: यस अंशिका, मुझे कभी किसी की नीड ना हो, ऐसा अच्छी बात है। हम लोग बात कर रहे थे तो अंशिका ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको किसी की नीड ना हो। थैंक यू सो मच अंशिका, ये दुआ जो है ये हमेशा के लिए दुआ बन जाए मेरी। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो भाई जल्दी से आज के दिन की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया वाले शब्दों से हो गई है, क्योंकि हम लोग अभी ऑन एयर आते आते आते आते एक जो है हमारा जो नॉब्स है वो बटन दब गया, और जो हम लोग की बातें थी वो अभी वहीं आप तक थोड़ी थोड़ी पहुंच गई होंगी जो लोग सुन रहे होंगे। जिन्होंने नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, कभी कभी खाने में हल्का सा नमक पड़ जाता है लेकिन फिर हम उसे ठीक कर लेते हैं। तो क्या हाल है भाई आपका, क्योंकि हम लोग तो आ गए हैं आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो भाई आज है भोले बाबा का दिन, यानी कि आज है सोमवार, और सोमवार के साथ साथ में आज है बहुत ही बढ़िया सा खाना खजाना। खाना खजाना का दिन है और हम सभी लोग आ गए हैं फिर से। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आपके अपने पसंदीदा शो को और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आए। ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर रेसिपीज रह जाती हैं, लेकिन उसके पहले जो एक औपचारिकता है कि इस प्यारे से मौसम को एक बार हाय हेलो कहना ज़रूरी है, क्योंकि कल रात में बहुत बढ़िया वाली बारिश हुई है, बहुत बढ़िया वाली बारिश हुई है। मतलब थैंक यू गॉड इतनी अच्छी बारिश करने के लिए, क्योंकि आज मौसम इतना अच्छा है कि नॉर्मल से अगर एसी भी चल रही है ना बहुत ही कम पे या फैन पे तो अच्छा लग रहा है। सुबह से स्वेटिंग नहीं हुई है आज।
1: हाँ यस,
0: मतलब अंशिका को बहुत स्वेटिंग होती है बट मैं देख रही हूँ कि अंशिका को नहीं हुई है और मुझे भी बहुत होती है। कल इतनी ज्यादा गर्मी थी कि जैसे लग रहा था कि पूरे कपड़े निचोड़ डाले हम लोग पसीने से, इतनी ज्यादा।
1: और नीड भी हो रही थी कि थोड़ा इंद्र भगवान कृपा जो है वो अपनी कर दे।
0: हाँ,
1: तो उन्होंने सुनी मन की मुराद और थोड़ी कृपा कर दी। और भगवान से यही कहना है कि बस ऐसे ही मौसम रहे।
0: बिल्कुल ऐसे ही मौसम रहे। तो चलिए इस प्यारे से मौसम को हम फिर से एक बार ही आह्वान कर लेते हैं और एक बार फिर से बोल देते हैं एक साथ दोनों एक ही फ्रेम में,
1: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आज आपका दिन है लजीज वाला मंडे। तो इस लजीज वाले मंडे की करते हैं लजीज लजीज शुरुआत, क्योंकि आज तीखी चटनी और आलू टिक्की और ऐसी बढ़िया बढ़िया सी डिशेस,
0: गोलगप्पे,
1: ओ माय गॉड। मतलब किसी इंसान को अगर ये सारी चीजें ना खानी हो और उसके सामने आप नाम ले लें तो फिर मतलब क्या ही होता है। लेकिन आज के दिन मैंने सोचा है कि बहुत हो गई, मतलब वो प्रिकॉशन बहुत हो गया, तो अब अपने पुराने वाले रूट पे लौटेंगे लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल के साथ। क्योंकि देखिए जब भी आप खाने जा रहे हैं या कुछ भी ऐसे है तो खाइए, क्योंकि पेट को भी खुश रखना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके।
0: चलिए तो शुरू करें।
1: यस मैम।
0: अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो आज की अंताक्षरी में सबसे पहला मैं लेके आई हूँ आज एक स्वाद भरी एक पोयम है, एंड उसके बाद में रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि अंशिका लेकर के आती हैं। तो स्वाद भरी पोयम के लिए शुरू आज कुछ बोलेंगी नहीं अंशिका?
1: स्वाद भरी पोयम के लिए स्वादिष्ट हम ये कहना चाहेंगे कि कर रहे हैं बहुत ही अच्छी सी शुरुआत, कर रहे हैं बहुत ही अच्छी सी शुरुआत, क्योंकि आज हमने की है बहुत ही मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बात। तो चलिए अब सुनते हैं प्यारी सी कविता आरजे समता के साथ।
0: वाओ वेरी गुड, थैंक यू सो मच अंशिका,
1: वेलकम।
0: तो चलिए शुरू करते हैं। स्वादों की दुनिया अनोखी, स्वादों की दुनिया अनोखी, हर दिल को यह भाती है, जब लगती है भूख जोरों की याद रसोई की आती है, मसालों की वो सौंधी खुशबू मन में हलचल करती है, गर्मा गर्म थाली देखकर हर एक आंख मचलाती है, सुबह का नाश्ता चाय के साथ दिन की शुरुआत कराता है, दोपहर की दाल और चावल का स्वाद घर की याद दिलाता है, चटपटी चाट हो या गोलगप्पे मुंह में पानी लाते हैं, खाने के ये छोटे छोटे पल गम को दूर भगाते हैं, माँ के हाथों का वो जादू सूखी रोटी भी चमकाए, प्यार से परोसा हर निवाला सीधा दिल में उतर जाए, चटनी तीखी हो या मीठी हर खाने का मान बढ़ाती है, जामुन जैसी खट्टी मीठी यादें जीवन को महकाती हैं, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता रिश्तों को भी जोड़ता है, डाइनिंग टेबल पर बैठा हर शख्स अपनी थकान छोड़ता है, तारीफ करो उस बनाने वाले की जिसने यह हुनर पाया है, हर हसीन और जायकेदार सफर में खुदा का शुक्र समाया है।
1: वाह, मतलब बहुत ही प्यारी सी, और ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल एक जो रूटीन होता है ना वो इस कविता में मैम ने बहुत ही प्यार से इसको बताया कि सुबह की चाय से शुरुआत और फिर दोपहर के दाल चावल, बिल्कुल सही। मतलब मुझे तो आप कोई भी कितना भी अच्छा खाना, कितना भी बेहतर फास्ट फूड दे दीजिए और उसकी जगह अगर आप मुझे उसके साइड में दाल चावल दे दीजिए तो मेरा तो वही फिक्स्ड होता है, मुझे दाल चावल के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और दाल चावल के साथ लहसुन और टमाटर वाली चटनी हो,
0: ओह माय गुडनेस।
1: मतलब सब बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनको प्रॉपर ये होता है कि मुझे दाल चावल और सब्जी खानी है, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मुझे दाल चावल के साथ चटनी और अचार में से अगर एक भी कुछ मिल गया ना तो मेरे लिए वो इनफ हो जाता है।
0: और पता है दाल चावल जो होती है ना, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि हर जगह पे और हर एक इंसान को पसंद आता है।
1: हाँ,
0: और मुझे लगता है कि अगर हम कहीं, मान लो कि कहीं बाहर भी जाते हैं या फिर हम लोग, लगता है कि हम बहुत शादी का उल्टा सीधा खाना खाने के बाद में लगता है कि अगर कुछ पौष्टिक और एक पेट भरा वाला खाना अगर है तो वो दाल चावल की चावल। और सबसे पहला जो निशान हमारा जाता है ना वो दाल चावल की ओर जाता है, है ना। तो दाल चावल के साथ में अगर एक पतली सी रोटी हो जाए या फिर थोड़ी सी आलू की सब्जी हो जाए तो मतलब एक मील, एक प्रॉपर मील हो जाती है। और पेट भर कर के खाना जो है ना ये एक मतलब लगता है कि हाँ। और एक चीज बताऊं,
1: बताइए।
0: अभी अंशिका का मन कर जाएगा, दाल चावल वो भी हाथ से खाओ। मतलब मैं चम्मच से खाती हूँ लेकिन अगर ज़्यादा भूख लगी होती है ना तो दाल चावल अगर हाथ से खाओ तो उसका स्वाद जो है ना वो चार गुना बढ़ जाता है,
1: वो टेस्ट।
0: और उसके बाद में एक हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक हो उसके साथ में, क्या हो रहा
1: है, ये क्या हो रहा है मतलब।
0: और प्याज कुछ केवल ऊपर से छील करके उसको तोड़ा गया हो, प्याज को तोड़ा गया हो, काटा नहीं गया हो, तोड़ा गया हो और उसमें से उसका पानी निकाल दिया गया हो, बस और कुछ नहीं। मतलब एक प्रॉपर खाना जो है ना, आप कहीं भी ट्रैवल करें, मुझे एक चीज याद दिमाग में घूम रही है तो मैं उसको मद्देनजर रखते हुए बताऊं कि अगर आप कभी ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं ना अंशिका, 100% है कि आपका पेट खराब नहीं होगा और आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम भी बड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप अपने प्रिकॉशन से चल रहे हैं। मैं ये कहने का मतलब है कि हर एक सिटी, एक ऐसा सिटी कोई नहीं है जहाँ दाल चावल ना मिलते हो,
1: बिल्कुल।
0: और प्याज, ठीक है। तो आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हम बाहर का खाना नहीं खा पा रहे, तो एक दाल चावल एक ऐसी चीज है जो हर एक होटल्स में मिलती है, हर एक ढाबे पे मिलती है, तो आप इंजॉय करें और इसको खाएं। और दाल चावल क्यों याद आ गया,
1: दाल चावल आपकी प्यारी सी
0: पोयम में था, पोयम में था। अच्छा अच्छा।
1: और मुझे मतलब इस मौसम में जब ये ऐसी गर्मियों का मौसम होता है मई जून का, तो मुझे दाल चावल और उसके साथ कुरकुरी वाली सूखी वाली भिंडी बहुत अच्छी लगती है। आप सूखी भिंडी का सेंस ये है कि भिंडी को काट करके और उसको हरी मिर्चे में और सरसों के तेल में बनाइए, हरे मिर्चे में और सरसों के तेल में खूब अच्छे से लाल लाल उसको भून लीजिए, इतनी अच्छी लगती है दाल चावल से ना। और जैसे मैम ने अभी बताया कि ट्रैवल कर रहे हैं, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब्जी आप उसको कैरी कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि जब भिंडी को आप फ्राई कर देते हैं ना अच्छे से तो वो खराब नहीं होती है और फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, आराम से खा।
0: हाँ, ये भी बात सही है कि भिंडी हल्की सी कुरकुरी करके आप उसको फॉइल पेपर में रख करके ले जा सकते हैं और ये काफी दिन, मतलब एक दिन तो प्रॉपर चल ही सकती है। और पतली पतली रोटियां उसको आप पैक कर लें, मतलब जैसे ट्रैवलिंग के लिए भी, तो काफी अच्छा, मतलब इसमें एक सहारा मिल जाता है कि भाई हम अगर घर से दूर हैं और हम बाहर की चीज नहीं खाना चाह रहे तो एटलीस्ट एक भिंडी और एक रोटी तो हम खाई सकते हैं
1: आराम से। और मतलब ऐसी बहुत सारी, अगर हम आपको अभी बताने लगेंगे ना तो ये शो नहीं, मुझे लगता है पूरा शो निकल जाएगा और हम आपको बताते ही रहेंगे कि कितनी सारी चीजें आप ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। लेकिन जब भी बाहर जाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि नींबू जरूर ले लीजिए, एक नींबू, एक प्याज और अच्छा। अपने साथ नाइफ वगैरह ये सब रखना चाहिए।
0: हाँ, वो तो मेरी आदत है, वो तो मेरी आदत है।
1: कभी कभी होता है ना कि प्रॉपर सभी को नहीं होता है लेकिन कभी कभी मन करता है कि लाओ कुछ नींबू वाली चाय, जैसे बहुत लोगों को पीने का शौक होता है तो नींबू आप रख सकते हैं। डाइजेशन सिस्टम, अगर किसी को वॉमिटिंग होती है तो उसके लिए ले सकते हैं, वैसे सभी को नहीं होती है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अपने पास जब कुछ चीजें रहती ना तो अच्छा लगता है,
0: बिल्कुल।
1: तो आप ले सकते हैं और अपने सफर को यादगार बनाएं और खाते पीते जाएं। पता है सबसे अच्छी चीज सफर की यही होती है कि खाते पीते जाना चाहिए,
0: खाते पीते जाना चाहिए ना,
1: लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में,
0: कंट्रोल में खाना चाहिए ताकि हम घर से दूर हैं हाँ। और ऐसा नहीं कि हम फिर वहाँ से बीमार होकर के,
1: लेकिन कोल्ड ड्रिंक जरूर पीजिए,
0: मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा होता है ना।
1: हाँ, मैं राजस्थान गई थी अपनी मौसी के पास, रतनगढ़ में रहती हैं वो, तो पूरे रास्ते आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो काफी लंबा रूट था यहाँ से।
0: हाँ।
1: तो मुझे सफर में खाना नहीं पसंद है, क्योंकि मतलब बहुत कम खाते हैं लिमिट में, और वो रीजन ये है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, मतलब फिर कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो मैंने पूरे रास्ते में कम से कम नहीं तो दो चार बोतल तो पी ही थी।
0: और पता है ये भी कहा जाता है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ना तो आपको एसिडिटी नहीं होती।
1: हाँ।
0: है और आपने अगर कोई भी कचर पचर खाया होता है ना तो वो डाइजेस्ट हो जाता है
1: और पेट बहुत अच्छा भी रहता है। तो उसकी वजह से मेरा पेट अच्छा था, मुझे गर्मी नहीं लगी। क्योंकि सफर में ज्यादातर क्या होता है ना कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे गर्मी फील होती है, फिर मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैंने कंफर्टेबली उतना लंबा सफर तय किया, क्योंकि मैंने पहली बार उतना लंबा सफर तय किया था। और तब शायद मुझे 13-14 एज थी मेरी।
0: ओके।
1: तो बहुत मजा भी आया था, लेकिन नो डाउट। और जब भी आप एक बढ़िया वाली टिप देती हूँ, और सफर के लिए सबसे अच्छी है,
0: हाँ।
1: कि आप जब भी ट्रेन से सफर कर रहे हो, आप एसी में सफर कर रहे हैं, आप किसी भी मतलब में सफर कर रहे हैं, खिड़की के किनारे की जगह जरूर लेनी चाहिए।
0: ओके।
1: और बाहर के नजारे जरूर देखने चाहिए।
0: हाँ, थोड़ा सा ना फिर मूड भी अच्छा रहता है और एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ।
1: अगर आप ट्रेन से गए और आपने बाहर का नजारा नहीं देखा तो क्या खाक ट्रेन से गए?
0: बिल्कुल,
1: फिर कोई मजा नहीं,
0: कोई मजा नहीं।
1: मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको खिड़की की सीट मिल जाती है और वो आराम से खिड़की बंद करके, अरे मुझे सोना है, सोना था तो घर पे सोते, सोना था तो इतना खर्चा करके ट्रेन में आप सोने आए,
0: सोने आए।
1: सफर का मजा लेना चाहिए।
0: एग्जैक्टली,
1: तो मजा लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत कम मिलते हैं जब आप बाहर घूमने जाते हैं। मतलब मुझे तो वो आज भी याद है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी। ओके, अंशिका मैम, आप कहाँ गए थे सफर में? मैं आपको बताऊं नागेश्वर जी, कि मैंने एक अभी शेयर किया कि मौसी के यहाँ गए हुए थे, और एक हम बालाजी गए थे, वहाँ पे वो भी लंबा रूट था, वहाँ पे भी हमने बहुत सारी मस्ती की थी। फिर हम वैष्णो देवी घूमने गए थे, वहाँ भी बहुत सारी मस्ती की थी, वहाँ तो बर्फ वगैरह भी थी, क्योंकि वो अक्टूबर का महीना था जब हम लोग घूमने गए थे वैष्णो देवी, तो बहुत मजा आता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप मस्ती करते
0: कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं
1: या नहीं करते हो।
0: हाँ।
1: अब किसी को ट्रेन में भी होता है मोबाइल चलाते, मुझे तो पता है
0: बड़ा,
1: सफर में कोई मोबाइल चलाता तो बहुत गुस्सा आती,
0: खराब लगता
1: कि यार घर बैठ के चला लेते। और हम लोगों ने तो मतलब क्या बता दूं, शेयर करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा
0: जी।
1: तो अब आते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ पे।
0: ओके,
1: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, जीतना है तो खुद से जीतो, क्योंकि जो खुद से हारते हैं वो कभी नहीं जीतते। खुद से जीतने का मतलब बहुत सारा हो सकता है, कि आपके मन में कोई डर है, आप उससे जीत जाइए। आपको लगता है आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप उसे जरूर करिए। पता है, जैसे बच्चे के साथ होता है मैम, कि अंधेरे कमरे में जब उसे ना जाने के लिए कहो,
0: हाँ।
1: तो उसके मन में उस अंधेरे कमरे का डर बैठ जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा ये सोचेगा कि मुझे क्यों मना किया जा रहा है, अब तो मुझे जाना ही है, तो आपको हो सकता है दो बार डर लगे, लेकिन तीसरी बार आप जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि उस अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं था। इसलिए हमेशा अपने डर के आगे चलना चाहिए, कभी अपने डर के पीछे मत चलिए, क्योंकि डर के जो पीछे चलता है ना वो कभी नहीं जीतता। अगर जीतना है तो हमेशा अपने डर से आगे चलना चाहिए।
0: ओके,
1: अगर आप अपने डर के आगे चलेंगे तो कभी कुछ आपको नहीं डरा पाएगा, कोई सिचुएशन नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमेशा हमारे डर का गुलाम हमें नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा डर हमारा गुलाम है।
0: एग्जैक्टली, तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में बहुत कुछ आज सुनने को मिला अंशिका से, एंड पोयम भी आई होप सो आपको पसंद आई होगी।
1: बहुत, बहुत, बहुत।
0: तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज बहुत सारी रेसिपीज को लेकर के आए हैं, कुछ मास्टर शेफ्स की हमारे पास रेसिपी है, एंड अंशिका पहले बताएंगे कि आज अंशिका क्या लेकर के आई है।
1: आज मैं लेकर के आई हूँ जामुन की चटनी के साथ खट्टी मीठी और थोड़ी तीखी सी, जो मैं नहीं खा सकती लेकिन आपको बता सकती हूँ, वो सूजी की टिक्की।
0: और मैं बताऊंगी आपको परवल की डिलाइट।
1: ओह माय,
0: परवल डिलाइट मतलब ना कि एक हल्का सा मीठापन होगा, और परवल जो सब्जी है वो आई थिंक बच्चों को नहीं पसंद होती है। तो अगर बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन अगर हम उनको डिलाइट्स बना के देंगे ना, तो वो आपसे बार बार बोलेंगे कि भाई हमको यही वाला स्वीट में चाहिए। तो काफी चीजें बताने के लिए, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे वन बाई वन सारी रेसिपीज को आपके साथ शेयर करने।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
9: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट आज के खाना खजाना की बहुत ही बढ़िया वाली रेसिपी को शुरू करते हैं, और उसके बाद तो बहुत ही है ही वन बाई वन, लेकिन देखते हैं अंशिका पता नहीं कौन सा एक नया नाम ले रही थी। क्या ले रही थी अंशिका?
10: जामुन की चटनी और सूजी का रोल।
9: सूजी का रोल,
10: रोल
9: टिक्की, रोल रोल या रोल टिक्की जो भी कह सकते हैं।
10: रोल टिक्की मतलब
9: पहले तो मुझे जामुन की चटनी ही सुनना है कि कैसे होती है जामुन की चटनी।
10: चलिए अब बताते हैं जामुन की चटनी कैसे बनती है। तो सबसे पहले जामुन की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए जामुन, फिर चाहिए काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये तीन चीजें चाहिए आपको। आप बताते हैं कि इसे बनाना कैसे।
9: ओके,
10: तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जामुन के जो जामुन को पहले तो अच्छी तरीके से दो पानी आप धुल लीजिएगा। उसके बाद उसके जो बीज हैं वो आपको निकाल लेने हैं और पल्प अलग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में हल्का सा तेल गरम करना है, उसमें जीरा, राई और करी पत्ता और सौंफ का तड़का लगाइए, ठीक है। फिर जामुन का जो पल्प आपके पास है उसे उसमें डाल करके कुछ मिनट आपको पकाना है। फिर इसमें काला नमक, लाल मिर्च आपको डाल देनी है, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको और पकाना है। थोड़ी देर पकाने के बाद में जब वो पूरा तड़का और ये जो सारी चीजें आपने डाली है जब पूरी एक सार हो जाएंगी, उसके बाद आपको उसे थोड़ी देर ठंडा हो जाने देना है।
9: ओके,
10: ठंडा होने के बाद कढ़ाई से निकालिए, आप रोटी से चाहें तो रोटी से खाइए और पराठे से चाहें तो पराठे से खाइए।
9: मतलब जामुन की चटनी तो यार मैं पहली बार सुन रही हूँ, पता है मैंने तो कभी नहीं सुना जामुन की चटनी। तो वही हम कहते हैं ना, सबसे पहले शो के पहले भी हम लोग ने हमेशा से यही कहा हुआ है कि कुछ इम्पॉसिबल चीजें ही पॉसिबल कर दिखाता है हमारा 89.6 FM।
10: बिल्कुल, क्योंकि देखिए सिंपल चीजों में मजा नहीं आता है, और वैसे
9: एडवेंचर होना चाहिए,
10: एडवेंचर होना चाहिए। और खाने में और किचन में अगर फीमेल खड़ी है और कुछ एडवेंचरस नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं आता।
9: ठीक, तो हम भी अब एडवेंचर करने जा रहे हैं अंशिका, तुम्हारे मोटिवेशन के
10: कारण। बिल्कुल मैम, आप तो एडवेंचर जरूर करें और फुल्ली फुल वाला
9: एडवेंचर करें।
10: मतलब फुल्ली फुल का मतलब पता है क्या होता है?
9: हाँ,
10: फुल्ली फुल का मतलब होता है एंजॉयमेंट
9: की, मतलब एक भी कोई कसर नहीं छोड़नी,
10: कोई कसर नहीं। पता है अगर आप कहीं मतलब कुछ भी इंजॉयबल करने जा रहे हैं तो वो खुल के होना चाहिए, मतलब ये लगना चाहिए कि हाँ दो दिन मैंने स्पेंड किए
9: धमाल वाले किए। और यहाँ पर जो जो कि अपने फुल मस्ती का मतलब है कि अगर हम किचन में गए हैं तो धुआंधार बन करके हम खाना बनाएं, चाहे फिर वो आर हो या पार हो, चाहे वो दाल चावल की जगह वो खिचड़ी बन जाए, पलवल मतलब चटनी इसकी क्या कहते हैं, किसकी बनाई तुमने अभी,
10: जामुन
9: की चटनी की जगह हरे मिर्च की चटनी क्यों ना बन जाए।
10: अब वो तो आप पे डिपेंड,
9: वो धुआंधार मतलब लगा देना है, मतलब पूरा
10: बैटिंग
9: अपना
10: करनी है,
9: हाँ 100% दे देना है
10: चाहे जहाँ भी जाए।
9: हाँ।
10: और फिर खाना तो घर वालों को ही है ना यार,
9: जी जी,
10: कौन आपके सामने बोल पाएगा कि खराब है, हस्बैंड तो नहीं बोल पाएंगे,
9: ये भी बात सही,
10: ये तो गारंटी के साथ है।
9: हाँ ये तो है 100% नहीं 200% श्योर।
10: तो फिर क्या दिक्कत है,
9: तो चलिए फटाफट अब नेक्स्ट क्या था, सूजी की
10: रोल,
9: सूजी रोल।
10: तो सूजी का रोल बनाने के लिए आपको लेना है सूजी, सूजी 1 कप ले लीजिए और दही 1/2 कप। उसके बाद में लेने हैं उबले हुए आलू 4 से 5, हरी मिर्च, हरा धनिया ले लीजिए, और मसाले में लेना है नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर बहुत कम। अब इसे बनाना कैसे बताते हैं कि एक बाउल में सूजी ले लीजिए, उसमें दही डाल दीजिए, उसमें उबले आलू डाल दीजिए, हरी मिर्च, हरा धनिया और सारे मसाले डाल करके इसको अच्छे से आपको अब पूरा एक डो की तरह बना लेना है। लेकिन इसको जब आप डो बनाएंगे तो हल्का सा इसमें पानी के साथ डो बनाइएगा तो बहुत अच्छा और लसीला बनेगा।
9: ओके।
10: जब आपका ये डो तैयार हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको छोटे छोटे आप चाहे तो टिक्की का शेप दे सकते हैं, लेकिन लंबे लंबे बनाइएगा, जैसे कटलेट बनाते हैं ना लंबे लंबे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। लंबे लंबे बना लेने हैं और उसके बाद फ्राई करने के लिए आप कढ़ाई में तेल ले लीजिए, तेल गरम कर लीजिए और इन रोल्स को डाल करके इनको सुनहरा और कुरकुरा होने तक बढ़िया मजे से भूनिए और फ्राई करिए, और फ्राई करके फिर अच्छी सी जामुन की चटनी लीजिए प्लेट में, कटलेट्स लगाइए, उन्हें सजाइए और बढ़िया
9: और फिर खाइए।
10: बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार नाश्ता और मौसम के अकॉर्डिंग होगा। जामुन इस समय बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जामुन जो है वो कभी कभी बहुत, मतलब मुझे जामुन से कल कुछ याद आ गया था इसलिए आज मैंने आपको जामुन की चटनी बताई।
9: क्या
10: वो ये कि हमने जो है गाँव में, मैम जब जाते थे मौसी के यहाँ, तो बहुत हमने ये थोड़ा सा यहाँ पे कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन बचपन में सभी करते हैं, तो बहुत हमने चुरा चुरा के जो है
9: जामुन चुरा के खाए,
10: बहुत खाए हैं, और उससे भी पता है उससे ज्यादा मम्मी की मार खाई है।
9: नहीं देखो कुछ ऐसे फल है ना अंशिका कि वो चुरा करके खाने में ही मजा आता
10: बहुत
9: है,
10: मजा
9: जैसे मैं बताऊं, जैसे आम, अमरूद और जामुन, ये तीनों एक ये ऐसे फल हैं कि तीनों जब तक हम चुरा करके नहीं खाते हैं ना हमारा पेट जैसे लगता है कि बिल्कुल
10: भरा नहीं, मजा नहीं आया,
9: मजा नहीं आया।
10: देखिए आम आप खरीद के भी खा सकते
9: हैं, अमिया छोटी वाली अमिया हो गई,
10: लेकिन फिर भी वो मजा नहीं आता,
9: वो मजा नहीं आता। क्या हम मार्केट से खरीद नहीं सकते हैं? लेकिन जो चीज पेड़ से बिल्कुल वो लटक रही है, देखो ऊपर अमरूद हरे हरे, और फिर उसको ऐसे किसी डंडे से या फिर ईटा मार करके उसको गिराओ और खाओ, ओ माय गॉड, मतलब क्या ही बता दे,
10: बहुत अच्छे। और उसके चक्कर में मम्मी की मार फ्री में पड़ती थी,
9: फ्री में वो, अरे वो तो बोनस है, वो तो चलता ही चलता है,
10: और वो इसलिए पड़ती थी क्योंकि जामुन हम लोग खाते थे और फिर जामुन के दाग कपड़ों पे लगाते थे,
9: हाँ,
10: और फिर मम्मी कपड़े की तरह हमें धो देती,
9: कपड़े की तरह हमें। अच्छा ये होता है ना कि जामुन खाओ तो हम उसे छिपा नहीं सकते,
10: हाँ, नहीं।
9: उसमें क्या कहते हैं जुबान भी ऐसी हो जाती है पर्पल,
10: हाँ।
9: आज कुछ ऐसे पर्पल हम भी है ना,
10: आज आप
9: जामुनी
10: पहना भी है वैसे,
9: हाँ, और जैसे हाथ पूरे हो जाते हैं जामुनी। तो कुल मिलाकर के हमारी हेल्थ के लिए जामुन अच्छा होता है, अगर उसकी
10: डाइजेस्टिव सिस्टम,
9: हाँ, अगर आप चटनी खा रहे हैं उसको और ऐसे नीट भी खा रहे हैं तो भी अच्छा होता है। तो भाई आज खाना खजाना में खूब ऐसी जानकारियों के लिए आपको हर रोज कुछ न कुछ हम नया लेकर के आते हैं और बताते हैं। तो चलिए यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे हम मास्टर शेफ की रेसिपीज को लेकर के, एंड जो मेरी रेसिपी है ना उसे प्लीज आप लोग सुनना ना भूलेगा क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ परवल डिलाइट्स। मैं बार बार शो कर रही हूँ क्योंकि मुझे बताने में मन कर रहा है कि मैं जल्दी से बताऊँ,
10: तो बिल्कुल जल्दी से जानेंगे। और लेकिन फटाफट चलिए अभी एक सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय कर।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है अंशिका। तो आप सभी को बता दूं कि जैसा कि आज है लजीज मंडे, मंडे के दिन हम लेकर के आते हैं बहुत सारी रेसिपीज को और साथ में खाना खजाना। आप सभी को पता है कि हर दिन हमारे लिए किचन में कुछ न कुछ खास होता है, तो हर दिन खास को और बेहतरीन बनाने के लिए हम हर मंडे को लेकर के आते हैं अपनी मास्टर शेफ यानी कि हमारी रंजना मैम। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उसके बाद में जानेंगे कुछ आज कुछ खास उनके द्वारा बताई गई रेसिपीज। तो नमस्कार मैम।
3: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
2: कैसी है मैम?
3: बिल्कुल ठीक है
2: मैम। आज आप क्या खिलाने वाली हैं हमें और हमारे सारे लिसनर्स को?
3: अब देखो, आज तो इधर हम लोग तो होली में इतना बना बुनू के बहुत थक चुके हैं, तो कुछ तो अच्छा बनना ही चाहिए स्पेशल। तो आज हम जो है, एक तो आलू बहुत आया हुआ है, तो हम पकौड़ी पोटैटो चाट सिखा रहे हैं
2: जी।
3: ये पकौड़ी भी है और चाट भी है।
2: ओके।
3: तो इसको आप बनाइए, बहुत सरल ढंग से बता रहे हैं, तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए तो उसको लिख लीजिए। और एक हम जो है छोले चाट वाले, वो भी बताएंगे, क्योंकि आजकल रमजान भी चल रहा है, शाम को उनके यहाँ बड़ा अच्छा रोजा अफ्तार होता है, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए तरह तरह। और हम लोग भी इतने सारे पकवान खा के होली में घी तेल वाले थक चुके हैं, तो थोड़ा हम लोग को भी रेस्ट मिलना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: तो उसी के अनुसार ये जो है डिशेस है, चलिए आप लोग नोट करिए। सबसे पहले पोटैटो पकौड़ी चाट।
2: ओके, पोटैटो पकौड़ी चाट, मतलब पकौड़ी भी है, चाट भी है, पोटैटो भी है।
3: पोटैटो भी है। तो चलिए लिखिए सामग्री। आधा किलो बेबी पोटैटो, ना तो बहुत छोटे हो ना बहुत, 1 इंच के लगभग होने चाहिए, 1 से 1.5 इंच वाले। इस समय बहुत आ रहे हैं, चाहे लाल आए चाहे सफ़ेद, जो भी आपको मिले आप उन्हें ले लीजिए, और आधा किलो, और खूब अच्छे से धो लीजिए। इतना मैश करिए कि उस पर कोई भी स्पॉट दाग धब्बा ना रह जाए। खूब धोने के बाद आप उन्हें कुकर में डाल दीजिए। कुकर में बहुत थोड़ा पानी डालिएगा, लगभग आधा प्याला
2: जी,
3: इसलिए कि कुकर फटने ना पाए, पानी तो होना ही होना।
2: हाँ।
3: तो बस आधा प्याला पानी डाल के आप कुकर को चढ़ा दीजिए गैस पे। एक स्टीम आए, जब एक स्टीम आए तो आप 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए उन्हें और गैस बंद कर दीजिए। अब इससे जो होगा, ज़्यादा तो ना पकेंगे ना फूटेंगे, हमें साबुती साबुत चाहिए आलू। उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे। अगर कोई आलू बड़ा है तो उसमें हम 2 टुकड़े कर लेंगे, अगर नहीं बड़ा है तो गोल गोल अलग निकाल के रख लेंगे
2: जी।
3: अब एक अलग बाउल में या थाली में हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून चावल का आटा लेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसका लेंगे बेसन लेंगे, और 1 टेबल स्पून हम आरारोट लेंगे
2: जी।
3: इनको हम आलुओं पे डाल देंगे, साथ ही हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा अमचूर 1/4 चाय का चम्मच डाल देंगे। थोड़ा सा पिसा लाल मिर्च हम 1 चाय का चम्मच डाल लें, और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा रंग आने के लिए 1/2 चाय का चम्मच डाल देंगे, और सबको खूब अच्छे से हिला देंगे। ऐसा करेंगे कि सभी आलुओं पे ये मसाला एक सा लग जाए
2: जी।
3: यदि नहीं लग पा रहा है तो आप थोड़ा सा पानी हाथ में लीजिएगा और पानी का छींटा दे करके उसमें सान लीजिएगा
2: जी,
3: ताकि जितने भी मेरे आलू हैं सब पे जो है वो मसाला चढ़ जाए। अब जब और नमक अपने अंदाज से सबसे बाद में डालिएगा, जब सब मसाला मिल जाए सब हो जाए तब आप नमक मिलाइए, थोड़ा सा काला नमक डालिए और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालिए
2: जी,
3: जरूरी रहता है, काला नमक से अलग सा स्वाद आता है। अब आप क्या करेंगी, कढ़ाई में तेल गरम करिए, इतना डालिएगा कि हम जो आलू डालें तो डूबे रहें। अब आप उनमें जब आंच तेज हो जाए फिर आप धीमी कर दीजिए, मध्यम आंच। अब एक एक करके आलू उठा करके उसमें डाल दीजिए तेल में
2: जी,
3: और गुलाबी गुलाबी सेक लीजिए। इसमें देखिएगा मसाला बिल्कुल भी तेल में नहीं निकल रहा है और सभी आलुओं पे मसाला जो है हमारा वो कोटेड हो गया है
2: जी।
3: अब आप उनको निकाल लेंगे, निकाल करके एक थाली में रख लेंगे। जब सब तल जाए, और तुरंत तुरंत मत पलटिएगा इसको, आप करिएगा आलू को पहले डाल दीजिए, एक दो मिनट वेट करिए, वो खुद ही नीचे से छोड़ के ऊपर आने लगेंगे
2: हाँ।
3: तब आप पलटिएगा, तो इससे मसाला बिल्कुल भी आलुओं से दूर नहीं होने पाएगा। अब जब आपने थाली में निकाल लिया तब गैस बंद कर दीजिए। अब सभी जितने भी आलू हैं उनको आप क्या करिए कि किसी कटोरी से या गिलास से जिससे भी आप उसको दबा दीजिए,
2: उसको मैश कर लेना है,
3: मैश नहीं करना,
2: अच्छा दबा लेना,
3: हर एक को दबा देंगे
2: हाँ हाँ।
3: दबा देंगे तो एक छोटी छोटी पतली पतली टिकिया ऐसी हो
2: हाँ
3: जाएगी
2: हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा,
3: अब इसको आप अलग रख लेंगे। अब उससे पहले आप हरी चटनी पीस लीजिए, अगर आप चाहती हैं सफेद मटर उसमें चाट ऐसा बनाना, नहीं तो मीठी चटनी अलग से बना लीजिए, दही रख लीजिए, सेव रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं आप मटर रखिए, सेव रख लीजिए, दही रख लीजिए, मीठी चटनी बना लीजिए, हरी चटनी मस्ट है, वो हरी धनिया वाली आप पुदीना डाल के बना लीजिए। अब आप क्या करेंगी, फिर से गैस गरम करेंगी, चढ़ाएंगी मतलब जलाएंगी गैस, कढ़ाई को पुनः गरम करेंगी, फिर आप एक एक करके जो आपने आलू को टिकिया का बना दिया
2: हाँ, शेप,
3: उसको फिर डाल के तलेंगी। अब आप जब तोड़ के देखेंगी कि आलू अंदर से एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, तब आप उनको निकाल लेंगी, पर यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी जलने ना पाए। ये विशेष। अब आप इनको दोने में रखिए, हरी चटनी डालिए, दही डालिए फेटा हुआ, मीठी चटनी डालिए, हरी धनिया डालिए, और डाल करके आप जिसको भी सर्व करना है उसको करिए। देखिए ये आपकी डिश कितनी अच्छी लजीज और कितनी जल्दी बन जाती है। अगर आपके मेहमान आए हैं तो घर की ही चीज़ है, इसमें कोई चीज़ बाहर से नहीं लेनी है, और

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो आइए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है मंडे, हमारा लजीज सा मंडे, तो जानेंगे मास्टर शेफ से दूसरी डिश कौन सी है और किस पकवान को बनाने के बाद में ये एक नई डिश बन के आई है। जी मैम,
5: आज हम जो है छोला चाट बना रहे हैं, जो बड़ी सरल है और बड़ी अच्छी लगती है देखने में।
4: आज मैम, आज सारी टिक्की बताशे और चाट ही आज आप खिलाने वाली हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसके लिए सफेद चना, जिसे हम छोले कहते हैं, आप 250 ग्राम ले लीजिए।
4: जी,
5: लगभग ये भीगने के बाद 2 प्याले हो जाएंगे। अब आप इनको भिगो लीजिए रात भर, उबाल लीजिए नमक डाल करके, और गला देखिएगा अच्छे से गला हो, पर फूटे ना, इस चीज को की ध्यान रखिए। अब आप इसको अलग रख लीजिए। अब आप उसके लिए क्या करेंगे, एक बड़ी प्याज ले लीजिए, लगभग अगर मीडियम साइज की है तो आप 2 प्याज ले लीजिए, वरना एक प्याज आप काट लीजिए चौकोर टुकड़ों में, छोटा छोटा महीन महीन काट लीजिए। करी पत्ता रख लीजिए, बनारसी राई रख लीजिए, जीरा है, अजवाइन है, इन सबको रख लीजिए। 2 टमाटर मीडियम साइज के ले लीजिए, इसको भी आप खूब पतले पतले काट लीजिए, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और गल भी जाए। अब आप क्या करेंगी, एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगी, आपकी मर्जी, चाहे रिफाइंड डालिए, चाहे सरसों का डालिए, जो भी आपकी इच्छा हो। अब आप इसमें क्या करेंगी कि सबसे पहले आप इसमें डालेंगी करी पत्ता, बनारसी राई, जब टटक जाए तब आप अजवाइन डालिएगा 1 चाय का चम्मच, और जीरा 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। जब ये चटक जाए तब आप इसमें प्याज डाल दीजिए, जो आपने महीन चौकोर टुकड़ों में काटा है।
4: जी।
5: जब महीन हो जाए, सैलो फ्राई करो, उसको लाल नहीं करना है। जब हल्की सी मुलायम हो जाए तब आप चने डाल दीजिए। चने डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा चलाइए, तो उसके संग थोड़ा प्याज और भुनेगा।
4: हाँ।
5: इसके बाद इसमें आप टमाटर डाल दीजिए, जो आपने महीन काट के रखा है।
4: जी।
5: पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून डाल दीजिए।
4: हाँ, लगभग 1 टीस्पून।
5: लगभग। एक भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून डाल दीजिए। चाट मसाला थोड़ा सा डाल दीजिए। पिसा हुआ मिर्चा डाल दीजिए। थोड़ा मिर्चा कौन सा डालेंगे, जो बीजे वाला होता है,
4: जो बीजे वाला होता,
5: बहुत महीन
4: पिसा,
5: चिली फ्लेक्स हाँ। भी कहते हैं। वैसे आप घर में थोड़ा दरदरा पीस के अलग से रख लीजिए, बाजार से मंगा के, वो हमेशा काम आता है
4: जी।
5: उसको रख लीजिए, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नहीं तो इमली का पानी, हम तो ज्यादातर छोलों में इमली का पानी डालते हैं। आप इमली का 2 टुकड़े पल्प भिगो लीजिए, उसको मैश करके इसमें डाल दीजिए, और काला नमक और सफेद नमक भी डाल दीजिएगा
4: जी।
5: 2 हरी मिर्च काट के डाल दीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा घिस दीजिए, जो चाय वाले आता नहीं है कद्दूकस महीन, उसी से कस दीजिए, 1/2 इंच का टुकड़ा, बस इतना। अब आप जो है मीडियम साइज के वो रखिए, फ्लेम मीडियम रखिए, और इन सबको ढक करके आप पकाती रहिए। कब तक पकाएंगी, जब तक कि आपका टमाटर गल नहीं जाता, चने के संग एक सार हो जाए। और देखिएगा इसी के संग मसाले भी सब भुन गए हैं, जो भी हल्दी धनिया हाँ। हल्दी भी डालिए तो आप 1/4 चाय का चम्मच डाल लीजिएगा। इन सबको जब आप चलाएंगी तो देखिएगा बड़ी सुंदर रंगत आ गई है। अब आप क्या करेंगी, इन्हें आप सर्विस बाउल में निकाल लेंगी, ऊपर से नींबू भी थोड़ा निचोड़ लेंगी
4: जी।
5: चाहिएगा तो नींबू डाल दीजिएगा, नहीं है तो खटाई, लेकिन सर्व आप कर सकती है नींबू के संग। अनार दाने, आजकल अनार के इतने दाने आ रहे हैं, उसमें डाल दीजिए, और करके सेव डाल करके आप गरम गरम सर्व कीजिए। देखिए ये जो है छोले की चाट आपको बहुत पसंद आएगी, और ये बहुत कम घी तेल की है इसलिए इसको कोई भी खा सकता है, हर उम्र के बच्चे भी पसंद करेंगे, बूढ़े भी पसंद करेंगे।
4: बिल्कुल,
5: तो खाइए, बनाइए और खिलाइए,
4: बहुत ही बढ़िया टेस्टी। मैम एक बात बता दूं कि आप जो भी कभी कोई डिश बताती है ना, तो मुझे लगता है कि वो एक क्या कहते हैं विजुअल होता है, और वो सामने प्लेट क्यों नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया अच्छी सी डिश हम लोगों ने आज सीखी है। एक्चुअली हम लोगों ने आज चाट ही चाट सीखी है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हाइजीन का भी काम करेगा, क्योंकि जो आजकल ना धूल मिट्टी भी बहुत चल रही है, तो आप इसे घर पे बनाएं और घर पे खाएं, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। फेस्टिवल पे फेस्टिवल है ही, ऐसा नहीं है कि एक फेस्टिवल बीत गया तो अभी
5: नवरात्र
4: आ रहा है, तो आप और ये जो कि अभी मैम ने डिश बताई है वो स्पेशली आलू की बताई है, तो जो चीजें जो इंग्रेडिएंट्स हम व्रत में खा सकते हैं उसको बना करके आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हर बार की तरीके से इस बार भी बहुत ही अच्छी सी डिश हमें बताई है, ऐसे ही हर बार आकर के हमें और हमारे सभी लिसनर्स को अजीबो गरीब और अलग सी चीजें जो आप खिलाती है ना वो खिलाती रहा करिए। थैंक यू सो मच।
5: चलिए सभी को मेरा नमस्कार।
4: चलिए हम मिलते हैं आपसे एक छोटू से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, तो आप कहीं नहीं जाइए, आप सुनते रहिए हमारी 89.6 FM में ये प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा गाना, बस हम यूं गए यूं आए।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, जो कि मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी, परवल डिलाइट्स के बारे में।
4: जी मैम, लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं चैट बॉक्स में और बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो देखते हैं कि हमारे लिसनर ने क्या क्या भेजा है।
3: जल्दी, लेकिन क्योंकि ना मुझे फटाफट बताना है।
4: जी तो नागेश्वर जी आ गए हैं और उन्होंने मैसेज किया है। प्रीति जी आ गई हैं, उन्होंने लिखा है शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया आपको भी। सबलू सावन जी लिखते हैं शुभ दोपहरिया। इट्स कुमार जी लिखते हैं शुभ दोपहरिया,
3: शुभ दोपहरिया सभी को।
4: लवली जी, प्रबल मिश्रा जी और बस इतने।
3: अच्छा, तो सभी को एक बार फिर से शुभ दोपहरिया। तो आइए फटाफट बनाते हैं परवल की डिलाइट, जो कि बहुत ही इजी वाली रेसिपी है एंड खाने में उससे ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो खाने में सबसे ज़्यादा इजी का मतलब पता चला आपको क्या मतलब? कि ऐसे उठाया पीस, मुंह में डाला और गप। ठीक है, तुम पूछती नहीं हो इसीलिए मुझे लगता है बताना पड़ता है मुझे रिपीटेड।
4: yes,
3: तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं 250 ग्राम परवल, जो कि परवल जो सब्जी वाले परवल होते हैं
4: जी,
3: वो, और हरे हरे बड़ा पीस लीजिएगा
4: जी मैम।
3: और 250 मतलब डेढ़ चम्मच चीनी चाहिए।
4: डेढ़ चम्मच?
3: ठीक है, नहीं नहीं नहीं, डेढ़ चम्मच नहीं यार, उतना ही, मतलब 250 ग्राम चीनी, क्योंकि चीनी में तो चाशनी बनेगी ना। 250 ग्राम चीनी, ठीक है, एंड 150 ग्राम मावा चाहिए, एंड 2 मिलीलीटर केवड़ा जल, यानी जो केवड़ा जल होता है ना, वो आधा, मतलब आधी चम्मच या एक चम्मच। ठीक है
4: जी।
3: और 1 से 1/4 चम्मच ग्रीन फूड कलर जो आते हैं वो चाहिए, और 1 से 2 चम्मच इलायची पाउडर, 7 से 8 केसर के धागे, 2 बादाम कटे हुए पीस, मतलब उसको हाफ हाफ कर लीजिए, जो बादाम के पीसेस होते हैं ना उसको, 4 बादाम, अगर आप 4 पीस बना रहे हैं तो 2 बादाम लेकर के 4 पीसेस में उसको कट कर लीजिए
4: जी मैम।
3: अब आइए हम बनाते हैं इसकी विधि। तो सबसे पहले आप परवल मार्केट से लेकर के आएंगे तो उसे सबसे पहले धोना, साफ करना, क्योंकि अगर जरा सी भी उसमें रेशे पड़ गए ना, जरा सी भी मिट्टी रह गई ना, तो ये जो परवल की मिठाई है, जो परवल की डिलाइट है, ये पूरी की पूरी बर्बाद हो जाने वाली,
4: मिठाई में खटाई आ जाएगी,
3: मिठाई में खटाई आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि परवल को अच्छे से धुल लेना है, साफ कर लेना है और उसको पोंछ लेना है। ठीक है, साफ कपड़े से उसको पोंछ लेना है, और अब उसको आपने छीलना है, मतलब छीन लीजिए ऊपर की जो उसकी ग्रीनरी होती है ना, हल्का सा उसको आप छील लीजिए, और बीच में आप लगा देंगे चीरा। चीरा लगाने के बाद में जितने भी उसके बीच में बीज हैं, उन सारे बीजों को आप निकाल के अलग कर दें, और जो उसका मोटा वाला खोल होता है उसको आप रहने दें। ठीक है
4: मैम।
3: अब 2 कप चीनी में 3 कप पानी मिलाकर चाशनी बनाने के लिए और चीनी घुलने के लिए उसे पकाएं। उसके बाद चीनी घुलने के, जब चीनी घुल जाए तो चाशनी में परवल डालकर 25 से 30 मिनट तक उसको ढककर मध्यम आंच पर उसको पका लें, यानी कि परवल जो कच्चे हैं तो उसको पकाना भी तो जरूरी है ना।
4: हाँ।
3: अब उसमें थोड़ा सा केवड़ा डालकर ढक दें और ठंडा होने के लिए रख दें। मावे में चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर मीडियम आंच पर उसे 10 मिनट तक भून लें और उसमें उसकी स्टफिंग तैयार कर लें। उसमें आप चाहते हैं तो थोड़ा क्या कहते हैं कि वो गरी का बुरादा डाल दें, और इसमें किशमिश डाल सकते हैं, मतलब आप अपने, और चिरौंजी, मतलब आप अपने हिसाब से जितने भी इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहें,
4: काजू वगैरह भी,
3: हाँ जो भी आप डालना चाहें इसमें, आप इसकी स्टफिंग आप बना सकते हैं। और उसके बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो अब आपने क्या करना है कि परवल को चाशनी से अलग करके इसके सभी परवल में मावे की स्टफिंग को भर देना है। ठीक है, भरने के बाद में ऊपर से केसर और बादाम से सजाकर परवल डिलाइट को सर्व करिए और ऊपर से थोड़ी सी चाशनी भी आप चम्मच की सहायता से इसमें डाल सकते हैं।
4: अब यही मन में हो रहा था कि तुरंत जाऊं, तुरंत पहले आज मैं घर नहीं जाऊं।
3: और पता है, और देखो कितना
4: आज पहले मैं परवल खरीदूंगी।
3: और पता है कितना इजी है ना बनाना, मतलब
4: इजी तो है।
3: हाँ, मुझे लगता था परवल के। और हाँ, एक चीज और आप कर सकते हैं, चांदी का वर्क भी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। तो आप खुद सोचो, हाँ खुद सोचो कि परवल की मिठाई जब हम मार्केट से लेने के लिए जाते हैं अंशिका, तो कितनी महंगी मिलती है।
4: हाँ।
3: और ये कितनी इजी वे में बन गई।
4: बिल्कुल,
3: है ना।
4: और साथ ही साथ में ये भी होता है ना कि हमने खुद बनाई है।
3: और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इस मिठाई को हमने खुद बनाया है, है ना। तो ये आप जरूर से बनाएं। तो आज की पूरे दिन की रेसिपीज कौन कौन सी थी?
4: आज की रेसिपीज हमारी थी जो कि दो मास्टर शेफ की, जिसमें से आपने पोटैटो आलू टिक्की खाई और साथ में उन्होंने एक वो अप्पम भी बनाना बताया था।
3: ओके,
4: दो रेसिपीज थी। और साथ ही साथ में मैंने आपको सूजी के साथ रोल के साथ जामुन की चटनी बताई और मैम ने उस पे सोने पे सुहागा कर दिया क्योंकि नमकीन पे उन्होंने मीठा बता दिया जो की थी परवल डिलाइट।
3: परवल डिलाइट। तो भाई आपसे यही अनुरोध है कि हम लोग जो भी चीजें बनाते हैं आपको, आप तक पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले उसका टेस्ट ड्राइव हम लोग कर लेते हैं, खा करके घूम लेते हैं पहले उसको, और फिर ही आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही मजेदार रेसिपीज को सुनने के लिए और ऐसे ही मजेदार बाकी चीजों को भी सुनने के लिए आप सुनना ना भूलें 89.6 FM, जो कि हम हर दिन कुछ नया और बेहतर लेकर के आते हैं।
4: बिल्कुल, हर दिन कुछ खास, हर दिन कुछ नया। और आज का दिन भी बहुत प्यारा है क्योंकि आज हमारा मंडे था। मंडे था इसलिए क्योंकि जब किसी चीज के पीछे था लगता है ना, तो इसका मतलब होता है नए दिन की शुरुआत।
3: हाँ जी, तो चले हम दोनों को दे इजाजत, कल मिलेंगे एक नए सफर में, एक नए दिन की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खाना खाते रहें, अच्छा अच्छा अपने आप को स्वस्थ रखें, पानी पिए लेकिन ज्यादा खाना मत खाइए क्योंकि इस समय थोड़ा सा शरीर को प्रिकॉशन देने की आवश्यकता है। ऑलमोस्ट सभी के घरों में कोई ना कोई ऐसा पेट खराब होने वाला मरीज पाया जा रहा है, तो इसीलिए आपको थोड़ा कम खाएं लेकिन पानी की मात्रा बढ़ाएं। तो चलिए अपना ध्यान रखें और हम दोनों को दें इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।
4: बाय बाय दोस्तों।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
0: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वेलकम वेलकम वेलकम। भाई बच चुका है 3 आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके, आपका अपना प्रोग्राम क्वालिटी ऑन गोंडा, जिसमें होती है आपकी फरमाइशें पूरी। भाई या कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और इस गर्मी प्लस बारिश के मौसम का आनंद उठा रहे हो। भाई कल रात की बारिश ने ना ऐसा गोंडा वासियों का दिल खुश किया है कि आज तो सबके चेहरों पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान है। भाई इस दिन का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पर अफसोस ये है कि ये मंजर सिर्फ रात में होता है जब हम सो रहे होते हैं। दिन में वही धूप फिर से चढ़ आती है, लेकिन कोई नहीं, जब इतना सा हुआ है तो और भला भी भगवान कर ही देंगे। इसी विश के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं हमारे प्रबल मिश्रा जी की पसंद का, यानी उनकी पसंद या फिर कहें उनकी फरमाइश का ये बहुत ही बेहतरीन सा सॉन्ग, तेरा आंचल हो लड़का पागल हो। ये आवाज़ में है उदित नारायण और अलका याग्निक जी। देखिए भाई, अलका याग्निक जी कितनी अच्छी सिंगर है ना, उसका तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। सुनते ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

हां जी दोस्तों, वेलकम बैक। आशा करती हूँ कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे आज का शो, और साथ ही साथ में भाई अपना मनपसंद गाना भी आपने सोच लिया होगा जो आपको चलवाना है आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो गाना 89.6 FM पे। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मैं बता दूं भाई, हमारा नंबर है 6393316429। फिर से रिपीट करती हूँ, 6393316429। जल्दी से कॉल करिए और अपनी पसंद का गाना अपने प्यारे रेडियो से जरूर सुनिए। उसके बाद चलते हम हमारी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है किसकी, हमारे रमेश कुमार जी की, जो कि हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं। जी हाँ, उनका जो है गाना है बहुत ही प्यारा सा, आंखों में बसते हो तुम दिल में छुपा लूंगा। जी हाँ, जिसमें स्क्रीनिंग हुई है हमारे प्यारे से सुनील शेट्टी की और हमारी प्रीति यानी कि सोनाली बिंद्रे जी, और आवाज़ है ये अलका याग्निक और अभिजीत की। सुनते ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते। स्टे ट्यून्ड।

कहाँ हो रही है इतनी चोरी की बातें भाई। चोरी गुनाह है ये आपको पता होना चाहिए, और किसी का दिल चुराना बोल तो बहुत ही महंगा होता है, ये काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलते अपने चैट बॉक्स की तरफ। भाई भाई चैट बॉक्स पे काफी सारे लिसनर आ चुके हैं हमारे साथ। भाई 3 बजने से पहले ही आप सब आ जाते हैं, इसका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है हम सब। और मनीष शर्मा जी, प्रबल जी, सुरेंद्र यादव जी, मनीष शर्मा जी, ऐसे काफ़ी सारे लिसनर जिसमें नागेश्वर जी और काफ़ी सारे लोग हैं, उनका बहुत ही तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। और काफ़ी लोगों को ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई आप चैट बॉक्स से सॉन्ग उठा लेते हैं। भाई बिल्कुल, देखिए चैट बॉक्स से हम ले लेते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि ये कॉलिंग प्रोग्राम है और आप कॉल करके अपनी फरमाइशें दर्ज कराएं। साथ ही साथ जब आपको मैसेज करना हो तो आप शाम के गोंडा मैसेज मसाला में मैसेज करें और आपका गाना ज़रूर प्ले हो जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट फरमाइश की तरफ। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो भी 2 गाने प्ले हुए हैं ये सारे बहुत ज़्यादा लवी डबी वाले हैं, और मौसम ने इसको और ज़्यादा अच्छा बना दिया। मतलब कहते हैं ना, एक तो मौसम अच्छा, ऊपर से गाने अच्छे, तो भाई आप सबकी फरमाइश से आज का माहौल तो बहुत तगड़ा सेट हो रहा है। लेकिन चलते हैं अपनी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है रवींद्र जी की। जी हाँ, रवींद्र जी को सुनना है मुंडे और कुड़िया, जो आवाज़ में है अलका याग्निक और उदित नारायण जी की। मुझे लग रहा है कि आप सबकी फेवरेट हो चुकी हैं अलका याग्निक जी। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं।

हाँ जी भाई रविंद्र जी, देखिए मौसम तो जीने का है ही, और ये मौसम जब से आया है हम सभी के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ उठी है। लेकिन इस मौसम को थोड़ा सा सही से इस्तेमाल करें कि भाई ये मौसम एक ऐसा मौसम है। कहते हैं, मैंने एक बहुत ही मशहूर शायर की लाइन सुनी थी कि पहली बारिश में जो है मिट्टी महकती है, दूसरी बारिश में नहीं। तो उसका रिप्लाई किसी ने दिया था कि पहली बारिश जितनी ही सुकूनदायक होती है उतना ही हमें नुकसान भी करती है। इसीलिए हमेशा जो चीज़ आपको बेहतर लगे अच्छा ये नहीं है कि हाँ हो सकता है वो आपको नुकसान भी पहुँचा रही हो। तो जो भी चूज़ करें वो थोड़ा सा अपने दिल को छोड़ के दिमाग से ज़रूर सोचे। सुनते हैं नेक्स्ट फरमाइशी सॉन्ग, जो कि हमारे सबलू जी की पसंद का। भाई मौसम पे इतना प्यार आ रहा है सबको कि इन्हें भी मौसम से जुड़ा हुआ गाना सुनना है। वो है आय हाय हाय ये मौसम, क्या है भाई एक सेकेंड, ये गाना तो है भाई ये मौसम और ये दूरी, आय हाय ये मजबूरी। हाँ मुझे याद आ गया ये गाना सबलू जी, मैंने भी ये गाना सुना है। लेकिन ये जितने शौक से मनोज कुमार और जीना जी इस गाने में भीग रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है कि इसके अगले दिन इनको पक्का डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई बारिश में भीगे नहीं, आनंद लें, अपने घर पर चाय पकौड़ी बनवाएँ, ज़्यादा तेल में नहीं, लेकिन हाँ मौसम का आनंद बिल्कुल उठाएँ, पर थोड़ा सेफ्टी से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, जो कि सबलू जी की फरमाइश है।

0: अरे भाई सावन अभी नहीं बीता, अभी तो सावन आने में एक महीना है, लेकिन भगवान से दुआ यही करेंगे कि सावन थोड़ा सा आगे की तरफ सरका दे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और गर्मी में हमारी हालत भी खराब हो रही है। चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ, जिसमें आप सबकी चटपटी बातों ने भाई मेरे को तो बड़ा ही मतलब खुश कर दिया, और आपकी जो बातें आपने हमसे कही हैं उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले प्रबल मिश्रा जी कह रहे हैं, भाई किसी ने पूछा कि ये पसंदीदा शख्स क्या होता है। मैंने कहा कि जो आपको किसी और को पसंद करने लायक ना छोड़े वही होता है। अरे वाह भाई, आप सब इतनी अच्छी लाइन लिखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पसंदीदा शख्स वो होता है जो पहले आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको खुश करता है। कहते हैं ना हर जगह तितलियाँ ही तितलियाँ फैल जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको लगे कि तितलियाँ फैल रही ना, उसी वक्त एंटीबायोटिक ले लीजिए और इन तितलियों को मार डालिए। बिल्कुल भाई, क्योंकि ये पसंदीदा शख्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो आपको किसी को पसंद करने लायक छोड़ते नहीं हैं। आपने बहुत ही ज़्यादा सही कहा प्रबल जी। उसके बाद कई सारे लोग के कई सारे चैट्स हैं और आप सब इतने मज़े की बातें कर रहे हैं। जैसे कि नागेश्वर ठाकर जी लिख रहे हैं कि अभिमान कहता है कि किसी को ज़रूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल भाई, धूल की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ नहीं तो कुछ हमारे काम ज़रूर आता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो बहुत छोटी चीज़ है जिसकी हम अहमियत नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे आप सभी घर में सुई ज़रूर होगी, लेकिन सुई जब तक काम नहीं होता ना तो कहते हैं अरे यार ये सुई किसने फेंक रखी, हटो हटो हटो। लेकिन जहाँ कोई कपड़ा फटता है ना, हमें सबसे पहले याद उस सुई की ही आती है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है हमारे अमित कुमार जी की। जी हाँ, अमित कुमार जी को सुनना है एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसका टाइटल है तमन्ना है कि जोरों की बरसात हो जाए। हम सभी की तमन्ना है अमित कुमार जी, और भगवान से यही दुआ करेंगे कि अब हफ्ते डेढ़ हफ्ते ना तो यही काम करते रहें, यानी कि बारिश कराते रहें और हमारी रात और दिन को थोड़ा सा सुखद बनाए।
1: पहली बारिश याद है।

0: somebody help! Help!
1: Somebody help! Please, please help! I love you!
2: वेलकम बैक लिसनर्स टू योर ओन शो क्वालिटी उन गोंडा, जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं अपने पसंदीदा गानों को। भाई हमारे नागेश्वर जी पूछ रहे हैं कि पूछना ये था कि दिल चुराने की सज़ा कौन सी धारा की मिलती है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि दिल चुराना कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन जब इसकी सज़ा मिलती है ना, तो भाई ऐसी धारा लगती है कि आपकी धारा, मतलब आपकी जो जीवन धारा है ना, वही एकदम टूट जाती है। क्योंकि भाई फिर आप, जैसा प्रबल मिश्रा जी ने कहा, कि आप कहीं और नहीं जा सकते, आपके दिल में कहीं ना कहीं रह जाए। कहते हैं कि एक बंजर जमीन, नहीं सॉरी ज़मीन पर घर बनाना जो है एक आसान चीज़ है, लेकिन घर को जब तोड़ के घर बनता है ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। क्योंकि पहला घर जो बन चुका है, उसके टूटने का दुख भी आपके साथ बना रहता है। साथ ही साथ जब आप नए घर में रहते हैं ना, तो आपको पुराने घर की ज़रूर याद आती है कि अरे इस कमरे में तो ये कमरा हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ पहली ही होती है, उसके बाद जो दूसरी होती है वो दूसरी ही होती है। दूसरा नाम ही दूसरा इसीलिए पड़ा क्योंकि वो दूसरी कही जाती है। अब कई लोग तो यहाँ ये भी कह रहे हैं कि मैम जी का लॉजिक थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं ना, और भाई हम स्पेशली हम उत्तर प्रदेश वासी जो होते हैं, जब भी हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं ना, तो इलॉजिकल बातें ज़्यादा करते हैं। और साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि अगर आप जितना इलॉजिकल बात करेंगे ना, आपका ब्रेन उतना ही शार्प होता जाता है। ये किसने कहा है ये भी मैं बता दूंगी अगर आप पूछेंगे तो। लेकिन चलते फिलहाल नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है सुरेंद्र यादव जी की। इन्हें सुनना है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। भाई बिल्कुल सावन चल रहा है, नहीं सावन बिल्कुल नहीं चल रहा है, सावन आने में भी एक महीना बाकी है, लेकिन हम सबकी दिल की तमन्ना है कि सावन एक महीने पहले ही आ जाए। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं।

भाई ये काम तो डॉक्टर ही कर सकते हैं, क्योंकि दिल की बीमारी डॉक्टर से अच्छा कोई और सही कर नहीं सकता है। आपके चाहने वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं वो, बल्कि दिलों के जो जख्म होते हैं उस पर नमक और लगा देते हैं मरहम की जगह। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ। देखिए अभी हम दोस्तों पे बात ही कर रहे थे और हमें हमारे अजय कुमार मिश्रा जी को दोस्तों के लिए गाना भी सुनना है, जो कि है तेरे जैसा यार कहाँ। बिल्कुल भाई, कुछ यार ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। कहते हैं कि एक जगह मैंने लाइन सुनी थी कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना है तो आपको अकेले चलना होगा, आपको बहुत संभाल के चलना होगा, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छा करने के साथ साथ अगर आपको ज़िंदगी जीनी भी है ना, तो आपको कोई ना कोई दोस्त अपने साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल भाई, देखिए ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम आके इस पृथ्वी पर बनाते हैं, और वो रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि कभी ना कभी ऐसा ज़रूर आपको फील होगा कि काश ये हमारे अपने होते। तो भाई अपना खून का रिश्ता नहीं होता, अपना वो होता है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ हो, आपको आपकी सबसे गंदी सिचुएशन में देख के, गंदी सिचुएशन इन सेंस जब आपको बहुत ज़्यादा ठोकरें मिल रही हो, आप किसी लायक ना हो, आप बिल्कुल एकदम कहते थे ना एकदम धरती चाट रहे हैं, ऐसा सिचुएशन आ जाए उसमें भी जो इंसान आपके साथ है ना, वो ही इंसान आपका अपना है। चलते हैं हम ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं, जो कि किशोर कुमार की आवाज़ में है, याराना मूवी से, जो कि 1981 में रिलीज़ हुई थी और स्क्रीनिंग हुई है हमारे प्यारे अमिताभ बच्चन जी की। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना अजय कुमार मिश्रा जी की फरमाइश पर।

आपका क्या मानना है, आप आ सकते हैं चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैट बॉक्स में काफ़ी सारी बातें हो रही है, जैसे हमारे मनीष शर्मा जी कह रहे हैं कि आयुषी मैम मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच मनीष शर्मा जी। आप हमारा यही काम है कि हम अपनी बातों से, अपनी आवाज़ से, अपने चीज़ों से आपको एंटरटेन कर पाएँ और आप अपनी ज़िंदगी का आनंद ले पाएँ, इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आप ही सबके लिए आते हैं। और उसके बाद प्रबल जी लिख रहे हैं कि जान वारने की झूठे वादे नहीं आते मुझे, जहाँ तक मेरी हैसियत है वहाँ तक खड़ा मिलूंगा। मुझे लगता है कि अभी हम लोग दोस्ती का गाना भी सुन रहे थे और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है। वैसे हम आज मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, अपनी दोस्ती भी इंजॉय कर रहे हैं और मुझे तो भाई अपनी दोस्त की बहुत ही ज़ोरों से याद आ रही है। उसके बाद चलते हमारी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है हमारे मुमताज़ अंसारी जी की, जिनका जो है फरमाइशी सॉन्ग है ए दोस्त मेरे ये दुआ मेरी है तोहफा ये प्यार का। मुझे लग रहा है कि आज हम सभी कहीं ना कहीं दोस्ती में, और देखिए कितनी अच्छी बात है ये कि ऐसा मौसम है जिसमें हम लोग अपने पार्टनर्स को याद करते हैं, लेकिन आज सब दोस्तों को याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों को आज खुश हो जाना चाहिए कि भाई इतना ज़्यादा हमें प्यार मिल रहा है। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि 1986 की एक मूवी से आया है जिसका टाइटल है प्यार किया है प्यार करेंगे। बिल्कुल भाई, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं।

हाँ जी भाई, दोस्तों के लिए दुआ तो करनी चाहिए। फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा दोस्ती दोस्ती पे चले आए, अब चलते हैं थोड़ा सा इधर उधर और, यानी कि अभी दोस्त हो चुका, अभी सावन हो चुका, अब थोड़ा और शिफ्ट होते हैं, लेकिन एक बहुत ही प्यारे से मैसेज के साथ, जो कोई नागेश्वर धाकर जी ने लिखा है कि भाई पहली बारिश को आने दो, उसके बाद सावन को लाना। सुना है कि सावन में शंकर भगवान की पूजा अर्चना करने से मनचाहा वर मिलता है। बिल्कुल भाई, ऐसा ही मैंने भी सुना है, लेकिन ज़माना इतना ख़राब है ना दोस्तों, कि मुझे ऐसा लगता है कि शंकर भगवान को खुश करना इसलिए है कि भगवान हमारी रक्षा करना, क्योंकि आजकल शादियों का क्या हाल हो रहा है उससे तो आप सब बहुत ही अच्छी तरीके से

वाकिफ है, कोई कहीं से ढकेला जा रहा है, कोई किसी ड्रम में भरा जा रहा है, किसी को छत से ढकेला जा रहा है, किसी को बेल्ट से लटकाया जा रहा है, और ये सब काम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। अभी आपने जल्दी ही देखा कि एक बहुत ही अच्छी मॉडल एक्ट्रेस थी ट्विशा, उनको लटका दिया गया। अभी रिसेंटली एक केस आया है जिसमें एक लड़की ने अपने फियांसे को धक्का दे दिया। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ना लड़के बच रहे हैं ना लड़कियाँ, बच वही रहे जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो भाई मेरा तो पर्सनल यही मानना है कि मनचाहा वर मिले या ना मिले, भगवान को जिंदा रख देना, चाहे वर 4 साल बाद ही क्यों ना देना। इसी के साथ चलते हमारी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है रीना शर्मा जी की। रीना शर्मा जी को सुनना है आज मैं देखूं जिधर दो दो चांद नजर आए। देखिए चांद तो दो दो नजर आते हैं जब आपका चांद और आसमान में चांद दोनों ही आपके पास हो। चलते हैं एक बहुत ही प्यारा से सॉन्ग को सुनते हैं, जो कि डोली मूवी से है, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी, और आवाज़ है हमारी प्यारी आपकी सबकी चहेती आशा भोसले जी की आवाज़ में।

0: जमाना तो बदल रहा है आजकल बहुत ही तेजी से, आज कुछ है कल कुछ है और परसों कुछ और हो जाएगा, लेकिन अपनी रियल सेल्फ को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आप खुद हैं। और जब कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में हो या आए, अगर वो आपको बदलने की कोशिश कर रहा है ना, तो भैया जान जाना कि दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है, और काली दाल खाने से ना हमेशा पेट ही ख़राब होता है। चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, क्योंकि भाई देखिए अभी तो मूड थोड़ा सा स्लो हो चुका है, बहुत ही कह सकते हैं हम लोग रिलैक्स हो चुके हैं, लेकिन अपने आप को फिर से चार्ज करते हैं रईस जी की फरमाइश पर। ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग इश्क दी गली विच नो एंट्री, इसमें स्क्रीनिंग हुई है सलमान खान, अनिल कपूर और बिपाशा की, और आवाज़ है सोनू निगम और अलीशा की। तो भाई चलते ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं, और गाने सुनने से पहले मैं मनीष शर्मा जी से कहना चाहूंगी कि भाई आपने जो लिंक भेजी थी गाने की वो हमें मिल नहीं रही है, आप फिर से उसको सेंड कर दें जिससे कि हम आपका पसंदीदा गाना चला पाए। लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा मजा, एक अच्छे से सॉन्ग, और अपने आप को फिर से चार्ज करते हैं।
1: हाय हाय हाय हाय हाय चिक

भाई कोई कहना माने चाहे ना माने, लेकिन ये गाना हमें ये तो सिखा रहा है कि भाई इश्क की गली में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ये काफ़ी लोग हमें बहुत पहले से समझाते आ रहे हैं, लेकिन हम है कि मानते ही नहीं है कि भाई इश्क की गली में एंट्री ना लें। देखिए, जो भी इस गली में गया है ना, उस कीचड़ में उसका पैर ज़रूर फंसा है, और कीचड़ से निकलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा गलत किया। लेकिन भाई जिसको मिल जाता है उसको मिल जाता है, जिसका छूट जाता है उसका छूट जाता है। कहते हैं कि मैंने एक लाइन सुनी थी कि जाने वाले हमेशा चले जाते हैं और ठहरने वाले हमेशा ठहरे रह जाते हैं। तो आप हमेशा ये याद रखें कि कुछ भी हो, कोई भी आ रहा है जा रहा है, आप अपने आप को कभी भी ना खोए। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है चांद टेलर्स की तरफ से, जिनको सुनना है हम बंजारों की बात। बिल्कुल भाई सुनेंगे ये बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि धर्मवीर मूवी से है, जो कि 1977 में रिलीज हुई थी। स्क्रीनिंग है जितेंद्र धर्मेंद्र और नीतू जी की, और आवाज़ है हमारे किशोर कुमार जी की। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

हाँ जी भाई, इस गाने के बीच में आ चुकी हूँ आपको ये बताने के लिए कि जिनका भी गाना अभी प्ले नहीं हुआ है, जिन्होंने लिंक स्टार्टिंग में दे दी थी और कॉल नहीं करके हमें बताया है, तो बता दें भाई आपकी लिंक हमसे थोड़ी सी छूट गई है। आप फिर से अपनी लिंक को चैट बॉक्स में बता दें जिससे कि आपका गाना प्ले हो सके। तब तक के लिए आप इन्जॉय करिए, बहुत ही प्यारा सा गाना।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका आपका अपना प्रोग्राम क्वालिटी उन गुंडा, जिसमें आप सुनते हैं अपनी फरमाइशी सॉन्ग्स। बिल्कुल भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ। ये घड़ी हमें इशारा दे रही है कि हमें जल्द ही जाना है। तब तक के लिए आपके गाने मुझे पूरे भी करने हैं, आप किसी का भी दिल नहीं तोड़ना है, क्योंकि भाई आज दिल टूटना दोस्ती बहुत ही बात हो रही है, लेकिन हम दिल नहीं तोड़ेंगे, दोस्ती अपनी निभाएंगे। और चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है राकेश वर्मा जी की, जिन्हें सुनना है आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम। और ये हमें सुनते हैं दुखरन नाथ मंदिर से। भाई हमारे बहुत ही करीब हैं आप तो दुखरन नाथ मंदिर से, और आपका फरमाइश जो है जरूर प्ले होगी। लीजिए सुनिए आपका अपना फरमाइशी सॉन्ग आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम, जिसमें स्क्रीनिंग हुई है हमारे सलमान खान की, और ये मूवी से है बीवी नंबर 1।

भाई ये सुपर हिट गाने के बीच में आ गए हम आपको डिस्टर्ब करने, क्योंकि भाई समय बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत जल्दी से भाग रहा है और ये चाहती हूँ मैं कि आप सभी के गाने प्ले हो जाएं। चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, बातें कम लेकिन फरमाइशें ज़्यादा, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ जो कि है हरिशरण जी की, जिन्हें सुनना है आएगा मज़ा अब बरसात का। बिल्कुल भाई, बरसात अब भगवान को लगी जाएगा कि भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बारिश के लिए, तो भाई भगवान से आज तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आप लोगों ने विशेज़ मांग लिए और 2-4 दिन तक मैं भी यही प्रे करूँगी कि बारिश का मौसम ऐसे ही बना रहे। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते।

वेलकम बैक लिसनर्स, एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद जिसमें हमारे अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा जी ने बिल्कुल धमाल मचा दिया है, और आवाज़ थी हमारी प्यारी अलका याग्निक जी की। चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है हमारी साहिबा जी की तरफ से, जिन्हें सुनना है बारिश के लिए ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस। चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो की है हमारे नागेश्वर धाकड़ जी की, जिन्हें सुनना है दिल टूटे टूटे हो गया। हम भी सुनते हैं गाना, एंजॉय करते हैं।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुके हैं वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपको अपना प्रोग्राम कॉलेटिन गोंडा। फिलहाल वक्त दे रहा है हमें इजाजत जाने की, तो आपसे लेते हैं विदा और आपको छोड़ जाते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। जी हाँ, सॉन्ग के साथ, जो कि हमारी फरमाइश है हमारे के गुप्ता जी की, जो कि तिरंगा कॉम्प्लेक्स से हमें सुनते हैं, जिन्हें गाना सुनना है आज, कहना जरूरी है, फ्रॉम द मूवी अंदाज, और स्क्रीनिंग हुई है हमारे अक्षय कुमार जी की। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इसी के साथ लेते हैं हम आपसे विदा। आशा करती हूँ कि आपने इंजॉय किया होगा और अपनी जिंदगी का आनंद भी साथ ही साथ ले रहे होंगे।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
1: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार, 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए। व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
9: सिर में लगातार

0: टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now listening 11.89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो 11.89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज हमारे साथ में गोधुली में अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग क्षेत्र के हमारे बीच में मेहमान आते हैं, जो अपने कार्यक्षेत्र के बारे में, अपने बारे में बताते हैं, जिनसे हमको न जाने कितनी सारी चीजें देखने को, जानने को, समझने को मिलती हैं। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में एक और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, तो हम बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना हम बता दें कि आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि ओनर हैं प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय के। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में, जिसका नाम है गोधुली।
2: थैंक यू नंद जी,
1: थैंक यू सो मच जट साहब। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई आप डॉक्टर हैं, आपसे आपकी पद्धति के बारे में, आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें होनी है और बहुत अहम बातें होनी है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना एक परिचय दें ताकि हमारे श्रोताओं को पता चल सके कि आप कौन हैं।
2: मेरा नाम डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी है, मैं यहीं गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा के पास ही एक छोटा सा विलेज है चांदपुर, वहीं का रहने वाला हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा भी गोंडा में ही हुई है। मैं यहीं आपके पड़ोस में GIC का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर्नाटका के पास शिमोगा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से की है, और गोंडा में मेरा एक छोटा सा आयुर्वेदिक क्लिनिक है प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नाम से।
1: जी, ये आपने अपना परिचय दिया, हम जानना चाहेंगे आपके माता पिता के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में।
2: मेरे पिताजी गोंडा डीजल से रेलवे में ही एक कर्मचारी थे, अभी रिटायर्ड हैं। माताजी हाउसवाइफ हैं, दो भाई दो बहन हैं। मेरा छोटा भाई जो है, मेरा एक हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, वो ओन करता है, वो देखता है वहीं, और मैं यहाँ हूँ जैसा जानते हैं। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो टीचर है प्राइमरी स्कूल में, और छोटी सिस्टर हाउसवाइफ है।
1: ओके, ये तो बड़ा अच्छी बात आपने बताई, और लगता है कि हाँ, एक छोटी और शॉर्ट सुखी फैमिली के बारे में आपने बताया। बचपन कैसा बीता आपका?
2: गांव में रहा चुकी, तो जैसा गांव के सभी लड़कों का बचपन बीतता है वैसा ही बीता, कुछ स्पेशल नहीं रहा ऐसा। घर पे रहना, खेती का काम करना और साथ में पढ़ाई करना, ये सारी चीजें जीवन के साथ जुड़ी रही। तो मैं अभी कह सकता हूँ कि मैं अपनी जमीन के साथ काफी जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी इसी, शायद यही वजह है कि मैं अपने गाँव को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, आज भी मैं वहीं रहता हूँ।
1: क्या बात है, और कहते भी हैं कि जो लोग भाई अपने गाँव से जुड़े हुए होते हैं वो हमेशा ही उसकी मिट्टी उनको सौंधी।
2: हाँ, मुझे लगता है कि वो सुकून कोई और जगह दे नहीं पाती है जो हमारा गांव हमें देता है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। अभी आप हमको ये बताइए कि आपने पढ़ाई की, गोंडा से शुरुआती पढ़ाई आपकी हुई, उसके बाद आप कर्नाटका चले गए आयुर्वेदिक डिग्री प्राप्त करने के लिए, आपके जहन में ये कैसे आया कि आपको डॉक्टर ही बनना है?
2: कुछ स्पेशल तो ऐसा विचार नहीं था, पर कुछ रिलेटिव्स और सबसे लोगों से मिला, बातचीत हुई। उस समय बड़ी उत्सुकता होती है जब हम 12th पास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ रिलेटिव्स कुछ लोगों से मिला, उनसे मिलने की वजह से ही जो है हमारा जो है डॉक्टरी की तरफ बढ़ा। तो उस समय मुझे ये भी नहीं पता था आयुर्वेद एलोपैथ में क्या डिफरेंस है। धीरे धीरे पढ़ाई करते के दौरान मैंने एलोपैथी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, MD हैं, MBBS हैं, उनसे बातचीत हुई। चूंकि मेरा हॉस्पिटल भी है तो वहाँ भी काफ़ी डॉक्टरों से मुलाकात हुई। काफ़ी चीज़ें देखने और जानने के बाद में मुझे लगा कि आयुर्वेद जो है वो, उसकी आवश्यकता है आज हमारे समाज में, आज हमें ज़रूरत है आयुर्वेद की, क्योंकि बीमारियों का इलाज तो हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मॉडर्न ट्रीटमेंट में, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज अवेलेबल है, पर हमें स्वस्थ कैसे रहना है वो हमें नहीं पता चल पा रहा। वो हमें आयुर्वेद ही बता सकता है कि हमें बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है।
1: ओके, तो आप तो अभी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए काम कर ही रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: जानना ये चाहेंगे कि क्या बचपन से ही आपके घर में भी ऐसा ही माहौल था, चीजों को लेके कि आयुर्वेदिक चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी या कैसे क्या होता था?
2: नहीं, सामान्य परिवार जैसा होता है, हम वैसे ही थे, गांव से जुड़े थे, खेती किसानी था। मुख्य पापा ही एक गवर्नमेंट जॉब में थे, बाकी हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि, खेती और पशुपालन ही था, जो नॉर्मली एक औसत भारतीय परिवार, किसान परिवार में होता है। मेरा जीवन भी वैसे ही गुजरा, कुछ स्पेशल नहीं था।
1: डॉक्टर साहब, वैसे जहाँ तक हम जानते हैं कि ऐसे घरों में ज्यादातर ये जो कहते हैं होम रेमेडीज, घरेलू इलाज, इसको प्रायोरिटी दी जाती है। चोट लगने पे हल्दी का लेप बांधना है या कहाँ पे कड़वे तेल का इस्तेमाल करना है, ये सब बड़ा अभी भी है। क्या अभी भी गांव में इस तरह का माहौल है कि पहले चीजों को डॉक्टर के पास ना जाके पहले घर पे ही देखा जाता है क्या ऐसी चीज है जिससे इलाज किया जा सके?
2: इस विषय में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोई अलग से नहीं आया, ये हमारा आयुर्वेद है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे कुछ हम मॉडर्न होते गए, कुछ भ्रांतियाँ फैलती गईं, कुछ अपने ही पैथी से हम दूर होते गए। तो जो हम हमारे जुकाम होते ही हमारी माँ हमें अदरक और हल्दी का वो पिला देती हैं दूध में डाल के और हमारा जुकाम हमें आराम हो जाता है, वो कुछ अलग से नहीं आए, वो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, हमारा आयुर्वेद ही है। पर क्या हुआ, हम उनसे अनजान हो गए। हमारे कुछ गाँव के कुछ बुजुर्ग अभी उन पैथियों को जिंदा रखे हुए हैं, उन्हें बचाए हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग से आया है, वो सब कुछ आयुर्वेद है, हमारे जीवन में जितना कुछ जुड़ा हुआ है। इवन अगर आप रात को कुछ ऐसा खाने लगते हैं, गलत खाने लगते हैं, तो आपकी दादी, आपकी नानी आज भी आपको टोक देती हैं कि ऐसा मत खाओ नहीं बीमार हो जाएंगे। तो क्या उन्होंने कोई डिग्री ले रखी डॉक्टरी की? उन्होंने कोई डिग्री नहीं ले रखी, उन्होंने उन्हें ये सारी चीज़ें पता है, क्योंकि आयुर्वेद हमारे जीवन सा हुआ करता था। आज हम थोड़ा सा उससे दूर हुए हैं, या कह सकते हैं हम भटक गए हैं, पर हम पूर्णतया उससे भटक नहीं, दूर नहीं रह पाएंगे, हमें उसके पास जाना पड़ेगा।
1: ओके, तो अगर आपने इतनी ही तारीफ कर दी है आयुर्वेद की, तो फिर अब हमको और हमारे श्रोताओं को ये जरूर बताएं कि आयुर्वेद है क्या?
2: देखिए, आयुर्वेद के बारे में वैसे एक्सप्लेन, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इतना हम कह सकते हैं कि सुख दुख और आयु के लिए हितकर और अहितकर विषयों का मापदंड जहाँ बताया गया है वही आयुर्वेद है। हमारे लिए सुखकारी क्या है, दुखकारी क्या है, हमारे आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, ये जहां पर भी बताया गया है वही आयुर्वेद है।
1: ओके, आपने कहा सुख दुख में जो भी हितकर बताया गया, हाँ, वही आयुर्वेद है।
2: हाँ।
1: ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या है।
2: देखिए, आयुर्वेद का अगर मूल सिद्धांत की हम बात करते हैं तो एक संस्कृत का छोटा सा श्लोक है जो लिखा गया है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस से विकार प्रशमनम च। इसका मतलब ये होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए सबसे पहले, उसके बाद जो बीमार हैं उनका इलाज किया जाए। अर्थात आयुर्वेद ये चाहता है कि लोग बीमार ही न पड़े, जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ ही रहे। तो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही है कि व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए, फिर जो बीमार होते हैं उनका इलाज कैसे किया जाए।
1: तो जो मान लीजिए जो स्वस्थ है तो उनका फिर इलाज, या कह सकते हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैसे क्या क्या होता है?
2: हाँ, वही हमारी जैसे दिनचर्या होती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। आयुर्वेद में तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजन, ऋतु अनुसार भोजन, इन सब चीजों के बारे में बहुत विस्तृत एक्सप्लेन किया गया है।
1: जी,
2: शुरुआत में जो भी हमारे आयुर्वेद, जैसे हमारा अष्टांग हृदय है, तो उसका उसकी शुरुआत ही होती है दिनचर्या से, कि हमें कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना क्या पीना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना पीना चाहिए। तो आयुर्वेद तो बहुत विस्तृत इस चीज को बताता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकता है।
1: बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अगला हमारा क्वेश्चन ये भी है कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में अगर आयुर्वेद को देखे तो?
2: जैसे मैंने बताया कि आपके आयु के लिए और सुख के लिए क्या हितकर है आयुर्वेद में बताया गया है, तो अगर हमें सुखी रहना है और स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद आवश्यक है।
1: अगर हमें स्वस्थ रहना और सुखी रहना है
2: तो बिना आयुर्वेद के संभव नहीं है।
1: ओके, चलिए ये तो आपने बता दिया। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है बाकी पैथियों में और आयुर्वेद में।
2: हाँ, देखिए, बाकी पैथियों के बारे में ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद ऐसी पद्धति है, ऐसी चिकित्सा है जिसमें आपको अपने चिकित्सा के लिए कुछ भी बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, जो भी आपके डेली यूज़ की सामग्री है, उसी से आप अपने स्वास्थ्य को मेनटेन रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में हल्दी भी होती है, हमारे घर में सौंठ भी होती है। अगर हमें जुकाम होता है, तो हम हल्दी काली मिर्च का काढ़ा बना के हमारी माताएं आज भी हमें पिलाती हैं और हमें आराम मिलता है। कहीं चोट लग जाती है तो तेल गर्म करके मालिश कर लगा दिया जाता है और हमें आराम मिल जाता है। तो कहने का मतलब है आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जिसके लिए आपको कुछ बाहर से नहीं ढूंढना, जो आपके पास अवेलेबल है उसी से आपकी चीज। जैसे गाँव में कहते हैं कि फोड़ा हो गया है, पस पड़ गया है, तो नीम की पत्ती ले आओ उबाल के धुल दो। तो कहने का मतलब है कुछ आपको बाहर से ढूंढना नहीं है, कुछ आपको फैक्ट्री में तैयार नहीं करना। आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल है आप उसी से अपनी चिकित्सा कर सकते हैं।
1: ओके, तो आपने कहा कि जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके घर की बात हो या आपके आसपास की बात हो।
2: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आया कि आखिर अलग कैसे है, लेकिन सारी चीजों में ऐसा देखा जाता है जब कुछ इमरजेंसी होती है या बहुत पेन बढ़ जाता है तो लोग एलोपैथ की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो जल्दी आराम देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जल्दी आराम देता है तो उस तरह से उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। आयुर्वेद को प्रेफर किया जाता है कि आयुर्वेद अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म कोई चीज चल सकती है, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे गिल्टी की प्रॉब्लम है, गांठ जो पड़ जाती है, उसका एक अच्छा इलाज होता है। दूसरी चीज हम ये जानना चाहेंगे जो बीमारियां जैसे शुगर और बीपी की ये कॉमन बीमारियां होती हैं, इसमें कितना रोल अदा होता है आयुर्वेद का।
2: हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी पैथी है, जैसे एलोपैथी या आयुर्वेद है, इन दोनों का एक मुख्य उद्देश्य जो है हमें स्वस्थ रखना है।
1: बिल्कुल।
2: तो दोनों के अपने अपने लाभ फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। जैसे एलोपैथ का नुकसान है कि लंबे समय तक उसका साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही आयुर्वेद में कहीं ना कहीं हम इस चीज को कह सकते हैं कि इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए हमारे पास पेन किलर नहीं है, या ऐसा कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अब भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, तो हम उसमें ना पढ़ के थोड़ा सा बाहर रह के हम ये बात करेंगे कि हर पैथी की अपनी गुणवत्ता होती है। एलोपैथ की अपनी गुणवत्ता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े रिसर्च है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास ऐसी हैं जिससे हमें चिकित्सा करने में बड़ी सुविधा मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों को मिला के अगर कोई चिकित्सा की जाती है, अगर कोई पेशेंट है जिसको जोड़ों का दर्द है और बहुत भयंकर दर्द है, तो उसको एक पेन किलर अगर दिया गया है किसी डॉक्टर द्वारा, उसने खा लिया, उसे आराम हो गया, लंबे समय के लिए उसे ठीक करने के लिए अगर वो आयुर्वेदिक चिकित्सा करता है, तो हो सकता है संभावना इस चीज़ की भी रहती है कि उसका घुटने का दर्द परमानेंट ठीक हो जाए बिना किसी दर्द की दवा के, उसे दर्द की दवा का सेवन परमानेंट नहीं करना पड़ेगा और वो जो लंबे समय तक इलाज करवाएगा उसका उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं झेलना पड़ेगा। यह आयुर्वेद का फायदा है। लेकिन एलोपैथ का फायदा यह है कि अगर इमीडिएट उसको किसी तरीके का बहुत सीवियर पेन है तो वो इमीडिएट उसमें आराम पा सकता है एलोपैथ में। आयुर्वेद में इंजेक्शन जैसी अभी चीजें अवेलेबल नहीं है।
1: ओके, तो ये तो आपने बताया कि कुछ जैसे नुकसान ये होते हैं कि भाई इमीडिएट फौरन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है।
2: हाँ,
1: आयुर्वेद की साइड से क्या और भी साइड इफेक्ट्स वगैरह का भी खतरा इसमें रहता है?
2: देखिए, आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है, पर आयुर्वेद का नुकसान, आयुर्वेद में नुकसान अगर आप सही दवा नहीं लेंगे, सही समय से नहीं लेंगे, तो उसका नुकसान होता है।
1: क्या हो सकता है नुकसान?
2: जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर किसी को बहुत सीवियर एसिडिटी है और वो खट्टा दही खा लेगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये हमारे भोजन की बात हुई, अगर हम गलत तरीके से भोजन भी करते हैं ना तो हमें नुकसान करता है। इसी तरह से अगर हम गलत तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिंस भी लेते हैं वो भी हमें नुकसान करती है। हाँ, लॉन्ग टर्म तक अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिंस लेते हैं तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप किसी डॉक्टर से, ढंग के डॉक्टर से लेते हैं। अभी आजकल हमें बहुत बार ये देखने को मिलता है कि लोग आयुर्वेद के, लोगों का जो आयुर्वेद पे भरोसा है उसका बहुत सारे ठग, मतलब आयुर्वेद में एक वर्ड आया छद्मचर वैद्य, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया है, लेकिन वो वैद्य बनके लोगों की चिकित्सा करते हैं। तो क्या होता, उनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो वो क्या होता, उनका एक ही उद्देश्य होता है लोगों को ठगना और पैसे कमाना। तो वो कुछ भी उल्टा सीधा मिला के, कोई भी दवाइयां मिला के, कुछ भी करके लोगों को दर्द का, घुटनों के दर्द का इलाज कराते। बहुत सारे पेशेंट मुझे ऐसे मिले हैं जो किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज करा के आए, बाद में उन्हें ढेर सारा साइड इफेक्ट हो, किडनी फेलियर हुआ, चेहरे पे सूजन थी, या बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो लोगों का आयुर्वेद के प्रति भरोसा है उसका गलत लाभ भी समाज में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है मार्केट में जब आप जाते हैं तो कोई साइकिल पे बेच रहा है,
2: हाँ,
1: कोई तंबू लगा के साइड में बेच रहा है और बहुत सारे दिक्कतों का निवारण बताते हैं।
2: बिल्कुल, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीजों पे थोड़ा सा नियंत्रण करे वो, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो बना रहना चाहिए आयुर्वेद पे। क्योंकि हम जैसे अच्छे डॉक्टर जब किसी अच्छे व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते हैं कि हम आपके घुटने का दर्द का इलाज करेंगे, तो हमसे कहता है कि नहीं नहीं यार, हमारे पड़ोसी ने तो कराया था, उसका तो घुटना फेल हो गया, पर वो ये नहीं कहता कि उन्होंने किससे कराया था, या वो ये जानता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद बदनाम होता है ऐसे ठगों के चक्कर में।
1: ओके, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि भाई हर पैथी में जैसे उसका फायदा होता है,
2: बिल्कुल,
1: लेकिन उसी तरह कुछ ठग भी ऐसे होते हैं जो उसका भरोसा
2: गलत उपयोग करते हैं,
1: गलत उपयोग करते हैं, और लोग उस झांसे में आने के बाद कहीं ना कहीं उनका विश्वास सही पद्धति से भी हटने लग जाता है। तो ये जागरूकता की भी कमी है और कहीं ना कहीं सिस्टम को इस पे थोड़ा और ध्यान।
2: कभी भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो ऐसे डॉक्टर के पास ही पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है और जिसकी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है,
1: जिम्मेदारी
2: वो अपनी जिम्मेदारी से, एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है जिसने डिग्री की है वो कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता, वो किसी भी पैथी का हो, पर उसकी कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है और जो उसके मन में दिमाग में बस जाती है उससे भाग नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही बात है कि भाई जिस भी पैथी के डॉक्टर हो उनकी अपने एक समाज के लिए जिम्मेदारी होती है
2: और हर पैथी के डॉक्टरों ने समाज की सेवा की है समय समय के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी उनका रहा वो सभी ने बहुत समाज की सेवा की अपने अनुसार।
1: बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ में चूंकि अब हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया, श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा, बहुत सारे अभी अहम सवाल हैं बाकी जिसको सुनने के बाद आपको काफी कुछ समझने को जानने को मिलने वाला है, इसलिए कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो 91.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर से, जिसमें हम काफी ज्यादा अहम मुद्दों पर बात कर रहे हैं आयुर्वेद को लेकर। डॉक्टर साहब, जाने से पहले काफी सारी बातें हुई जो हमारे और आपके सभी के जीवन में काफी ज्यादा पता होना उसको जरूरी होता है, जानकारी होनी चाहिए। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन एक और आ रहा है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद इतना पुराना बताया जाता है कि सालों साल, कई हजार साल पुरानी पद्धति है, क्या आज भी, क्योंकि देखा जाता है कि फायदा करता है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है जबकि समय के साथ चीजें चेंज की जाती हैं, अपडेट होते हैं, तो आज भी कैसे इतने रिलेवेंट है, कितनी बीमारियों में ये काम आ जाती दवाएं?
1: देखो, आयुर्वेद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी एक आदमी ने लिख दिया हो या किसी एक आदमी ने बता दिया हो, ये सालों साल रिसर्च का परिणाम है। हमारे ऋषियों ने बहुत गहरी शोध इस पर की है, किस तरह से की है उस पर तो सोच पाना आज मुश्किल है। आज मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा
0: जी,
1: कि जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि अगर किसी को खून की कमी होती है, एनीमिया होती है, तो उसको लोहासो देना चाहिए, यानी आयरन कंटेंट देना चाहिए। लौह भस्म होता है लोहासो में, आयरन कंटेंट देना चाहिए। आज मॉडर्न साइंस, इतनी मॉडर्न होने के बाद, इतनी सारी रिसर्च के बाद, सब कुछ होने के बाद में आज हम जानते हैं कि मॉडर्न में भी, मॉडर्न जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है हमारा, उसमें भी अगर किसी को एनीमिया होती है तो उसे आयरन देते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि कहते हैं 2000 साल पुराने ग्रंथ हैं हमारे, तो उस समय ना हमारे पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट हुआ करते थे, ना कोई मॉडर्न रिसर्च हुआ करती थी। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे जो भी हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने किस तरह से इसकी खोज की होगी, कितनी रिसर्च की होगी, उसके बाद इस चीज को लिखा।
0: बिल्कुल,
1: तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज आयुर्वेद में जो भी बताई गई है, वो हमारे शरीर को और उस चीज, जो भी चीज हमारे खाने पीने वाली चीज है या जो भी चीज दवा में यूज होती है, उसके बारे में अच्छे से जान के, समझ के, उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव सब चीजों को समझ के तभी बताया गया है। मतलब हम इस चीज को भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयों को आप लंबे समय तक यूज करते रहे, जो भी इफेक्ट और साइड इफेक्ट बताया गया है ग्रंथों में, उसके अलावा शायद ही आपको कोई और देखने को मिले। इतना ज्यादा प्रामाणिकता है इस आयुर्वेद की
0: जी। तो ये तो आपने बताया कि 2000 साल पुरानी पद्धति बताई जाती है और आज भी रेलेवेंट है, लेकिन फिर एक सवाल जहन में उठता है,
1: बिल्कुल,
0: कि अगर आखिर ये इतनी कारगर पद्धति है और बिना नुकसान पहुंचाए इतना ज्यादा हमको फायदा देती है, स्लो प्रोसेस होता है, तो फिर आज के टाइम में ये पद्धति खोती क्यों जा रही है? आज लोग बाकी पद्धतियों की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है, इससे हटते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
1: नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं आयुर्वेद के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रीजन थे, हम 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, उससे पहले और बहुत सारी चीजें रहीं, तो कहीं ना कहीं हम लोग वही चीज उपयोग करने लगे या उन्हीं चीजों का सेवन करने लगे जो उनके द्वारा हम पर थोपा गया। हम अपनी मूल संस्कृति में बहुत सारी चीजें जो है मिस करते गए, खोते गए, आयुर्वेद भी उन्हीं में से है, पर हमने आयुर्वेद को पूर्णतया खो दिया ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आयुर्वेद आज भी हर घर के, हर माँ में, हर नानी में, हर दादी में आज भी जिंदा है। आप छोटी छोटी चीज, आप ठंडी में दही खाओगे तो आपके घर में कोई बुजुर्ग हुई टोक देगी, मत खाओ, जुकाम हो जाएगा।
0: सही,
1: तो ये कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद जो उनके मन में जिंदा है ना, वही उनसे कहलवाता है, कुछ अलग सा नहीं है ये।
0: बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं देखा ये जाता है कि लोग जिसे प्रेफर करते हैं डॉक्टर के पास फौरन जाते हैं एलोपैथ का इलाज, क्योंकि उनको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए होता है, जैसा कि अभी हमारी आपकी बात भी हुई थी कि लोगों को जल्दी फायदा चाहिए होता है, लेकिन उस चक्कर में कहीं ना कहीं ऑर्गन्स पे भी बुरा असर पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी रिसर्च है कि जहां बताया जाता है कि अंग्रेजी दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से बुरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किडनी हो या बाकी ऑर्गन्स हो। लेकिन आपने कहा कि ये टाइम टेकिंग तो होता है बट बेनिफिट देता है, तो हम एक साथ ये भी चीज एक बार जानना चाहेंगे कि आखिर किन किन रोगों के लिए ज्यादा बेस्ट इलाज इसमें है, हम टाइम भी दे सकते हैं और बाद में हो सकता है ये पूरी तरह से सही भी कर दें।
1: देखो, इसको मैं दो तीन तरीके से आपको बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट एलोपैथ या जो भी है, जिस भी पैथी, हर पैथी में होता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है और आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने आपको एक पेन किलर दे दिया, आपको दर्द से आराम मिल गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप ठीक हो गए।
0: जी,
1: आपको ठीक होने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और कुछ दिन तक चलेगा वो।
0: बिल्कुल।
1: तो ये कहना कि सिर्फ आयुर्वेद ही टाइम टेकिंग है, ऐसा सही नहीं है। सारी पैथी टाइम टेकिंग है। आयुर्वेद में हम जोड़ों के दर्द का इलाज करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि दुष्परिणाम ना हो उसके। अगर आप 6 महीने दवा खाते हो, तो अगर आप घुटने का दर्द ठीक करवाने आए और किडनी भी आपकी फेल हो गई, तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा किसी भी पैथी के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ नहीं करते, या हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो मूल पर्पज़ होता है, वो जो डिजीज़ है वो पूर्णतया समाप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको आज आराम मिला है, कल फिर से आपको वही प्रॉब्लम हो गई, या फिर से आपको आराम मिला, इलाज करवाया, 2-4-10 दिन आप ठीक रहे, फिर आपको समस्या होने लगी, वो ना हो। अगर आप एक बार ढंग से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं, जो समस्या है उसका पूर्णतया समाधान हो जाए।
0: ओके, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा।
1: हर पैथी के लिए ये आवश्यक है। कोई भी पैथी ऐसा नहीं कह सकती कि वो 2 खुराक दवा में, भाई अगर किसी को बुखार आता है, वो 1 डोलो खा लेता है, उसका बुखार उतर जाता है, पर बुखार ठीक नहीं हो जाता। बुखार ठीक होने में तो जो 5-6 दिन का निश्चित टाइम हो वो लगेगा,
0: यानी एक नेचुरल टाइम तो जो लगना है वो लगना ही लगता है।
1: हम बुखार को कम कर सकते हैं, पर बुखार को ठीक नहीं कर सकते 1 दिन में 1 खुराक में।
0: बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही जैसे कि अभी लास्ट हमने अभी क्वेश्चन किया था आपसे कि इतनी पुरानी पद्धति है, तो जैसे सभी चीजों में चेंज आया है, तो हम जानना चाहेंगे क्या आयुर्वेद में भी कुछ चेंजेस आए हैं, क्या टाइम टू टाइम रिसर्चेज हुई हैं, और कितनी आवश्यकता है इसमें और रिसर्चेज की?
1: अब रिसर्च की आवश्यकता, देखो रिसर्च की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहती है हर चीज में। जैसे जैसे हमारा स्वभाव बदलता है, हमारी चीज, जैसे पहले क्या होता था कि आयुर्वेद में चूर्ण दिया जाता था, चटनी दी जाती थी, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, हम टेबलेट और कैप्सूल्स पे आ रहे हैं, हम जो आसो अरिस्ट है उनको भी थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं कि लोगों को लेने में सुविधा हो। आज आदमी को अगर आप 3 ग्राम चूर्ण सुबह 3 तरह का और 3 ग्राम चूर्ण रात को 3 तरह का देने की कोशिश करें, तो वो नहीं खाएगा या नहीं खा पाएगा, या उसे तमाम तरह की समस्या होगी। तो वो आदमी आजकल कैप्सूल और टेबलेट्स में ज़्यादा भरोसा करने लगा है। तो हम भी इस आयुर्वेद को धीरे धीरे करके इस तरह से मॉडर्न कर रहे हैं कि लोगों को दवाइयाँ लेने में असुविधा ना हो। वो जिस तरह से और किसी पैथी की दवाई लेता है, उसी तरह सेम उसी तरह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले सके, उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स ना हो दवाइयाँ लेने में।
0: जी, ये तो आपने कहा कि ये आप मॉडिफाइड कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: हम जानना ही चाहेंगे कि कोई जैसे ट्रीटमेंट की जहाँ बात आती है, तो ट्रीटमेंट में भी कोई क्या फ़र्क आया है कि पहले आप दवाओं को कुछ इस तरह देखते थे, अभी कुछ अलग तरह से देखते हैं, या कुछ चीज़ों को और ऐड किया जाता है कि नहीं इसमें ये चीज़ की कमी होने पर इन चीज़ों को भी ऐड करके आफ्टर कोई रिसर्च के?
1: देखो, ट्रीटमेंट में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद परफेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, मैं और नहीं कह सकता।
0: ओके।
1: पर डायग्नोसिस में

0: आयुर्वेदिक की। इसके साथ ही हमारे ही शहर में या कहीं भी चले जाइए, बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे बाबा होते हैं जो इसका इलाज करते हैं। तो फिर कोई भी शख्स आपके ही पास क्यों आए?
1: हाँ बिल्कुल, ये सही सवाल आपका है। मैंने इस शुरुआत में ही इसका जवाब दिया था कि एक व्यक्ति है जो जिसने पढ़ाई की है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, तो उस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता, उस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि उसकी एक बाध्यता है समाज के प्रति, वो गलत नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार की नज़रों में है। ऐसे लोग जिनकी कोई डिग्री नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दवाई या हो सकता है बहुत अच्छा इलाज करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर विश्वसनीयता के मामले में अगर मुझे इलाज कराना हो तो सामने वाले की विश्वसनीयता किस वजह से है वो मैं ढूंढना चाहूंगा।
0: कोई पैरामीटर तो होगा।
1: हाँ,
0: जाहिर सी बात
1: है। तो अगर वो किसी पैरामीटर्स को पूरा करता है आपके, कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज है, इसने ऐसा ऐसा किया था, कई लोग कहते हैं कि उनके दवा में बहुत फायदा है, तो वो फायदा तो मतलब कोई भी लेमैन दे सकता है, और कोई दवा अच्छी है या बुरी है उसका डिसीजन मेरे ख्याल से लेने के लिए एक योग्यता चाहिए कि किस दवा, कोई दवा फायदा करती है या कोई दवा नुकसान करती है, वो डिसीजन लेने के लिए एक विशेष योग्यता होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे कोई रिसर्चर है वो बताएगा कि ये दवा खाने से फ़ायदा होता है हमें, या इस दवा खाने से तुरंत तो फ़ायदा होता है लेकिन कुछ समय के बाद में नुकसान होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर लोगों को और पहले से ज़्यादा बीमार कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे पास ही आए, पर मेरे कहने का मतलब ये ज़रूर है कि वो देखे कि जिस व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रमाणिक है, वो ऐसा है कि उसकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है, वो गलत ना हो, वो ठग ना हो, वो लोगों को मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भ्रमित ना कर रहा हो।
0: करेक्ट। हाँ, और मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रीटमेंट करने वालों के साथ ही दिक्कत नहीं है, यानी ये सिर्फ ठग अगर जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इलाज करने वाले के रूप में ही नहीं बल्कि ये कंपनीज के रूप में कैसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ तेल हुआ, कुछ ऐसे चीज़ें बना बना के चूरन को, बहुत सारी ऐसी दावे किए जाते हैं कि फला बीमारी में एकदम तरीका है।
1: देखो हमारे, हम कुछ भी कहें कि आयुर्वेद हमारे यहाँ से लुप्त हो गया है या हम आयुर्वेद से दूर चले गए हैं, पर हमारे मन में, हमारे जहन में आयुर्वेद के प्रति जो एक भरोसा है ना, वो अभी भी बना हुआ है, और उस भरोसे का फ़ायदा उठाने की बहुत सारे लोग कोशिश करें। अभी दो दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तीन दिन पहले, कि कम से कम 30-40 ऐसी दवाइयाँ थी जिनको सरकार ने बैन किया, नुकसान वो मतलब प्रतिबंधित चीज़ों को मिक्स करके दवाइयाँ बना रहे थे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी पढ़े, जैसे आपका सवाल था कि आपके पास ही क्यों आए, तो मेरे पास अगर कोई आएगा और मैं कोई दवा किसी पेशेंट को लिखूंगा तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं उसके बारे में जानता हूं कि नहीं जानता हूं। तो कोई डॉक्टर या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आपको कोई दवाई देगा तो वो ज़रूर उसकी
0: जांच कर लेगा
1: कि वो कितना अच्छी है, कैसे है, आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं है, क्या है। कोई भी डॉक्टर गलत दवा नहीं लिखेगा, वो किसी भी पैथी का हो।
0: जी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो बाकी अदर जिनकी बात हमने की, वैद्य जो बाबा कहलाते हैं, वो आप पड़ताल तो नहीं करते हैं, वो सबको बस एक कॉमन दवा उठा के दे देते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम होती है। हो सकता हो हम और आप एक ही चीज़ के पेशेंट हो लेकिन बॉडी टाइप अलग होता है, हो सकता है एक के साथ हमारे साथ दूसरी बीमारी हो, तो उसके लिहाज से दवा थोड़ा सा और चेंज होनी चाहिए।
1: मैं इस विषय में थोड़ा सा और क्लियर करूंगा कि आयुर्वेद में तो ये कहा जाता है कि अगर किसी को फीवर है तो फीवर के तीन कॉज होते हैं, तीन सिम्टम्स होते हैं, मूलतया तीन दोष बताए जाते हैं, वात और पित्त और कफ आयुर्वेद में। तो फीवर भी वातज हो सकता है, पित्तज हो सकता है, कफज हो सकता है, और तीनों का डिफरेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब अगर वातज फीवर है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कफज में नहीं होगा, और जो कफज फीवर है उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो वातज में नहीं होगा। तो सभी को एक तरह की दवाई देके ठीक करना ये आयुर्वेद में संभव नहीं है।
0: जी,
1: अगर सभी को एक दवा बता दी जाए कि ये दवाई है, ये सारे बुखार में काम करती, तो ऐसा आयुर्वेद में संभव नहीं है। आयुर्वेद में हर बीमारी को बहुत बारीकी से परख कर देख कर तभी उसका इलाज किया जाता है।
0: जी, जैसे बाकी अदर पैथीज में भी होता है। हाँ, और ये एक सही तरीका भी है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बता दें हमारे श्रोताओं को कि ये वायु पित्त कफ होता क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग।
1: आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ये तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और इन तीनों से ही हमारे शरीर की रचना होती है। अगर ये तीनों साम्य अवस्था में होते हैं, जितना शरीर में होना चाहिए, तो हम आरोग्य होते हैं, और अगर इनमें विषमता आ जाती है, जितना होना चाहिए उससे घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं।

0: उसी उसी स्थिति को बीमारी कहते हैं।
1: ओके,
0: इन तीनों की विषमता ही बीमारी है
1: जी। तो आपने कहा कि अगर जैसे ये बैलेंस अगर है तब तो ठीक है, अगर इससे घटे या इससे बढ़े तो फिर दिक्कत आती है।
0: बिल्कुल,
1: और फिर ट्रीटमेंट के लिए इंसान आता है। हाँ। इसी के साथ चूंकि अब हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया है, आएंगे तो आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक जीवन कैसा होना चाहिए किसी भी मनुष्य का, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है, लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: अरे सुना?
5: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है गोधुली। नाउ यू लिसनिंग ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर से। सर, जाने से पहले अभी हमने आपसे और श्रोताओं से ये कहा था कि आने के बाद हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस विषय में विस्तार से हमारे श्रोताओं से बताइए।
6: हाँ जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, और मुझे इस बारे में तो जरूर ही बात करनी चाहिए अगर हम आयुर्वेद पे बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
6: देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद कहता है कि जो हमारे 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, इनका साम्य होना जरूरी है। और इनको साम्य अवस्था में रखने के लिए मुख्य रूप से 2-3 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। पहला तो होता है आहार, हम भोजन क्या करते हैं। दूसरा होता है विहार, विहार का मतलब हम कह सकते हैं कि हम हमारी दैनिक क्रियाकलाप क्या है
1: जी।
6: सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, व्यायाम, सब कुछ विहार में आता है। और तीसरा होता है हमारी मानसिक अवस्था, हम कैसे हैं, हम दुखी हैं, हम खुश हैं, हम कैसे हैं। ये तीनों चीज़ जो है आपके दोषों को साम्य अवस्था में रखने में मदद। तो सबसे पहले हम आते हैं आहार पे, जो हमारा आहार, हमारा भोजन है। कुछ चीज़ें हैं जो वात बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पित्त बढ़ाती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कफ को बढ़ाती हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कफ प्रकोपित है और वो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करेगा तो उसको बीमारी होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सॉरी, जोड़ना चाहूँगा कि आयुर्वेद का एक सिद्धांत ये भी है, आयुर्वेद ये भी कहता है कि जो भी शरीर में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसका मुख्य अधिष्ठान होता है हमारी अग्नि, हमारा पेट, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है। कहते हैं अगर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है तो ही आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होगी, तो ही आपकी हड्डियाँ कमजोर होंगी, या तो ही आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कार्डियक, मतलब एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पेट है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो मुख्य केंद्र है हमें स्वस्थ रखने का। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें किस समय क्या भोजन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम रात को दही खाते हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, या रात को हम बहुत हैवी डाइट लेते हैं, या रात को हम बहुत देर से खाते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। रात को हमेशा सुपाच्य और हल्का भोजन लेना चाहिए। दिन में, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आयुर्वेद एक्चुअली आयुर्वेद की ब्रेकफास्ट जैसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। दोपहर, सुबह का भोजन और शाम का भोजन,
1: अच्छा, दो ही भोजन की बात,
6: दो भोजन की बात। और जो शाम का भोजन है उसका समय 5 से 6 बजे के सूर्यास्त से पहले होना चाहिए।
1: ओके,
6: मतलब रात, देर रात को खाने जैसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब हम सुबह भोजन करते हैं, 8-9 बजे हमने खाना खाया और 5-6 बजे फिर हमने खाना खा लिया। रात को हम लिक्विड पानी, दूध या कुछ ऐसा ले सकते हैं। यही चीज मतलब 80% समस्याएं तो मुझे लगता है यही चीज समाप्त कर देती है। दूसरा, हम भोजन में क्या खाते हैं, बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें खाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बताएं कि घी, कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो तलने वाली चीजें बनाई जाती थी कुछ समय पहले, आज के बहुत ज्यादा पहले नहीं, मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले, वो देसी घी में ही बनती थी या सरसों के तेल में बनती थी।
0: जी,
6: देसी घी एक ऐसी चीज है, आप कभी अपने घर पे भी अजमा के देख सकते हैं कि एक दिन आप रिफाइंड या डालडा से पूड़ी बना के खाएं, आप देखेंगे आपको इंडाइजेशन होगा, एसिडिटी होगी, सारी समस्या होगी। दूसरे दिन वही पूड़ी आप देसी घी में बनाकर खाएं, आप देखेंगे आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी और आपका डाइजेशन पहले से अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि घी जो है वो पित्त शामक और अग्निवर्धक है, यानी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाला है। आप कभी भी आपको एसिडिटी हो रही है, आप थोड़ा सा घी खा के देखो, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि चिकित्सा जो है वो करने के लिए कुछ अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो भोजन है वही हमारी चिकित्सा है। हमें कब खाना है और क्या खाना है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें चिकित्सा के लिए कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, बिहार जैसे हुआ, बिहार में जैसे कहते हैं कफ वृद्धि, अगर कोई व्यक्ति है वो भोजन करने के तुरंत बाद सो जाता है दिन में, तो उसको इंडाइजेशन हो जाएगा, उठने के बाद उसका पेट भारी भारी रहेगा, सर दर्द होगा, थोड़ा सा सर भारी भारी सा रहेगा, क्योंकि दिन में सोने से कफ प्रकोपित होता है। कफ प्रकोपित होगा तो अग्नि को मांद करेगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा उसको। अगर कोई आदमी रात्रि जागरण करता है उससे क्या होता है, वात प्रकोपित होता है। आप स्वयं पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप एक रात पूरी रात जागो, आप देखो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पैरों में दर्द होगा, सर भारी भारी सा रहेगा, शरीर में झंझनाहट सी होगी, आपका पूरा मतलब वात के जितने शरीर में ड्राइनेस हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सोचो कि अगर आप रात को जागते हैं तो आप सुबह अपने शरीर में ड्राइनेस फील कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि आयुर्वेद में जो भी सिम्टम्स और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन पे बहुत गहरी रिसर्च की गई है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनको सुन के या थोड़ा सा जान के बता, हमारे शरीर के बारे में बहुत गहरी रिसर्च करके तभी हमारे आहार और विहार का निर्धारण किया गया है। आयुर्वेद में दिन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, दिनचर्या और ऋतुचर्या दोनों बताया गया है। ये भी बताया गया है कि किस ऋतु में किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम में लगभग सभी का डाइजेशन वीक हो जाता है, पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं, लोगों को गैस्ट्राइटिस जैसे होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस मौसम में आयुर्वेद के अनुसार हमें हल्का भोजन लेना चाहिए। लेकिन हमारा चूंकि अब ऐसा समय हो गया कि सबके पास स्टोर होता है सारा राशन, पहले समय होता था कि लोग खेत से पैदा होता था वही खाते थे, अब क्या है कि हमारे पास सब कुछ स्टोर होता है, दाल है, चावल है, आटा है, सारी चीज़ें हमारे पास होती है। तो हमारा जो भोजन है वो एक रूटीन बन गया, दाल चावल रोटी सब्जी हम परमानेंट खाते हैं, या पूड़ी पराठा जो भी हम खाते हैं अभी वो परमानेंट खाते हैं। इस वजह से हमें हमारी पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी। पाइल्स जो है, लोग पाइल्स का, मुझे बहुत सारे लोग मिले कि सर हम पाइल्स की दवा खा रहे हैं लेकिन पाइल्स ठीक नहीं हो रहा। पाइल्स अलग से कोई बीमारी नहीं है, पाइल्स इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाला बदलाव है शरीर का, ये कह सकते हैं हम। मतलब अगर आपका डाइजेशन फिट है तो कभी पाइल्स जैसी समस्या नहीं होगी। अगर आपका डाइजेशन फिट है तो शायद ही घुटनों का दर्द हो। अगर आपका डाइजेशन फिट है, माइग्रेन जैसी समस्या, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या, ये सारी समस्या अपने आप ही धीरे धीरे सेटल्ड हो जाएंगी अगर आपका डाइजेशन फिट है तो।
0: जी, तो मतलब आपने ये बताया कि एक तो खाने का वक्त निर्धारित होना चाहिए,
6: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज है जैसे विहार के बारे में आपने बताया,
6: बिल्कुल, कि जैसे व्यायाम जैसे है, व्यायाम के बारे में हम आज के समय में हम जिम जाते हैं, परमानेंट एक्सरसाइज करते हैं, खूब अच्छे से करते हैं, पर आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें सर्दियों में, जो सर्दी का मौसम है, उसमें खूब अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब हमारी शक्ति का आधा, जितना हमारी टोटल शक्ति है उसकी आधी शक्ति हमें व्यायाम में खर्च कर सकते हैं हम सर्दियों के महीने में। गर्मियों में अपने शक्ति का 1/4 हम खर्च कर सकते हैं व्यायाम में, और बारिश में हमें बिल्कुल व्यायाम नहीं करना चाहिए, कोई भी बहुत हैवी एक्सरसाइज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी अग्निमांद होती है, अगर हम ज़्यादा व्यायाम करेंगे हमें ज़्यादा भूख लगेगी, लेकिन हमारी अग्नि डाइजेशन वीक है, हम उतना जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हमें समस्या उत्पन्न होने लगेगी।
1: वाह, मतलब सीजन भी आपको ध्यान, कौन से सीजन में कितना क्या करना है,
6: क्या खाना है, क्या करना है, दोनों चीज़ें।
1: और आपके अकॉर्डिंग आपने कहा कि अगर इन चीज़ों को समय अनुसार कर लिया जाए तो 80% बीमारियां तो वैसी दूर हो जाएंगी।
6: मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम अपने खाने पे ध्यान रख लें, अपने डाइजेशन पे, तो 80% बीमारियां दूर हो जाएंगी, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। समय से खाएं और उचित, जो हमारे लिए उचित है वो खाएं। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा
1: जी,
6: कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे खाने के लिए क्या उचित है, हर व्यक्ति को पता है कि उसे क्या नुकसान करता है और क्या उसके लिए उचित है। हम जानबूझ के नुकसान करने वाली चीज़ें स्वाद के लिए खाते हैं। किसी आप पूछ लो कि आपके लिए क्या नुकसानदायक है, वो सारी चीज़ें बता सकता है, क्योंकि हमारे मूल से आयुर्वेद जुड़ा हुआ है। ये भी एक एग्जांपल है कि आयुर्वेद से हम अलग नहीं हो पाए आज तक भी।
1: सही बात है। हाँ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वाद और स्वास्थ्य में कई लोग स्वाद को प्रायोरिटी देते हैं तो कई लोग स्वास्थ्य को देते हैं।
6: बिल्कुल,
1: और उसका परिणाम सामने दिखने को आ ही जाता है।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में हम आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे, एक अहम बात होती है फूड कॉम्बिनेशन की, कि क्या खाना है, किस चीज़ के साथ क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जब एक साथ दो ऐसी चीज़ों को खाया जाता है जो विषम होती है, तो उससे कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है।
6: बिल्कुल,
1: उसके बारे में
6: बिल्कुल मैं बताऊँगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे उसको आयुर्वेद में कहा गया विरुद्ध आहार, मतलब दो चीज़ें ऐसी जिनको साथ में मिला के खाने से आपको फायदा नहीं नुकसान होगा, उन्हें विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे शहद और घृत, ये दोनों हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं, पर अगर दोनों को सम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके खाया जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक है, जहर जैसे होता है, मतलब एलर्जिक होते हैं। मछली और दूध या दूध में नमक, ये विरुद्ध आहार है। और हम कह सकते हैं कबूतर का मांस सरसों के तेल में, इसे विरुद्ध आहार बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार। शराब पीने के बाद में दूध पीना विरुद्ध आहार बताया गया है। बहुत लोग कच्चे अंडे को दूध में मिला के खाते हैं, ये भी विरुद्ध आहार है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो विरुद्ध आहार के अंतर्गत आती है। कुछ चीज़ों को हम आज के समय में पालन कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ों से दूर रह सकते हैं और कुछ चीज़ों से नहीं रह सकते हैं।
1: जैसे
6: पनीर, अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखा जाए तो पनीर भी विरुद्ध आहार है।
1: किसके साथ?
6: पनीर की सब्जी।
1: ओके,
6: विरुद्ध आहार है लेकिन हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन पनीर हम खा सकते हैं पर उसकी सब्जी बना के नहीं खा सकते, कच्चा पनीर हम खा सकते हैं।
1: अच्छा, लेकिन इसमें भी क्या डॉक्टर साहब कुछ कम और ज्यादा का है? जैसे एक चीज तो है कि कुछ भी आपने एक बार में लिया तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया, पनीर का आपने एग्जांपल दिया, तो क्या मतलब कुछ चीजें चलाऊ हो जाती है क्या?
6: ऐसा नहीं है, विरुद्ध आहार जो भी है वो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत खाओगे जानलेवा हो जाएगी
1: जी,
6: पर आप लंबे समय तक जब उसका उपयोग करेंगे तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। वो लंबे समय जब आप उसको रेगुलर यूज करते रहेंगे तो आपको उसका दुष्प्रभाव दिखना चालू होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक डोज लेंगे और आपको समस्या होने लगेगी।
1: ओके, यानी टाइम टेकिंग ये भी है।
6: हाँ हाँ बिल्कुल, लंबे समय तक जब आप विरुद्ध आहार का सेवन करेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न होगी, बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी
1: जी। तो हमारे ख्याल से हमारे श्रोताओं को ये विरुद्ध आहार के बारे में जानकारी मिलके उनको काफी ज्यादा समझ में आई होगी बातें, और ये बहुत ही अहम बात है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा फूड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसी कड़ी में अभी एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे, कि जैसे कि हमने देखा है कि एलोपैथ में भी लोग यह करते हैं कि जरा सा बुखार आता है तो कुछ दो चार ऐसी गिना चुना दवाएं हैं जो जाके ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से। आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी दुकान होती है जहाँ आदमी जाके चूर्ण, कोई ऑयल या कोई ऐसे पेय पदार्थ होता है वो ले लेता है, लेकिन डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं और उनको लगता है ये बता दिया जाता है कि ये चीज़ फ़ायदा करेगी, ले लेते हैं। तो ये कितना इस चीज़ को आप सही मानते हैं?
6: देखो, आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं हमेशा के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, हर घर में लगभग हर आदमी जानता है आंवला, आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। पर एक चीज़ और है कि अगर किसी को अंग्रेजी में, हिंदी में सफ़ेद दाग कहते हैं, अगर किसी को सफ़ेद दाग है तो उसे आंवला नहीं लेना चाहिए। किसी की अग्नि जो है बहुत मंद है तो उसे आंवला नहीं लेना चाहिए। आंवला पित्त शामक होता है और पित्त की कमी से की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं, अगर आंवला आप ज़्यादा लेंगे तो बढ़ जाएंगी। ऐसे ही कोई भी चीज़ आप अगर ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं और आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो आपको नुकसान करेगी। आपको एसिडिटी है, आप दही खाएंगे आपको नुकसान करेगा। आप हाई ब्लड प्रेशर में नमक नहीं खाते, जैसे आप नमक खाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब है कि आपको सलाह जो जरूर लेनी चाहिए डॉक्टर से। आपको अभी फीवर आया रात में, इमरजेंसी है, आपने एक डोलो खा लिया, ठीक है, पर डोलो के स्ट्रिप पे देखो आप, उस पे लिखा हुआ है कि इंजीरियस टू हेल्थ।
1: जी जी,
6: इंजीरियस टू हेल्थ मतलब कोई भी आप बुखार की दवा खाते हैं तो उस पे लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ या इंजीरियस टू लीवर, कुछ भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए, कुछ भी, कोई भी दवा आप ले रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि हमारे रोजमर्रा की चीजों जैसा ही है, पर कई बार वो चीजें नुकसान भी करती हैं।
1: यानी सलाह बहुत जरूरी है।
6: बिल्कुल, बिना सलाह के कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए।
1: कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे, चूंकि अब हमारे आपके चलने का वक्त भी हो चला है।
6: बिल्कुल,
1: लेकिन जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाहेंगे कि आप बैठे हैं स्टैम्प रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है।
6: बिल्कुल,
1: तो इसको लेके आपको क्या लगता है कि जिस तरह के प्रोग्राम हम प्रसारित कर रहे हैं, इसके आने से गोंडा में कितना चेंज होने वाला है, इसको सुनने के बाद जो लोग सुनते हैं उनके जिंदगी में कितना चेंजेस आएंगे?
6: जैसा कि पहले मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं अपने गांव से, अपने घर से काफ़ी गहरा जुड़ाव मेरा रहा, तो जब पहली बार एफएम चालू हुआ ये, तो उस समय मैं दिल्ली में था, मेरे किसी मित्र ने बताया कि अपने गोंडा में भी एफएम चालू हुआ है। तो जब मैंने पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड किया इसका, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और सुना, तो मुझे बड़ा जुड़ाव महसूस हुआ, बड़ा अपनापन सा लगा। ऐसा नहीं लगा, नॉर्मली हम कार में चलते हैं, किसी शहर में है तो वहाँ एफएम बजता रहता है, तो हम एफएम गाने सुनने के लिए लगाते हैं, पर जब हम ज्ञानस्थली को प्ले करते हैं, और खास करके जब हम गोंडा से बाहर हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने शहर में आ गए हैं, अपने शहर से जुड़ गए हैं।
1: क्या बात है, तो वो एहसास कराता है।
6: बिल्कुल बिल्कुल, अपनेपन का एहसास कराता है।
1: क्या बात है, और पहली बार इस तरह का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई। हर गेस्ट आते हैं, उनकी अपनी एक राय होती है, आपका ये है कि जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है जब स्पेशली आप बाहर होते हैं, ये बहुत अच्छा मुझे लगा जान के। और हमारी कोशिश भी है कि हमेशा लोग इससे जुड़े रहें, और हम ऐसे ही जनहित की जानकारी हमेशा इस तरह देते रहें कि लोगों में एक जागरूकता आए, एक ऐसा मंच हो जहाँ पे एक पसमानदा समाज आए, जहाँ पे हम एक दूसरे से बातचीत करें, और बहुत सारी समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के माध्यम से ही सॉल्व कर लिया जाए, ये हमारी हमेशा की कोशिश रहेगी। आप डॉक्टर साहब आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमने आपके जीवन के बारे में बात की, आपने अपने जीवन के बारे में बताया, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, और साथ ही आयुर्वेद से जुड़ी हुई न जाने कितनी सारी हमने बातचीत की, न जाने कितने सारे हमने आपसे प्रश्न किए, जिसका आपने बखूबी उत्तर सरलता व सहजता के साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
6: अदनान जी, मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी मीठी आवाज़ रेडियो पर अक्सर सुनते रहते हैं, मुझे कभी नहीं लगा था कि जब पहली बार मैंने सुना आपकी आवाज़ रेडियो पे, लगा था कि हम आप आमने सामने बैठ के बात करेंगे, आज मुझे बात करके बहुत खुशी हुई, और मुझे लगा कि आपकी आवाज़ रेडियो पे जितनी मीठी है वास्तव में भी उतनी ही मीठी है, कोई फ़र्क नहीं है।
1: बिल्कुल, लेकिन इसका हम कोई दवा नहीं बताने वाले।
6: थोड़ा कम कीजिए, नहीं तो शुगर और बढ़ जाएगा।
1: लेकिन हम बता दें कि हम भी जो इस्तेमाल करते हैं वो आयुर्वेद की दवा है, जो कि नुकसान नहीं करने वाली।
6: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बस सीधा सा प्रेम है और कुछ नहीं है आप सभी लोगों का। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जनहित की बात हमारी हुई, लोगों को बहुत फायदा इससे जरूर होगा। जो भी हमारे श्रोतागण इस वक्त सुन रहे हैं, वो इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो न जाने कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीने की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।
6: थैंक यू
1: सो मच। अपने श्रोताओं से कहेंगे कि हम सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, उनसे जुड़ी हुई कई बातें करेंगे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में भी जानेंगे। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की

यस ऑफ कोर्स, आप सभी का स्वागत है आरजुबीना वाले स्टाइल में आपकी वाली शाम में। आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला आरजुबीना वाला, और अब शाम के बज चुके हैं 6:09, और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, मौसम तो परिवर्तित हो ही रहा है और म्यूजिकल वाइब भी चेंज हो रही है, बिकॉज आप सुन रहे हैं गोंडा शहर की धड़कन, जो सुरीली हो, जो मधुर हो, जो एंटरटेनिंग हो, जो रोज़ कुछ ना कुछ सिखाए। ऐसी धड़कन भला हर कोई क्यों ना चाहे। फिलहाल वापस से आप लोग के पास आते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि आज, जैसा कि आप सभी को पता है कि जून का महीना यानी कि जून 2026 टाटा बाय बाय कहने को तैयार है, एंड देखते ही देखते हम मतलब साल के मिड में पहुँच चुके हैं। और जैसा कि अक्सर बच्चे कहते हैं, स्कूल वाले स्पेशली, मुझे तो ऐसा नहीं लगा इस बार, तो ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं ना कि जून पता नहीं कब बीत जाता है, पता नहीं चलता। और ऐसा हमारे यूपी बिहार के गांवों में भी लोग कहते हैं ऐसे कि जून जान नहीं पड़त। तो ये बात सही है यार, जून का महीना बहुत छोटा सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें बच्चों के वेकेशंस होते हैं या क्या होते हैं, ये तो ईश्वर जाने। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, आज 29 जून है और आप सभी को बताना चाहूँगी, आज एक स्पेशल डे है जिसे हम सभी का ताल्लुक है। अब सोचेंगे किस हमारा किस दिन से ताल्लुक नहीं होता, हमारा तो हर दिन से ताल्लुक है, लेकिन आज का जो दिन है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और अगर हमारे ग्राफ की बात करें, हमारे स्टैट की बात करें, तो हमारे देश का स्टैट ज़्यादातर चीज़ों में कहीं गिरता कहीं उठता दिखता है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें हमेशा बढ़ता है, जनसंख्या। यस, जनसंख्या क्या मतलब, जो देखिए चल रहा है जनसंख्या काउंटिंग चल रही है, घर घर आ रहे हैं जनसंख्या करने के लिए, भाई आपके घर में कितने लोग हैं, क्या है, कैसे हैं। और अभी मैंने मतलब एक मज़ेदार देखा इंसिडेंट, एक आदमी के घर कोई मतलब पूछने कि आपके घर में क्या क्या है, मतलब चीज़ों का भी मतलब वो देखेंगे ना, इससे हमें पता चलेगा हमारे देश में कितने BPL हैं लोग, कितने APL हैं, और कितने अबव मतलब पावर्टी लाइन हैं, और कितने मीडियोकर हैं, मतलब इससे हमें पता चलेगा कि हमारे देश का जो कहते हैं ना इकोनॉमी कैसी है, ये भी इससे अंदाज़ा लगाया जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं, भैया हमारे यहाँ कार नहीं है, हमारे यहाँ स्कूटर नहीं है, साइकिल है, साइकिल अच्छा साइकिल कहाँ है दिखाओ, अरे साइकिल कोई ले गया है मांग के, मतलब साइकिल बताने के लिए कि हाँ सरकार कुछ देगी वेगी नहीं, बस हमें ये दिखाना है कि हम किस कैटेगरी में जा सकते हैं। बाकी तो गवर्नमेंट क्या किस लिए पूछ रही है तो मुझे अभी भी नहीं बहुत ज़्यादा आइडिया है, पर हाँ पूछा जा रहा है तो वो आपको डिटेल लेनी होगी। और अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, तो इसके बारे में थोड़ा बता ही देती हूँ, जब बात शुरू हुई है तो उसके बारे में जानना तो बनता है। वैसे शाम आज आपको बता दूँ कि मंडे की शाम है, और मंडे की शाम यानी कि आपकी और हमारी शाम, जिस दिन आप बोलते हैं और मैं सुनती हूँ, और आपकी आवाज़ मैं ही नहीं पूरा देश सुनता है, देश ही क्यों देश दुनिया सुनती है, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी ना सिर्फ आपके पास, ना सिर्फ मेरे पास, बल्कि देश दुनिया में आपके एप्लीकेशन से हर किसी के पास अवेलेबल है। और हाँ मैं फिर से बता देती हूँ, जिसको सुनने में थोड़ी भी कठिनाई हो रही है, आज जो फ्रिक्वेंसी पे सुन रहे हैं और उन्हें लगता है कि भाई मुझे अगले महीने तो दिल्ली जाना है, मैं कैसे सुनूंगा, भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अपने। और आज सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन में आसानी से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, कहीं भी थोड़ा सा इंटरनेट यूज़ करके आप अपनी जो देश की धड़कन है, आपके शहर की धड़कन है, उसे लगातार सुन सकते हैं। वैसे धड़कनों को रुकना भी नहीं चाहिए, धड़कनें रुकी तो भाई हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉज आ जाएगा, तो ऑफकोर्स ये आपकी हैबिट में होना चाहिए कि हाँ आप सुनते रहें और अपडेटेड रहें। गुड इवनिंग कमल लैन, कैसे हैं आप? तो चलिए बात करते हैं आज के खास दिन की। तो मैं बता दूं कि आज है भारतीय सांख्यिकी के जनक यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिक के जनक जो हैं, उनका नाम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिक को एक नया आयाम दिया था, ठीक है। और ना सिर्फ आयाम दिया बल्कि इन्होंने राष्ट्रीय विकास, सामाजिक आर्थिक योजनाएं, नीतियां, इन सब को स्टैट पे ला के खड़ा कर दिया, जिससे हमें पता चल सके कि हम दौड़ रहे हैं बहुत सालों से, तो हमारा दर क्या है, रेट पता चल सके कि इंसान ग्रोथ कर रहा है तो किस रेट से कर रहा है, सही चल रहा है या धीरे चल रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है स्टैटिस्टिक्स से ही पता चलती है। और मैथ्स का सबसे अच्छा हिस्सा मुझे यही माना लगता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बड़े आराम से लग जाते हैं, चाहे वो कहते हैं ना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके मतलब मेन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस हो, मज़ेदार होते हैं, ठीक है। तो ये दिन आज के लिए बहुत ज़्यादा खास भी है और मज़ेदार भी, और इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। और साथ ही साथ आज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स भी है,
इसे अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस भी बोलते हैं। अब आपको पता है क्या क्या इसके बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन अब जनसंख्या की बात हुई तो मैं आपको साल 2011 में जो जनसंख्या हुई थी, मतलब जो कैलकुलेशन हुआ था, उसके बारे में बता देती हूँ कि कैसे क्या चीज़ें सामने आई थी। तब आप लोग को बता दूँ सबसे पहले कि आपका टाइम भी हो चुका है कॉल करने का, तो जो भी अपनी आवाज़ में कुछ भी बताना, सुनाना, गाना कहना, पढ़ना, शायराना अंदाज में शायरी सुनाना चाहता है, वो प्लीज़ आगे आ सकता है। गुड इवनिंग अनिल, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस प्यारी सी शाम में। एक कप चाय की प्यारी लेके शाम को इतने म्यूज़िकल अंदाज में एंजॉय करने का टाइम मुझे लगता है अगर हमारे पास है तो हम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। यस ऑफ कोर्स हैं। और मौसम ने भी साथ देना धीरे धीरे शुरू कर दिया है, और बहुत डराया गया था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत राहत है, भगवान नज़र ना लगे इस बारिश को, ऐसी होती रहे। तो चलिए साल 2011 की जो कहते हैं ना कि जनगणना थी उसकी बात कर लेते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। और अब जो जनगणना थी वो 2021 में होनी थी, लेकिन आपको पता है कि 2021 में क्या हुआ था, किसी को याद है कि नहीं? हाँ, याद तो आ ही गया होगा। कोविड ने पूरे दुनिया को, ना सिर्फ भारत को, सबको घेर रखा था, इसीलिए इस साल हो रही है जनगणना। अब आपको बता दूँ कि जनगणना जो है बेसिकली सभी जो जनसांख्यिकी है उनके विश्लेषण को बढ़िया से दिखाने के लिए, और हमारे देश में किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, दर कितना है, और जो सेक्स रेशियो वो क्या है, इन सबको बताने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 2011 से जुड़े जो आंकड़े थे उनके बारे में क्या क्या चीज़ें सामने आई, और उस जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश की जो कुल जनसंख्या थी वो 1.21 बिलियन थी, यानी कि 121.08 करोड़ जनसंख्या थी हमारे देश की। और सबसे मस्त बात तो ये है कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था, बताइए बताइए सोच के बताइए। उत्तर प्रदेश, भाई हम लोग उत्तर प्रदेश हैं, और जितना उत्तर देते हैं ना उतना ही हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे जनसंख्या ज़्यादा होने के पीछे हमारे क्षेत्रफल भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, हमारा लैंड एरिया भी ठीक ठाक है। और सबसे कम जो आबादी वाला राज्य बना वो है सिक्किम, 6.10 लाख वहाँ की मतलब जो जनसंख्या थी। तो भाई सिक्किम वाले क्या है भाई थोड़ा हमारे यहाँ की जनसंख्या को अपने यहाँ सेटल करें, और हमारी जो कहते हैं ना जनसंख्या का दर है उसको थोड़ा स्टेबलाइज करें। एनीवे देखते हैं इस बार कौन बाजी मारता है। अब मैं आपको बता दूं कि जनगणना की जो तालिका है 2011 के पहले 2001 में हुई थी, 1991 में हुई थी, और इन सब में जो खास चीज़ यही है कि हमारे देश को अपने पथ पे स्पीड किस क्षेत्र में बढ़ानी है उसके बारे में बात होगी, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। तो अभी तो एप्लीकेशन से के थ्रू भी आप अपनी जो कहते हैं ना जनगणना करा सकते हैं, तो इसमें कोई डरने या सोचने समझने की या परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम आसानी से जनगणना खुद एप्लीकेशन से कर सकते हैं, आप सभी को पता होगा, और आपके घर बताने वाले भी लोग आए होंगे, बहुत अलग अलग तरह से आपको सजेशंस मिले होंगे। तो आगे बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे मैं सोच रही हूँ आप लोग के कॉल्स भी ऑन एयर कर लूँ। और एक पोइट्री पढ़ने का मन कर रहा है मेरा, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। एक बहुत ही बड़ी फेमस पोइट्री है जिसको सुनने के बाद आप सबके दिलों की धड़कनें एकदम कहते ना कि मज़ेदार हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी। कहते हैं कि पक्षी बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ बांचते हैं।
हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरते हैं और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी पर गिरता है और हम कहते हैं कि बारिश होती है। तो ये पंक्तियाँ मैंने रामधारी सिंह दिनकर की जब पढ़ी तो मुझे ये बारिश को देख के बहुत मतलब रिलेटेबल लगी कि बारिश सिर्फ बारिश ही नहीं है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह के मैसेजेस को ले जाने का जरिया भी है। भाई कहाँ से वाष्पीकरण हो के वेपर्स मतलब कॉन्डेंसेशन करके बादल बन के हमारे यहाँ आके बरस रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत दूर के मैसेजेस लेके हमारे पास आए हैं और हमारे पेड़ पौधों को फील हो रहा है कि हाँ कहाँ कहाँ के मैसेजेस हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को फील करते हुए चलिए बारिश के लिए बढ़िया सा गाना सुनते हैं क्योंकि बहुत प्यारा सा मौसम चल रहा है और आजकल बारिश रात में हो रही है। क्यों रात में हो रही है, इसके पीछे का कोई रीज़न बताएगा मुझे कि आजकल बारिश रात में क्यों हो रही है, दिन में नहीं हो रही? लेकिन मैं बताऊं, मैं सपोर्ट करूंगी इस चीज़ को कि दिन में देखिए हम लोग के काम होते हैं, आना जाना होता है, भगवान भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न हो गए हैं कि भाई कोई इंसान किसी का आवागमन किसी का काम किसी भी चीज़ में कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आराम से जब रात में सब सोएंगे तब हम बरसेंगे लाइक दैट। तो चलिए हम सुनते हैं बरसात पे एक प्यारा सा गाना। आप लोग बताइए ये गाना आपको कितना पसंद आया और साथ में मुझे ये भी बताइए कि रात में बारिश आखिर क्यों हो रही है। जहाँ तक मुझे लगा वो मैंने आपको बताया, अब आपकी बारी है, अब आपको बताना है कि बारिश के पीछे की क्या धुन है। फिलहाल तो मैं जब भी बारिश की बात आती जुबीन के इतने सारे गाने हैं कि सारे एक साथ सुनने का मन करता है, लेकिन अभी तो फिलहाल दो ही गाने हम सुन सकते हैं एक साथ। तो चलिए सुन के बताइए आपको कितना पसंद आया ये गाना। इन रिमझिम बरसातों के साथ अपनी धड़कनों को बरकरार रखिए क्योंकि आप सुन रहे हैं शो गुंडा मैस मसाला आरजे बिना वाला अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी ज्ञान सिटी 9.6 एफएम पर। यह गुंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

बारिश उन सभी को याद करती है जिन्होंने बचपन में कभी नाव चलाई होगी बारिश में। बारिश उन सभी को याद करती है जिन्होंने कभी बारिश में भीगना पसंद किया होगा। बारिश उन सभी को याद करती है जब बारिश कभी किसी की ज़रूरत बन के उसके सामने आ गई होगी। पर हम बारिश को याद करना भूल जाते हैं। चलिए बारिश याद करिए तो आपको हिचकियाँ ज़रूर आएंगी।

अगर आपको अपनी आवाज में कुछ सुनाना है बारिश पे या किसी पे भी, तो आप डायल कर सकते हैं 6331 6393 3164 2963 93 34 29 63 93 3164 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34 29 63 93 34

सो वेलकम बैक आप सबकी शाम में वापस से स्वागत करते हुए आज रुबीना आपके पास हैं और करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ अभी कुछ कॉल्स आए पर म्यूज़िकल ब्रेक होने के कारण आप लोगों से हम मुकम्मल नहीं कर पाए बातें, पर क्या करें क्योंकि ज़िंदगी क्या है, एक प्यार का नगमा, तो नगमा बजते हुए प्यार अगर आप लोग के बीच बस जाए तो क्या किया जाए, एक नगमा सुना दिया जाए, और दैट्स व्हाई वी वर लिसनिंग द ब्यूटीफुल नगमा ऑफ द शाम, यानी कि बारिश सॉन्ग। वैसे आप लोग बताइए कि आज अगर बारिश की बात करें तो वैसे तो भी बारिश हमारे यहाँ ऑफिशियली बढ़िया वाली नहीं शुरू हुई है, पर हाँ एक फेस्टिवल की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बारिश को, और ना सिर्फ बड़े ना सिर्फ बूढ़े, बच्चे, एवरी एज ग्रुप इज़ एडिक्टेड टू बारिश, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल आज सांख्यिकी की बात की गई तो इस बार जो स्टैट्स हैं बारिश के थोड़े कम रहेंगे। अल नीनो के बारे में आपने सुना होगा, वैसे अल नीनो का नाम सुना है आपने, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है ना हर जगह से, अल नीनो की वजह से बारिश इस बार कम दिखेगी, अल नीनो, आधों को तो पता नहीं अल नीनो कोई जगह तो नहीं है कहीं, कुछ लोग कह रहे हैं अल नीनो कोई इंसान है, कोई कह रहा है अल नीनो रशिया से गिरा हुआ बॉम्ब है, मतलब इतने सारे मिथ्स सुनने के बाद मेरा मन किया कि आप लोग को बता ही दूँ अल नीनो के बारे में, लेकिन यार एक म्यूज़िक जो बजता है ना ये मेरे दिल को एकदम बढ़ा देता है धड़कनों को, तो मैं सोच रही हूँ ये

रेंज रोवर लेनी है, तो ये तो मतलब हमेशा नहीं पॉसिबल हो सकता है, मे बी पॉसिबल भी हो, लेकिन हाँ वो चीज़ें जो इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम सपोर्ट करेंगे और मोमेंट्स नहीं छोड़े जी, मुझे ऐसा लगता है। तो कौन है भाई कॉल करके सुनाने वाला है कुछ?

लेकिन मैंने अपनी लंबी सी शाम में कुछ मिनट चुरा लिए और मैं भी आप लोग के साथ गा रही हूँ, क्योंकि आप लोग जब गाते हैं तो मेरा भी मन करता है। तो अपने अंदर के बच्चे को या म्यूजिशियन को रोकना नहीं चाहिए। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका भी, और लगातार हमारे लिसनर

मुझे सच्ची बताऊं ये सेकंड स्टेंजा की लास्ट वाली लाइन कभी नहीं याद होती। बहुत बार कोशिश की लेकिन मतलब ये मेरे फेवरेट गानों में से एक है, लेकिन ऑल टाइम फेवरेट, ना सिर्फ मेरा, दुनिया के किसी इंसान से पूछ लो कि आपको ये गाना पसंद है कि नहीं, इंसान यही कहेगा अरे यार ये तो मेरी गुड बुक्स का गाना है, इसको तो मैं हमेशा ऑल टाइम सुनना चाहता हूँ। कुछ गाने ऐसे बने ही एवर ग्रीन टाइम, नए ही लगते हैं।

फिलहाल मेरे गाने का टाइम ख़त्म हो गया, अब आप लोग की बारी है। तो फिलहाल मैं अल नीनो के बारे में बताने वाली थी ना, और मैं भूल गई आप लोग को बताना और गाने लग गई। आप लोग भी सोच रहे होंगे आर्जमीना ना मतलब हमें बीच रस्ते में छोड़ देती हैं और हम लोग अल नीनो के बारे में सोचते रह जाते, और हम भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे अल नीनो आखिर है क्या। अगर आपने विज्ञान थोड़ा मतलब सुना हो, या मतलब सुना क्या, ये मतलब ऐसा चीज़ है ना जिसके बारे में हम सभी बचपन में कभी ना कभी पढ़े होंगे, या नहीं भी पढ़े तो एक सिचुएशन है। दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ आराम से, बिल्कुल घबराइए मत, धैर्य रखिए, दोनों की बातें होंगी। देखिए, अल नीनो या फिर ला नीना, ये प्रशांत महासागर में घटने वाली दो जो हैं विपरीत प्राकृतिक या मौसमी घटनाएं होती हैं। ये मौसमी घटनाएं हैं यार, जैसे साइक्लोन है ये सब है वैसे ही। तो अल नीनो और ला नीना दोनों याद रखिए, अल नीनो ला नीना आसानी से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर में घटने वाली दो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो

0: विपरीत है और जो पूरी दुनिया के तापमान और बारिश को प्रभावित करती है। यस यस, यानी कि पूरी दुनिया में जो बारिश हो रही है, जो टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, इन सबको मतलब अदल बदलने का काम जो है इन्हीं का है। जब प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक होता है तो उसे अल नीनो बोलते हैं। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि प्रशांत महासागर का टेम्परेचर बढ़ा तो अल नीनो, जैसे आपको बुखार आया तो हमने फीवर बोला, और हमारे में अलग अलग बुखार, मलेरिया वाले में भी बुखार आ जाता है, डेंगू में भी बुखार आता है, ठीक है, टाइफाइड में भी बुखार आता है, तो बुखार के अलग अलग टाइप हो गए। तो वैसे ही जब प्रशांत महासागर में टेम्परेचर बढ़ता है, सामान्य से, नॉर्मल से ज्यादा होता है, उसको अल नीनो कहते हैं, और जब तापमान सामान्य से कम हो जाता है उसे ला नीना कहते हैं। कितना आसान था ना, कितना आसान था, मतलब थोड़ा सा मतलब अगर हमें कोई बता देता है ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। पर क्या करें, टीवी में तो हमें चीजें पता चलती हैं, लेकिन हम लोग न्यूज के चक्कर में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है वो सुनते हैं, बाकी जो हमें लगता है कि यार ये तो मतलब कि नहीं, नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं अब आपके मतलब आपके कॉल्स के लिए हूँ यहाँ पे, तो आप लोग का तो बिल्कुल मन लगा होगा कॉल लगाने में। और अभी मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है आज कि जब म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है तभी आप लोग कॉल करें, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रख दें कि हाँ फ्रिक्वेंसी वालों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बातचीत लेट में पहुँचती है। तो जब म्यूजिकल ब्रेक आ जाए तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें 2-3 मिनट का, फिर उसके बाद मैं आपको कॉल ऑन एयर कर दूंगी, थोड़ा और बताती हूँ आप लोग को अल नीनो के बारे में। और इसमें जो है ना मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर जो है उसमें समुद्र की जो सतह है, मतलब ऊपर की लेयर जो है उसका तापमान जो है ना वो ज़्यादा बढ़ हो जाता है, मतलब नीचे का तापमान नहीं, ऊपर की लेयर का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके कारण जो है ना जो हवाएं चलती है, जो ट्रेड विंड्स, जो एक जगह से दूसरी जगह हवाएं जाती हैं जिनकी वजह से बेसिकली वेदरिंग होती है, तो वो जो है ना वो बहुत गर्म पड़ जाती हैं। और गर्म पानी जो है वो दक्षिण अमेरिका से एशिया की ओर जो बहने के बजाय ना उल्टी दिशा में बहने लगता है, तो इस वजह से टेम्परेचर हर जगह बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके एवज में या इसके रिजल्ट के तौर पे बारिश कम होती है जब अल नीनो होता है, मतलब प्रशांत महासागर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बारिश कम होती है। और भारत में अल नीनो के कारण अक्सर मानसून कमज़ोर होता है, यानी कि बारिश कम पड़ती है, और लोगों का मानना है कि सूखा भी पड़ने की संभावना होती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहाँ पे तो बिल्कुल सूखे जैसी स्थिति बन जाती है, हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल रहेगा लेकिन वहाँ तो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। तो ये बात हो गई अल नीनो की। अब ला नीना की बात कर लेते हैं, अब ला नीना समझ लेते हैं ये क्या कहेंगी। ला नीना का अर्थ होता है छोटी बच्ची, इसका मतलब ये एक स्पेनिश वर्ड है, और जैसा कि आपको बता दूं, और इसका भी अल नीनो का मतलब जो है उसका मतलब ये भी एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है छोटा बच्चा या बाल ईसा, ईसा मसीह को जब उनका छोटा रूप है उसको अल नीनो बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे ला नीना का मतलब है छोटी बच्ची, क्या बात है, क्या सोचते हैं लोग, बहुत मस्त नाम रखते हैं, अब तो याद ही रहेगा ज़िंदगी भर आपको। तो ला नीना जो है इसके जस्ट मतलब अल नीनो के जस्ट उल्टी होती है, मतलब इसमें पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और इसके विपरीत जो हवाएँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं जिससे ठंडे पानी का बहाव जो है ना ऊपर की ओर यानी कि अपवेलिंग होता है। और इसका असर मौसम पे क्या पड़ता है, ला नीना की वजह से भारत में अच्छी बारिश होती है, मॉनसून के लिए ये अच्छा माना जाता है, और इसके अलावा इस वजह से अमेरिका में बहुत ठंडी हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग या सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि वहाँ गर्म हवाएं जा रही होती हैं। तो ये चीज़ है, तो चलिए आगे भी बात करेंगे। और अब कॉल आ गया, मैं सोच रही हूँ कॉल को ऑन एयर कर लिया जाए, आप लोगों से बात कर ली जाए। तो पहला कॉल आप लोग के साथ, चलिए सुनते हैं आवाज़। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या।
1: जी गुड इवनिंग, शुभ संध्या।
0: आपका शुभ नाम?
1: त्रिपुरा से अविनाश।
0: त्रिपुरा से अविनाश, अविनाश वेरी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका गोंडा मैसी मसाला में आज बिना के साथ। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, आपके यहाँ बारिश वगैरह हो रही है?
1: जी जी, हमारे यहाँ तो अप्रैल से ही बारिश चल रहा है, और मान लीजिए कि एक दो दिन के बाद बाद मतलब कि हर दिन ही बारिश मान के चलिए होता है।
0: हाँ, लास्ट टाइम भी आपने बताया था, और अब देखिए हम लोग भी इस बार कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं हमारे यहाँ भी बारिश शुरू हो गई है। तो चलिए आज आप क्या सुनाएंगे,
1: आज क्या पसंद करेंगे बोलते बताइए।
0: मैं तो भाई जो जो भी आप लोग अच्छा सा गा देते हैं ना, और अपनी पसंद का गाते हैं तो आप बहुत मन लगा के गाते हैं, तो मैं चाहूंगी आप अपनी फेवरेट कोई भी सिंगर का कोई भी गाना सुनाएं।
1: ठीक है, तो मैं एक गीत सुना दूंगा आपको, लेकिन पूरा गाना सुनाऊंगा।
0: पूरा गाना सुनाएंगे। ओके, मैं ये कहूंगी ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, क्योंकि आपके पीछे 5-6 लोग लाइन लगा के बैठे होंगे। ओके
1: जी, ठीक है,
0: ओके,
1: तो
0: स्टार्ट करें।
1: 3-4 मिनट टाइम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, बस 3 मिनट में खत्म कर दूंगा जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।
1: ठीक है, तो चलिए, पंकज उदास जी की आवाज में एक मैं जो देशभक्ति गीत ही है, और ये गीत जब आया था तो बहुत ही फेमस हुआ था, नाम मूवी का है
0: हाँ,
1: जी, तो चलिए इसका भी इस गीत को सुनाते हैं।
0: स्वागत है।

आई है, आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है।

आई होली पिचकारी से छोटी गोली, बनघट सोना पीपल सोना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद।

लगती है मेवा, तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया।

0: आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है।
1: क्या बात है। और सच्ची में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिल से आपने गाया है। और
0: मुझे खास करके देशभक्ति गीत देखिए बहुत पसंद है। मैं कम से कम 7-8 देशभक्ति गीत मुझे मतलब पूरा मालूम है। और जब भी हमारे इधर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब झंडा फहराते हैं तो मतलब कि हम सब में कॉम्पिटिशन रहता है कि देशभक्ति गीत पूरी पूरी कौन गा सकता है। तो सबसे पहला नाम मेरा ही आता है और मैं ही वहाँ पर गाता हूँ।
1: क्या बात है। देखिए, पेट्रियोटिज्म का मतलब ये नहीं कि हम बॉर्डर पे जाके या फिर किसी तरह का सल्यूट दें या कुछ करें। हर रूप में पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति दिख सकती है और वो आपकी आवाज़ में, वो आपके संगीत से दिखी। थैंक यू सो मच अविनाश जी, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सो अभी त्रिपुरा से अविनाश जी से बात हो रही थी हमारी और बहुत अच्छा सा इन्होंने गाना सुनाया, मज़ा आ गया मुझे। मतलब सच बताऊँ तो ये बहुत ही एक मतलब बढ़िया सी बात है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि अब अगले कॉलर को मौका देने की बात है और देखते कॉल रिसीव नहीं हो रहा, क्या बात है भाई। सो बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं और अगले कॉल को मौका देने का टाइम है, तो चलिए हम ऑन एयर करते हैं अगले कॉलर को। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। सो हमारे कॉलर की आवाज़ तो हम तक नहीं पहुंची, लेकिन आगे चलिए देखते हैं कौन कॉल करता है। बरकरार है इंतज़ार आप लोग के कॉल का और चलिए एक और कॉल आ गया, सुनते हैं आवाज़। हेलो,
2: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार, शुभ संध्या अनिल जी, कैसे हैं? स्वागत है आपकी आवाज़ का, क्या हाल है?
2: पहले तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, एक छोटी सी कोशिश थी क्योंकि वो गाना ही इतना अच्छा है।
2: नहीं, ये भी गाना जो आपने गाया वो राग यमन में है।
1: जी जी,
2: और मैं भी सुनाना चाहता हूँ राग यमन में ही गाने को।
1: क्या बात है, स्वागत है।
2: हेलो
1: हेलो,
2: हाँ आ रही है आवाज?
1: जी जी एकदम आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज़ का स्वागत है। हम भी सुनना चाहेंगे यमन राग का गाना। फिल्मी गाना सुनाएंगे या फिर जी
2: चराग चराग पिक्चर का गाना है, 1969 में आई हुई।
1: जी जी जी जी जी जी,
2: मदन जी का संगीत है।
1: जी
2: चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा।
1: क्या बात है, स्वागत है।
2: तो कोशिश कर रहा हूँ मैं।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ

बहुत अंधेरा कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं वो रंगत गए बहारों के कहाँ से लाऊं।

बरस गई रोशनी नजारों की, मुझे भी पास बुलाओ, बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, कहीं से लाओ

तेरा है सितारो तुमसे अधेरे संभलते होली के नक्शे कदम पे चराग जलते उन्हीं को ढूंढ के लाओ।

0: बहुत धन्यवाद मैम।
1: क्या बात है, और सच में आपने इतना बेहतरीन गाया। और यमन राग, यमन राग की अगर बात करें तो बहुत सारे गाने हैं बॉलीवुड में, खास तौर पे पुराने गाने, अभी तो नहीं बनते हैं इतने, पर
0: बहुत। और मैडम रमन याग जो गाने का टाइम है वो शाम के समय, मतलब यही शाम के समय का है।
1: जी जी बिल्कुल सही बताया आपने, और बहुत शुक्रिया। एक तो आप गाना तो सुनाते ही हैं, साथ में बहुत सारा ज्ञान भी साथ में देते हैं, तो ये जी जानकारी कहीं ना कहीं आपकी गायकी को और बेहतरीन बनाती है, और इंसान सुनते हुए ध्यान से सुनेगा, अरे ये भी बात पता चली हमें।
0: लेकिन लेकिन आपने जो गाया है सुर आपके बहुत पक्के लगे हैं, बहुत बढ़िया गाए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, और
0: जी जी
1: आगे
0: और ऐसे गाते रहिए।
1: दिल से आभार, और कोशिश है छोटी मोटी जो करती रहूंगी हमेशा ही करती रहूंगी। और
0: जी जी बिल्कुल,
1: थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू। आपके यहाँ बारिश हो रही है, आपके यहाँ भी बारिश हो रही है?
0: हाँ भाई, अभी तो शुरुआत हुई है कल रात से।
1: कल रात से हमारे यहाँ तो चार रात हो गई, चार
0: हमारे बीच भी हुआ था रात में, और सुबह तक हुई है, फिर बंद हो गया है, फिर अभी नहीं, उमस बहुत ज्यादा है, बादल तो लगे हैं शायद रात में बारिश।
1: तो हमारे यहाँ फ्राइडे से शुरू हुई है, फ्राइडे थर्सडे से
0: रात में। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम बारिश शुरुआत आप लोगों ने कर दिया, उधर से फिर बादल ढकेल दीजिए।
1: हाँ बस बस हम लोग ढकेल रहे हैं, और डॉक्टर लव का इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए अनिल जी से बात हो गई, और अभी सैटरडे को ही डॉक्टर लव ने कहा था कि वो कुछ लग्गी वगैरह से बादलों को मतलब मोटिवेट करने वाले हैं, और लग रहा है मोटिवेशन बहुत ज़्यादा पिक पे जा रहा है, तो ये मोटिवेशन बरकरार रहे, नज़र ना लगे हमारी। और तेज नारायण शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, शुभ संध्या, कैसे हैं आप? और चलिए आगे ऐसे ही कॉल बरकरार रहेंगे, लेकिन अब एक गाना सुन लेते हैं, थोड़ा सा नया वाला सुन लेते हैं गाना आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वायरल गाना, जिसको मुझे लगता है कि हम सभी ने बहुत बार सुन भी लिया होगा और सोचा होगा कि ये गाना क्या सोच के बनाया गया, और 90s में क्या ये गाना मतलब एज अ मतलब मैं अगर सिंपली सोचूं कि क्या उस समय मस्कारा लगाते थे लोग कि नहीं लगाते थे। फिलहाल अगला कॉल जो है उनको ऑन एयर करते हैं। हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
1: वेरी गुड इवनिंग, योर गुड नेम?
2: श्रद्धा तिवारी।
1: श्रद्धा क्या बात है, कैसी हैं, कहाँ हैं आजकल, तो बड़ी गायब दिखती हैं, लास्ट मंडे आपकी आवाज सुनने को नहीं मिली मुझे। फाइनली कहते ना जहाँ चाह वहाँ रहा, और इसी के साथ आपकी चाह ने राह दिखा दी और आपका कॉल ऑन एयर आ गया। तो वैसे क्या सुनाने वाली हैं श्रद्धा? लिसनर्स को बता दूँ कि हमारी श्रद्धा बहुत ही प्यारी लिसनर है, जो कि अक्सर बहुत कुछ खुद लिख के और कंपोज करके गाती हैं, तो ये आपकी विशेषता है। तो चलिए सुनते हैं श्रद्धा की आवाज़ में कुछ खास।
2: मैम आज की गाना लिखा है, वही आपको सुनाना चाहते हैं।
1: क्या बात है, खुद लिखना खुद कंपोज करना बहुत बड़ी बात है, मेरे बस का तो नहीं। तो चलिए सुनते हैं श्रद्धा की आवाज में ये प्यारा सा गाना, स्वागत है।
2: ओके मैम। दुनिया हंसा जो सकती नहीं, रुलाना नहीं चाहिए, दुनिया हंसा जो सकती नहीं, रुलाना नहीं चाहिए, वादा खुद से करो या खुदा से, वादा खुद से करो या खुदा से, निभा

करके दीना हर किसी को आता नहीं, हंस हंस कर गम पीना हर किसी को आता नहीं।

0: थैंक यू मैम।
1: क्या बात है श्रद्धा, और गजब तो आपके लिरिक्स से गाने की, मतलब इतना अच्छा आपने लिखा। और दूसरी खास चीज़ कि कंपोज भी आपने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा कंपोजिशन, माय गॉड, मतलब गूज बम्स सभी मुझे फील हो रहे हैं। बहुत अच्छा गाया आपने। एंड लिसनर्स, एक छोटी सी बच्ची जो कि मतलब खुद ही गाने लिखती है, खुद ही उनको म्यूज़िक देती है, खुद ही कंपोज करती है, कितनी अलग बात है ना। मतलब इसके लिए हम लोग खुश नसीब है कि श्रद्धा हमारे पास की, हमारे गोंडा शहर के आसपास ही रहने वाली बच्ची है और बहुत अच्छा गाती है। क्या बात है श्रद्धा, आज कैसा लग रहा है गाने के बाद? तो ये गाना क्या सोच के आपने लिखा?
0: कि हम दुनिया को देख के, कभी खुद को देख के, कभी दुनिया के लोगों को देख कर खुद को खुद जब आ जाता है गाना।
1: क्या बात है, इमोशंस,
0: गाना
1: लिखते हैं तो मतलब
0: कुछ फीलिंग होती है।
1: क्या बात है, वो तो दिख रहा है कि फीलिंग इतनी ज्यादा है कि हर मंडे को एक फीलिंग से जुड़ा गाना मिल जाता है। और बहुत अच्छी, मतलब कोशिश बहुत अच्छी है और सच्ची गॉड ब्लेस यू, टचवुड नजर ना लगे। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू। तो चलिए, श्रद्धा ने बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही दिल से गाना गाया और इसके लिए बहुत सारा प्यार श्रद्धा को मिल भी रहा है, चैटरूम में भी दिख रहा है, और मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार। और चलिए, हम लोग मस्कारा पे थे तो चलिए मस्कारा लगा लेते हैं। मैं लड़कियां, वैसे मैं बताऊं आजकल लड़के भी मस्कारा लगाते हैं, हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा शादी वादी में लड़कों के, मतलब जो वो उनका ब्यूटीशियन रहता है उनको, उसको मस्कारा लगा देता है भाई। मतलब लड़कियां तो लगाती थी, लड़के भी लगाने लगे हैं। तो फिलहाल ये गाना दोनों के लिए, चलिए सुनते हैं, लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 98 38 288 386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
6: सो वापस से आप सभी का स्वागत है आज बीना वाले शो यानी कि गोंडा मसाला में। मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड आपकी दोस्त और ऑफ कोर्स आपकी इवनिंग चाय पार्टनर मौजूद हूँ आपके फेवरेट फ्रिक्वेंसी को लाइव लेकर। ज्ञान 89.6 FM ही है गोंडा शहर की धड़कन। तो धड़कनें तो आज सुरीली भी हैं, एंटरटेनिंग भी है, बहुत कुछ सिखाने वाली, मज़ा आ गया भाई। और आज देखिए यमन राग की बात भी हुई और देखिए अनिल जी ने गाना भी बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। और यमन राग से मुझे याद है, मैंने सोचा क्यों ना मैं और भी बहुत सारे गाने जो आप लोग को बता दूँ, जिससे आप लोग को भी याद रहेगा कि मतलब यमन राग से जो म्यूज़िक से जुड़ा होगा बेसिकली उसको थोड़ा सा पता होगा। इसको कल्याण थाट भी बोलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय राग है, क्योंकि इसमें जो कहते हैं ना कि सबसे मधुर और ख़ास तौर पे कोमल स्वर बहुत लगे हैं। और ख़ास चीज़ ये है ना कि मतलब जिसमें सदाबहार गाने गाए जाएँ तो वो राग हमेशा से बेहतरीन हो जाता है, सबका फेवरेट फेवरेट वाला हो जाता है। तो अभी जैसे कहते हैं ना, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा प्यारा सा गाना था और मुझे और आपको हमारे मतलब मेमोरीज को जोड़ने का काम करता है। चलिए देखते कॉल आ गया है, किसका है। हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज़ ना आने के कारण देखिए आवाज़ आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई। और मैं बात कर रही थी गाने की, तो एक गाना बड़ा प्यारा सा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। गाना था ये, एहसान तेरा हो गा मुझ पर, ये पुराना गाना है और ये भी यमन राग में है। और अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, ये तो हमारा वाला फेवरेट वाला गाना है। और ये वाला जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, ये वाला गाना आपने सुना होगा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। हेलो हेलो हेलो। तो आपने सुना गाना, मतलब मैं बता रही थी ना, जब दीप जले आना, बड़ा प्यारा सा गाना है, ये भी बहुत सुंदर गाना है। और चलिए देखते हैं आवाज़ जा रही है हमारी कि नहीं। हेलो हेलो हेलो हेलो। भाई ये नेटवर्क को क्या हो जा रहा है, वापस से मैं चाहूँगी हमारे जो लिसनर जो कॉल कर रहे हैं फिर से कॉल करें, क्योंकि नेटवर्क का इशू है। तो एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, आपको पता है ये वाला गाना भी इसी में है, मतलब ये शास्त्रीय और पारंपरिक संगीत से जुड़ा, ये ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हेलो
7: हेलो
6: हेलो, शुभ संध्या।
7: आवाज़ नहीं आ रही है।
6: हेलो
7: हेलो
6: हेलो, उधर से आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं जा रही। हेलो
7: हेलो बीना जी, नमस्कार।
6: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
7: मैं सविता बोल रही हूँ गोरखपुर से।
6: सविता जी कैसी हैं आप?
7: क्या मतलब, हम तो बहुत
6: हुजूर देर कर दी आपने बहुत आते आते।
7: क्यों?
6: क्योंकि आपका कॉल मुझे लग रहा है तब से आ रहा है और आपकी आवाज नहीं आ रही।
7: हाँ, वो कुछ नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ से, कोई प्रॉब्लम होगी।
6: तो चलिए हम सुनना चाहेंगे, आज आप क्या सुनाएंगे?
7: पहले तो मैं आपकी तारीफ कर दूँ थोड़ा, कि आपने बहुत अच्छे गाने से शुरुआत की, और अच्छा लगता है जब कार्यक्रम की शुरुआत अच्छे मधुर संगीत से होती है, तो आप इसी तरह गाया करिए।
6: थैंक यू।
7: ताकि जितने सुनने वाले श्रोता है वो एनर्जी में आ जाए।
6: क्या बात है, चलिए मुझे लगता है कि मैं एनर्जी ऐसे बांटूं तो फिर मुझे लगता है कि तब तो मेरे सारे लिसनर्स के अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो मैं शुरुआत अब गाने से ही करूंगी रोज।
7: नहीं, अच्छा लगता है जब शुरुआत गाने से होती है तो।
6: क्या बात है, फिलहाल आज आप क्या सुनाएंगे?
7: आज मैं भी एक पुराना है लेकिन अच्छा गाना, वो साथी फिल्म का पुराने वाले वैजयंती माला वाले गाना है, मेरे जीवन साथी।
6: एक चीज कहना चाहूंगी सविता जी, जैसा आपने कहा कि पुराना गाना लेकिन अच्छा, इसमें लेकिन लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पुराने सारे ही गाने
7: अच्छे। कोई कोई पुराने गाने जो है नए जो सुनने वाले सोता है वो बोर हो जाते हैं ना, बोरिंग हो जाते हैं।
6: हाँ ये बात है, लेकिन तो, मैं ये कहूंगी कि पुराने गानों का, कुछ गानों का कंपोजिशन तो इतना बेहतरीन है कि अभी भी हम करना चाहे तो मतलब नहीं होता।
7: नहीं, जो संगीत प्रेमी होते हैं उनके लिए तो चाहे पुराना हो चाहे नए हो, नए में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं और पुराना भी बहुत अच्छा लगता है।
6: हाँ, नए गानों में भी मैं अगर कहूँ तो मैं एक दिन ऐसी ऐसी प्लेलिस्ट बजाऊंगी आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये गाना 2026 का है।
7: नहीं, बहुत अच्छा है, मैं भी सुनती हूँ कोई कोई गाने को, तो बहुत अच्छे बने हैं नए नए फिल्मों के भी।
6: ठीक है,
7: फिलहाल मैं ये गाना आपको सुनाती हूँ,
6: स्वागत है
7: ना, शुरू करें
6: जी। बिल्कुल स्वागत है।

0: क्या बात है। और सुरीला गाने के साथ साथ आप लोग को गाने ये इतने डिफिकल्ट याद कैसे हो जाते हैं?
1: जो अच्छे गाने होते हैं ना, उनका संगीत अपने मन को भा जाता है, तो एक ही बार सुनने से याद हो जाता है।
0: क्या बात है। और लग रहा है कि मतलब ये गाना आपने एकदम दिल से गाया और जैसे महसूस करके गाया है। क्या बात है। थैंक यू सो मच सविता जी, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ऐसे यूनिक गाने सुनने के लिए तो आपको 6 बजे लाइव होना ही पड़ेगा मंडे को, क्योंकि मैं नहीं आप लोग आते हैं और शाम को इतना ज़्यादा हाइप करते हैं, इतना सुंदर गाते हैं, एंड यस मज़ा आ जाता है। सच्ची बताती हूँ, इतना सुरीला। और सबसे खास बात ये ना कि यूनिक कलेक्शन वो हमारी और आपकी प्लेलिस्ट में नहीं होगा जो हम एक दूसरे से सुन के, मतलब कहते हैं ना कि बचपन में हमने सुना होगा कि टीचर्स कहते थे ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ाई करो। तो ग्रुप डिस्कशन करने से क्यों मतलब मोटिवेट करते थे, क्योंकि नए नए आइडियाज़ एक साथ निकलते थे भाई। किसी ने कुछ आइडिया दिया, वो सारे आइडिया मिलके एक बड़ा आइडिया बन गया। वैसे ही हमारी म्यूजिकल इवनिंग होती है मंडे को, जिस दिन आप सबका मतलब थोड़ा थोड़ा थोड़ा योगदान, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप गाना ही सुनाएं, आप कविता भी सुना सकते हैं, आप अपनी कोई भी क्रिएशन, आपके पास कोई छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है जो 2 से 3 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, आप वो भी सुना सकते हैं। तो चलिए हम अगले एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक को मैं स्टार्ट करती हूँ। बड़ा प्यारा सा गाना है और मतलब थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि ये सूफी टाइप का गाना है, सुन के बताइए। मैं जैसा कि आपको बताती हूँ कि हर मंडे मैं गानों का कलेक्शन भी ऐसे लेके आती हूँ जो हर तरह के म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आप लोग के साथ, और सुन के बताइए कैसा लगा आपको।

खास बताऊं आप लोग को इसके बारे में कि ये जो गाना है ये एज अ कवाली भी गाया जाता है और एज अ सूफी सॉन्ग भी गाया जाता है, और एक बहुत बड़े पोएट जिसका नाम था बाबा बुल्ले शाह, उनकी लिखी हुई क्रिएशन है। तो मैंने सोचा कुछ यूनिक सुनाना चाहिए, तो इसको सुन के बताइए कैसा लगा।

सो ऐसे बहुत सारी क्रिएशंस हैं जिनको सुनने के बाद हम लोग को लगता है ना कि हमारी मतलब म्यूजिक की जो कहते हैं ना जर्नी, वो आज से नहीं चल रही, दशकों से चल रही है, और ऐसी चल रही है ना कि जिसको सुन के हमारी जो इवनिंग नहीं, हमारी सुबह शाम हर टाइप के गाने हर टाइम के लिए बने हुए हैं। तो इस गाने को सुन के, इस क्लासिकल वाइब को सुन के आपके मन में आ रहा होगा यार कितने मज़ेदार गाने बन रहे हैं। और देखिए अब टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा नहीं हमारे पास, लेकिन एक और बेहतरीन क्रिएशन या कह सकते हैं कलेक्शन आपको सुनाना चाहूँगी, हमारे ही बॉलीवुड का ये, तो इसको सुन के आप लोग बताइएगा। लेकिन देखिए कॉल आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि कॉल सारे कनेक्ट कर लूँ, और कॉल डिसकनेक्ट हो गया, तो चलिए अभी ये कॉल लेने से पहले आप लोग के साथ ये गाना सुनते हैं।

0: फिलहाल ये गाना सुनने के बाद अब बारी अगले कॉल को ऑन एयर करने की। चलिए सुनते हैं आवाज किसके। हेलो हेलो,
1: शुभ संध्या मैम।
0: शुभ संध्या, आप सुन रहे हैं शो गोंडा वैसे मसाला। आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम तेज नारायण शुक्ल है।
0: तेज नारायण जी, फैजाबाद से।
1: जी जी जी जी, वैसे बेसिकली मैं रहने वाला गोरखपुर का ही हूँ, लेकिन
0: है?
1: इस समय यहाँ हूँ। तो
0: स्वागत है।
1: ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रोग्राम खत्म, मतलब ये टाइम एंडिंग का मतलब है?
0: नहीं,
1: ये लास्ट समय है, कुछ समय है या
0: 15 मिनट? मतलब अभी हमारे पास पूरे 15 मिनट है।
1: हेलो
0: हेलो जी, हाँ तेज नारायण जी, अभी हमारे पास पूरे 15 मिनट है। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो
1: जी जी जी जी,
0: हाँ अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास समय है।
1: आवाज आ रही?
0: आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है।
1: अच्छा अच्छा, जी जी जी जी जी जी, तो लास्ट है एकदम, तो बस कुछ एक शेर सुना के एक अपनी कविता सुनाऊंगा, उसके बाद अगर आप कुछ कहेंगी तो।

0: सीखने की दुनिया एक मेला है।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या सिचुएशन आपने मतलब बयां की है प्रेजेंट टाइम की, क्या बात है। आपकी शायरी बेहतरीन है, आपकी लेखनी बेहतरीन है, और हर बार अपनी कविता से, अपनी लेखनी से आप हमें विस्मय करते हैं। मतलब मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, अब एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ आपको।
1: स्वागत है, स्वागत। मतलब
0: अगर अपनी दुनिया लगती कभी कुछ पहचानी सी, कभी कुछ अनजानी सी। सब कुछ होता है पर कहीं कुछ रह जाता है, सब कुछ होता है पर कहीं कुछ रह जाता है। और जिंदगी तब होती कुछ बेगानी सी, कुछ दीवानी सी। आज हुआ वो कल लगता है सपने जैसा, आज हुआ वो कल लगता है सपने जैसा। पल भर में सब हो जाता है जाने कैसा, पल भर में अपने भी सपने हो जाते हैं। सब कुछ हो जाता है कुछ अनजाना सा, कुछ बेगाना सा। तब जीवन के अर्थ कहीं पर खो जाते हैं, मन के सारे स्वप्न वहीं पर सो जाते हैं। जी धन्यवाद।
1: ये क्या बात है, क्या बात है। और मैं चाहूंगी दो पंक्तियाँ अपने फेवरेट गाने की भी आप सुनाएं, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि जब भी आप कविता सुनाते हैं तो एक छोटा सा नगमा आप जरूर सुनाते हैं।
0: जी असल में वो डायरी नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक मतलब अंतरा है, वो सुना देता हूँ। शराबी फिल्म का है, किशोर कुमार का गाया।
1: क्या बात है, स्वागत है।
0: और याद नहीं है, मैं ऐसे ही सुना रहा हूँ क्योंकि लिखा रहता है डायरी में, तो वो फिर सामने रहता है।
1: जी।
0: वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: जी जी, स्वागत है।
0: नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, न सरे शाम पैमानो में होती हलचल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा, किली किली हुई बूंदों पे सबनम का नशा, हवा पे खुशबू और बादल पे हरिम झिम का नशा। कहीं शुरूर है खुशियों का, कहीं गम का नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। तारी असल में ये लिखा हुआ है और मुझे फिर अब याद भी नहीं आ रहा है, मैंने अपने मन से थोड़ा जो याद था वो आपके कहने पर सुना दिया है।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मजा आया सुन के, खास तौर पे आपकी कविता और आपकी वो दो पंक्तियां जिससे आपने शुरुआत की। क्या बात है,
0: जी जी जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, तेज नारायण जी की आवाज में हमने सुना ये प्यारा सा, मतलब कहते हैं ना कि एक नगमा और साथ में एक कविता भी। बहुत अच्छा लिखते हैं और इनकी लेखनी के हम सभी दीवाने भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जैसा कि टाइम ओवर होने वाला होता है तो सबके कॉल्स ज़्यादा आते हैं, तो सुनते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो,
2: नमस्कार रीना
1: मैम। नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं रईस जी, क्या हाल है?
2: मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: हाँ बिल्कुल, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और क्या सुनाना चाहते हैं आज आप, क्योंकि समय बहुत, आप लास्ट में कॉल करते हैं, आप सोचते हैं कि एकदम लास्ट में मैं कॉल करूँगा।
2: नहीं नहीं, बस इसके बाद की देर करता नहीं, मैं देर हो जाती है।
1: तो चलिए कौन सा गाना सुनाएंगे? स्वागत।
3: आज मौसम बेईमान है बड़ा, बेईमान है आज मौसम, काली काली घटा डर रही है, ठंडियां है हवा भर रही।

0: सबको क्या क्या घुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है। आज मौसम बेईमान है बड़ा, बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले। तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम बेईमान है बड़ा। बस मैडम मेरा इतना सुना था।
1: क्या बात है। और देखिए आपकी भावनाओं को समझते हुए मौसम धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका है, क्योंकि गर्मी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। थैंक यू सो मच रईस जी, बहुत अच्छा गाना सुनाया आपने और बहुत अच्छा अंदाज था, और कम समय को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छे और बहुत जल्दी से सुना दिया। और मुझे लगता है कि रईस जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, अगले कॉलर का ऑन एयर हो गया। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, आदाब प्रणाम, आपका शुभ नाम।
2: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरुकुली से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
1: गोल्डी
2: जी, जी जी।
1: गुड इवनिंग गोल्डी जी। और शिमला से आप बात कर रहे हैं?
2: कांगड़ा से
1: बात कर रहे हैं। ओके, क्या बात है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका, इतनी दूर से कॉल आया है। तो गोल्डी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है?
2: जी जी जी जी।
1: तो आपको कैसे पता चला कि ये फ्रिक्वेंसी ज्ञान 39.6 FM आप सुनते हैं? मतलब आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली इसके बारे में? ऐसे ही
2: एक हमारे दोस्त हैं शिमला से, केश कुमार जी, उन्होंने बताया। और हमारे दोस्त है अविनाश जी त्रिपुरा से, वो अभी सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम।
1: क्या बात है, चलिए क्या बात है, बहुत अच्छा कनेक्शन है आप लोग का। और पूरे इंडिया को मतलब हम लोग कवर कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, बड़ी खुशी की बात है। तो क्या सुनाएंगे आप? हेलो
2: जी मैम।
1: हाँ गोल्डी जी, तो क्या सुनाएंगे आप?
2: मैं सुनाता हूँ मैम गाना।
1: स्वागत है।
2: नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहसी तुझे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार? नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। बस आखरी सुन ले ये मेल है अपना, बस आखरी सुन ले ये मेल है अपना, बस खात्म है साथी ये खेल है अपना। अब याद तेरी में बीत जाएंगे रो रो के, जी बन के दिन चार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
1: क्या बात है गोल्डी जी, और बहुत अच्छा आपका एक्सेंट, बहुत अच्छा गाया। और बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ से पता ही नहीं चला कि आप में मतलब थोड़ा सा पहाड़ीपन भी हो सकता है, लेकिन आपका एक्सेंट बहुत बेहतरीन है। ऐसा लगता है कि आप प्लेबैक सिंगर हो, या मतलब क्या बात है, बहुत खूब मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच गोल्डी जी, थैंक यू सो मच। सो आज तो बहुत दूर दूर से लोगों से बात हो रही है और मज़ा आ रहा है, मतलब पूरे इंडिया का टूर हो रहा है। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं, कौन है हमारे साथ? हेलो।
3: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, आदाब प्रणाम, आपका शुभ नाम।
3: मेरा नाम राकेश है।
1: राकेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग।
3: शिमला से।
1: शिमला से, ओके। राकेश जी, आपके बारे में भी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो आज क्या सुनाएंगे? बहुत लेट में, बहुत मतलब कह सकते हैं कि प्रोग्राम ओवर होने को है और आपने कॉल कर दिया है, चलिए क्या सुनाएंगे?
3: जी जी जी जी, तो बहुत अच्छा है, तो पहले मैं गाना याद कर रहा था कि मैं कौन सा सुनाऊं, फिर मेरे को आखिरकार गाना याद आ गया तो मैं सोचा कॉल लग जाए, तो फिर लग गया कॉल।
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आपकी जो कहते हैं ना मेहनत रंग लाई, बहुत बार आपने कॉल किया होगा, तो चलिए सुनाइए क्या सुनाने वाले हैं।

0: जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे। बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा फूल बागों में मिला कहीं ना, ऐसा फूल बागों में मिला कहीं ना, जिसे दर्द कांटों को मिला कहीं ना। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, ओ अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
1: थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत अच्छा आपने गाया और बहुत कम समय था हमारे पास, लेकिन आपने उस कम समय को यूटिलाइज किया अपनी आवाज से, और बहुत अच्छा गाना। और आप लोग गाना बहुत जल्दी याद करते हैं, ये तो आप लोग इतने मतलब कॉन्फिडेंस से सुनाते लगता है, मुझे तो इतनी जल्दी गाने याद ही नहीं होते। तो एक दिन आप लोगों से टिप्स ली जाएगी, लेकिन आपने शाम में चार चांद लगा दिए, थैंक यू सो मच, और शिमला की ठंड को एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस,
0: धन्यवाद।
1: सो फिलहाल हम लोग अनलक्की हैं कि हमारे यहाँ फिलहाल क्यों अनलक्की, हमारे यहाँ तो हर मौसम होता है, कुछ जगह तो ऐसी हैं जो मतलब जहाँ पे एक ही मौसम रहता है, तो फिलहाल हमारे रेडियो स्टेशन पे भी मौसम रंगीन है, कहीं ठंड तो कहीं गर्मी, कहीं हवाएं तेज हैं। ऐसे ही हवाओं के साथ हम लोग बहा करेंगे, क्योंकि हम हैं रेडियो ज्ञान 39.6 FM वाले, हमारी फ्रिक्वेंसी आप सभी को शहर टू शहर ले जाएगी, क्योंकि यह है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड, और आगे आप सुनेंगे कुछ ही देर में अपने पसंद के गाने। और आज बहुत सारे लोगों का कॉल आया, मैं बताऊं जितने कॉल आए उतने ही कॉल मैं ले भी नहीं पाई, जितने लोगों से बात हुई और उतने ही कॉल मैं नहीं दे पाई, क्योंकि पैरेलल कॉल आ रहे थे, एक कॉल चल रहा है दूसरा कॉल आ रहा है, एक कॉल चल रहा है दूसरा कॉल आ रहा है। तो मैं हमेशा से आप लोग को एक मैसेज देती हूँ, मंडे को स्पेशली देती हूँ, कि आप लोग 6 PM पे शार्प आ जाया करिए, जिससे कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा टाइम मिला और अपने हिसाब से आप लोग जो सुनाना चाहते हैं दिल से सुना सके। एंड सच्ची में जिन्होंने भी आज कॉल किया, जिनका कॉल लगा, बहुत ही बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपकी आवाज़ ऑन एयर आई। और देखिए मतलब बहुत सारे लोग एट अ टाइम, थाउजेंड ऑफ पीपल आपको सुन रहे हैं, कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि अगर एप्लीकेशन की बात करूँ, एप्लीकेशन पे तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो हमारे आसपास एक रेडियस में है, पर एप्लीकेशन से देश दुनिया से लोग सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि सब कॉल एक साथ ही करते हैं, तो इसलिए कई बार कॉल नहीं लगता, इसलिए परेशान ना हो। हर मंडे हम लोग मिलते हैं, तो इसके लिए ये नहीं कि इस मंडे नहीं मिले, तो नेक्स्ट मंडे ज़रूर मिलेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसीलिए आज बिना आपसे मिलने को कभी भी मना नहीं करती। तो ऑन एयर हम फिर मिलेंगे अगले मंडे को, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 39.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, आपको सुरीला कुछ एंटरटेनिंग और मजेदार सुन रहे थे, तो डेफिनेटली आर जे बीना के साथ शो गोंडा मैसिंग मसाला आर जे बीना वाला सुन रहे थे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपकी, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो क्या हाल चाल है एवरीवन। बहुत दिनों बाद नहीं मिले हैं, लेकिन एक दिन बाद तो जरूर मिले हैं। एक दिन में तो बहुत कुछ बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं, आप बदल जाते हैं, सब बदल जाता है। क्यों? सही कहा ना मैंने? तो गपशप को ऐसे ही रखिएगा बरकरार। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मिस्टर ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी, अनिल वर्मा सैदापुर से, मुस्तफा जी साउदी से, दीपक हथियागढ़ गोंडा से, नीना वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, और अनिल वर्मा जी का सैदापुर से कहना है कि आसमान की आंखों से आज बेहिसाब आंसू बहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से। आसमान की आंखों से आज बेहिसाब आंसू बहे हैं, लगता है उसे भी किसी से मोहब्बत हुई है। हाँ जी साहब, सो आपको भी लगता है किसी से मोहब्बत हुई है। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निब्बर रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, राजू सलमानी जी आवाज विकास गोंडा से, नागेश्वर धाकर इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, और आप सभी का चांदनी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, सबिहा निशा एवरीवन वेलकम इन योर शो, स्टे ट्यून्ड। और बिना किसी देरी के पटापट से एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। ओह माय गॉड, हमारे पास में पहली फरमाइश है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना ये दिल आशिकाना। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानुअल का याग्निक की आवाज में 90s का सुपर डुपर हिट रोमांटिक एंड वाव वाव वाला आई मीन लव डब वाला सॉन्ग मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। और ऐसे ही अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए दोस्तों सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आशिकाना कुमार सानोवाल का याग्निक की आवाज में ये रोमांटिक रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग हमने एंजॉय किया है अजय मिश्रा की फरमाइश पर, जो की है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। उदालक शर्मा मनकापुर से और इट्स कुमार एमपी रीवा से। एंजॉय करते हैं अब अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना थम के बरस। अलका याग्निक की आवाज में इंजॉय करते हैं ये बारिश वाला नगमा, मानसून वाला नगमा, आहा टिप टिप बरसा पानी वाला नगमा, ठंडी ठंडी हवा लाने वाला नगमा। अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया है थम के बरस। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़। इनका कहना है कि टूटा हुआ आईना किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या, और तुम सुन रहे हो मेरी शायरी इतनी गौर से, क्या तुम्हारा भी दिल किसी ने तोड़ा है क्या। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग नागेश्वर धाकड़। और इनका कहना है कि सुना है कि बिजली चमकती है तो रोशनी होती है, और मैंने भी सुना है कि दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है गाना चप्पा चप्पा। सो माचिस मूवी का ये नगमा एंजॉय करते हैं मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। एनुदालक शर्मा जी, आप अपने गाने को चेंज कर सकते हैं।

प्यारा सा गाना हमने एंजॉय किया है और माचिस मूवी मैंने अभी तक देखी नहीं है। इस गाने को सुनने के बाद में मेरा मन हो रहा है कि आज ही जाके अपने भाई से कहूंगी कि भाई मैंने इस मूवी का गाना सुना है आज फरमाइशी में, बहुत ही बढ़िया गाना था और गाने को सुन के ऐसा लग रहा था पिक्चर भी बढ़िया होगी, बहुत सारे हीरो थे, चलो ना आज बॉली मूवी देखते हैं। फिर वो डाउनलोड करेगा और फिर हम रात में आराम से पिक्चर देखेंगे। काश ऐसा हो, वो इंटरेस्टेड हो मेरी बातों में और वो मूवी को डाउनलोड कर ले। सो आप लोग भी मेरी तरफ से थोड़ा थोड़ा भगवान जी से कह देना कि रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट हो ही जाए ना। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपक जी की हत्या गड़गोंडा से, उनको सुनना है गाना पास वो आने लगे जरा जरा आ। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पिक्चर का। स्टे ट्यून्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर शक्ति कपूर का डुप्लीकेट वाला कुछ ऐसा एनर्जी एनर्जी आने लगा है। वो आऊं आऊं या पता नहीं क्या क्या करते हैं और मैं आहा आहा करने लगी हूँ। मुझे इस आदत को बदलना चाहिए ना दोस्तों। वेरी बैड। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया है कुमार सानोल का यागी की आवाज में ये 90s का नगमा मैं खिलाड़ी तू अनारी पिक्चर का। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश हमारे पास में थी दोस्तों दीपक जी की हदिया गड़गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है नीना की, और नीना को सुनना है गाना दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी बात ना मिर्च मसाला। ओ माय गॉड, यही लाइन मुझे याद है। इसका मतलब ये है कि यही लाइन मुझे इस गाने में अपने ऊपर एकदम मैच करती हुई दिखी होगी, इसीलिए मुझे यही लाइन याद है। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारी नीना की फरमाइश पर। एंड थैंक यू सो मच, मैं इस गाने को भूल चुकी थी, फिर से याद दिलाने के लिए। ओह माय गॉड, स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आसिफ खान मुंबई से, अरमान पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से आपका भी स्वागत है, और निजाम गोंडा से आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

बहुत अच्छा लगा ये गाना, एक एक शब्द में ध्यान से सुन रही थी कि कहीं कुछ मिस आउट ना हो जाए। हमने एंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो अतरंगी सी और बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश थी नीना की। अगली फरमाइश हमारे पास में फिर से खूबसूरत से नगमे की, और अगली फरमाइश है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। इनको सुनना है गाना छतरी ना खोल बरसात में और भीग जाने दे आधी रात में। गोपी किशन का ये गाना कुमार सानू पूर्णिमा जी की आवाज में हम इंजॉय करेंगे। ये बरसात बरसात बरसात वाला नगमा है दोस्तों सुरेंद्र जी की तरफ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। कितने बढ़िया बढ़िया गाने बज रहे हैं ना आज, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। वाह, ऐसी प्लेलिस्ट रहती है तभी तो मजा आता है ना दोस्तों। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।

बार बरसात में कुमार सानू पूर्णिमा जी की आवाज में एंजॉय किया है हमने ये वाला नगमा। बढ़ते अगली फरमाइश की तरफ। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मोहम्मद मुशीफ जी बाराबंकी से। और अगली फरमाइश हमारे पास में है निजाम की गोंडा से। इनको सुनना है गाना तुझे इतना प्यार करें। सो एंजॉय करते हैं निजाम की फरमाइश पर कुदरत का कानून मूवी का ये गाना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और हमारे लिसनर्स का कहना है, चैट बॉक्स में बातें हो रही है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा लगता है कि इश्क प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए ऐसा स्पेसिफिकली बन गया है। सो अरे वाह, ये एक इश्क प्यार मोहब्बत ही तो है जिसके लिए हम लोग 24 घंटे चलते रहते हैं अपनों को खुश करने के लिए, है ना। अपने दिमाग को कुछ चले चाहे ना चले, अपने दिमाग को चलाते रहते हैं अपनों को खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। तो अगर इश्क प्यार मोहब्बत की बातें इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच।

प्यार करें। लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज में कुदरत का कानून पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है। निजाम की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है लवली सिंह की। लवली सिंह को सुनना है गाना प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। सो एंजॉय करते हैं जीवन मृत्यु मूवी का ये गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में और लता जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ हमारे लवली सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एंजॉय किया है ये गाना, किसकी फरमाइश पर? लवली सिंह की फरमाइश पर। और बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, दोस्तों बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमारा फरमाइश ही का महफिल सच में झिलमिल सितारों का आंगन है और रिमझिम बरसता यहाँ हमेशा हर मौसम में सावन है। क्यों? चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है अरमान की, पटेल नगर गोंडा से। अरमान को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना, दिल चाहते हो या जान चाहते हो। सो एंजॉय करते हैं अरमान की फरमाइश पर ये वाला गाना। हम ना दिल चाहते हैं ना जान चाहते हैं, बस दिल में थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा प्यार और

हमने एंजॉय किया है ये गाना अरमान की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की मनकापुर से। उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए और तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, सो मुझसे शादी करोगी मूवी का ये गाना एंजॉय करते हैं अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ में उदालक शर्मा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सुपेट पूजा करके आइएगा सभी लोग, मिलते हैं सीधे 9 बजे और सिर्फ करेंगे एंटरटेनमेंट और सुकून की बौछार। और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। तमसों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: Applications launch is going to play a very important role.
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
3: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
5: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
6: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
5: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर

0: वाहनों विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8000 करोड़ रुपए की लागत से 30000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने AIR.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

So, एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, हमारी अधूरी कहानी। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अरिजीत सिंह की आवाज़ में, ये बहुत ही प्यारा सा सोलफुल दर्द भरा बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन क्या आप सभी ने पेट पूजा किया? अगर नहीं कर रखा था तो इस गाने ने तो पूरा का पूरा मूड चेंज कर दिया मेरा। और फाइनली नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। एंड ओ माय गॉड दोस्तों, हमारे पास में जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में हिट्स कुमार की एमपी रीवा से, और हिट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होंठों को करके गोल, और होंठों को करके गोल सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। सो एंजॉय करते हैं ये 3 इडियट्स का मोटिवेशनल एंड सुपर डुपर हिट नगमा हमारे हिट्स कुमार की फरमाइश पर, जो कि एमपी रीवा से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया ऑल इज वेल। थ्री इडियट्स का गाना इट्स कुमार की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना अपने आशिक को पहचानो। एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा जिगर वाला मूवी का।

0: मानो मानो मानो अपने आशिक को पहचानो भूल बानो अपने आशिक को पहचानो भूल बानो
1: आशिक को पहचानो फूल बानो हम एंजॉय किया है ये नगमा मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। सपने आशिक को जब इंसान पहचान जाता है ना और कभी कभी बहुत कायदे से पहचान जाता है तो फिर फूल बानो का फूल मती बन जाती हैं भैया पता ही नहीं चलता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की और चांदनी को सुनना है गाना भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। सो एंजॉय करते हैं चांदनी की फरमाइश पे ये वाला गाना। वो जब प्यार वो जब फोन करती है ना चांदनी तो बोलेंगी और मैम कैसी हैं आप, इतने प्यार से पूछती हैं ऐसा मन होता है कि सब बता दूं कैसी हूँ। लेकिन फिर जो असली रहता है वही बता देती हूँ कि बढ़िया हूँ आप बताओ आप कैसे हो। एंजॉय करते हैं ये बरसात वाला सुपर डुपर हिट गाना संग्राम मूवी का कविता जी और कुमार सानू की आवाज में हमारी चांदनी की फरमाइश पर।

रात मगर जल रहे हैं हम। कुमार सानू कविता जी की आवाज में इंजॉय किया है हमने ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से। उनको सुनना है गाना बरसात हो रही है, बरसात होने दो। इंजॉय करते हैं ये नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आवाज है अनुराधा जी की और कुमार सानू की।

बरसात हो रही है, बरसात होने दे, हमने एंजॉय किया है। ये नगमा बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेश कुमार जी की चौक से, और उनको सुनना है गाना अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। सो एंजॉय करते हैं अनुराधा जी और सोनू निगम की आवाज में मेहरबान मूवी का ये नगमा।

So, दोस्तों बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा जब वी मेट का। सो एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश, और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना, और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार की डोरी इतनी मजबूत है कि मैं खींची चली आऊंगी आप लोग के पास कल फिर। तब तक के लिए लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और अब आप सुनेंगे इस सुपर डुपर हिट नगमे के बाद में बहारे गजल, जहाँ होंगी सिर्फ और सिर्फ गजलें और शांति, है ना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब फरमाइशों के बाद। जी हाँ, अगला कार्यक्रम गजलों की बहार लिए मैं मनु हूँ आप सभी के साथ। गजलें हैं, शायरी है, रंग हैं, जो दिख रहा है उसी के अंदर, जो अनदिखा है वो शायरी है। जो दिख रहा है उसी के अंदर, जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, तो क्या लिखूं मैं। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, तो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं, तो क्या अजब है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं, तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रस्ते में ही रह गया है, वो शायरी है। जी हाँ, शायरी की, गज़लों की, शेरों की बरसात लिए मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। जी हाँ, आपको सुनाते हैं प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल हमारे साथ सचिन शुक्ला जी हैं, नमस्ते साहब जी। हाँ, नमस्कार आपको भी। और नीना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नमस्कार सर जी। हाँ, आदाब करते हैं आपको भी। चलते हैं गज़ल की तरफ और मिलते हैं आपसे इस संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल एक प्यारी सी गज़ल इंट्रो के बाद।
1: हाले दिल उनसे मेरा मुझे

लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम।

जी हाँ, एक बार पुनः से आप सभी का इस्तकबाल। सविता शास्त्री जी हैं, शुभ संध्या सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। इट्स कुमार जी हैं, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज जिस शायर को हम आपके बीच लेकर आए हैं, उनकी आवाज़ बहुत मखमली है और बहुत ही आसान लफ्जियात में ज़िंदगी के कई सारे पहलुओं को, ज़िंदगी के कई सारे मौज़ों को छूती हुई उनकी गज़लें, उनकी शायरियाँ निखरती हैं। उन्होंने लिखा कि ज़िंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, ज़िंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, सिर्फ ऊंचे खूबसूरत ख्वाब मत देखा करो। लोग कहते नहीं कि ख्वाब नहीं रहेंगे तो फिर कैसे, तुमने कहा नहीं, नहीं हौसला ज़रूरी है। अगर आपके पास ख्वाब है और हौसले नहीं हैं तो कामयाबी शायद नहीं मिल पाएगी। लोग कहते हैं कि चलते रहने से कामयाबी मिल जाती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सही मंजिल पर, सही रास्ते पर चलते रहने से कामयाबी मिलती है। अगर हमको लखनऊ की रोड पर जाना हो और हम बहराइच की रोड पर चले जाएंगे तो अपनी मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। तो चलने से मंजिल नहीं मिलती, सही रास्ते पर चलने से मंजिल मिलती है। शायद ये उससे अच्छी बात हो सकती है। तो ज़िंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, सिर्फ ऊंचे खूबसूरत ख्वाब मत देखा करो, दुख अंधेरों का अगर मिटता नहीं है जहन से, यानी अगर आपके जहन से दुख नहीं मिट रहा है अंधेरे का, रात के दामन को अपने खून से उजला करो। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो वो किए बिना कहाँ होगा, और करने से होता है, बिल्कुल होता है। खुद को पोशीदा न रखो, पोशीदा मतलब होता है छुपा हुआ। खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, फूल कहते हैं तुम्हें सब लोग तो महका करो। अगर आपको लोग फूल कहते हैं तो भाई आपकी महक जानी चाहिए। इफ यू आर ए फ्लावर देयर शुड बी अ फ्रेग्रेंस, अगर आप फूल हैं तो खुशबू होनी चाहिए। तो खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, फूल कहते हैं तुम्हें सब लोग तो महका करो, जिंदगी के नाम लेवा मौत से डरते नहीं, जिंदगी के नाम लेवा मौत से डरते नहीं, हादसों का खौफ लेकर घर से मत निकला करो। जी हाँ, वो तो अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं पढ़ता हूँ कि व्हाट इज प्लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, जो होना होगा वो होकर रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता, तो फिर काहे का डर, होना होगा तो होगा ही साहब। तो मंजर भोपाली साहब कहते हैं कि जिंदगी के नाम लेवा मौत से डरते नहीं, हादसों का खौफ लेकर घर से मत निकला करो, रहनुमा ये दर्स, दर्स कहते हैं उपदेश या ज्ञान को, रहनुमा मतलब जो आपकी अगुवाकार हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, रहनुमा ये दर्स हमको दे रहे हैं आजकल, रहनुमा ये दर्स हमको दे रहे हैं आजकल, यानी हमारे जो रहनुमाई कर रहे हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, बेच दो सच्चाइयाँ, ईमान का सौदा करो। सच्चाई बेच दीजिए और ईमानदारी का सौदा कीजिए। तैश में आने लगे तुम तो मेरी तनकीद पर, तनकीद बोलते हैं सही को सही और गलत को गलत कहना, अंग्रेजी में इसे क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है, तनकीद। तैश में आने लगे, तैश मतलब गुस्से में, तैश में आने लगे तुम तो मेरी तनकीद पर, इस कदर हसास हो, हसास मतलब होता है अगर आपके पास ब्रेन है तो, इस कदर हसास हो तो आईना देखा करो। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो जरा आईना देख लिया कीजिए, आपको शायद एहसास हो जाए कि जो हम कह रहे हैं वो सही है।
सिक्के के कई पहलू हो सकते हैं और उन पहलुओं से हम बावास्ता हो सकता है हमने उनको न जाना हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है उनको जानते हो सकता है नहीं जानते हो। जी हाँ, नागेश्वर धाकर जी हैं, गुड इवनिंग अजय मनुष्य जी, सुना है बरसात होती है तो मेंढक टर टर बोलते हैं। देखिए भाई, ये नागेश्वर जी आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव और आपकी लगन आपकी सोच का परिणाम है कि आपने रात में इतनी देर जाग कर या बरसात के बीच मेंढकों को इतना समय दिया। आप मेरे लिए बहुत पूजनीय है और शोध का विषय है, मतलब आपने अत्यंत शोध किया और इस पर हम सरकार से कहेंगे कि वो आपको कम से कम जो है वो ज्ञानपीठ का पुरस्कार ज़रूर दे। या बिल्कुल नागेश सुधाकर जी, और ये हम सिफारिश करेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं इस प्यारी सी गज़ल की तरफ, मखमली आवाज़। और जब हम मखमली आवाज़ कह दें तो साहब ये होती है जगजीत सिंह साहब की। जी हाँ, ये सुनते हैं उनकी मखमली आवाज़ में

जी, एक बार पुनः आप सभी का इस्तकबाल, अभिनंदन, वंदन, नमन और स्वागत। रजिया सुल्तान, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और गजल जिस गले से गाई गई, आह माशाज साक्षात विराजमान अर्थात लता मंगेशकर, ऐ दिले नादान, अपने आप में बहुत ही अनूठी और बहुत ही प्यारी गजल। हालांकि लता जी ने और रफ़ी जी ने बहुत कम गज़लें गाई, लेकिन जो गाईं वो सदा के लिए यादगार हो गईं। बात कर रहे हैं मंजर भोपाली साहब की। उन्होंने लिखा कि कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, कोई बचेगा नहीं, कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। आपको पता है कि किस तरफ आग लगानी है। उजले कपड़ों में रहो या कि नकाबे डालो, उजले कपड़ों में रहो या कि नकाबे डालो, यानी चाहे काले कपड़े हों या उजले हों, तुमको हर रंग में ये खलके खुदा जानती है। ईश्वर आपको जानता है कि हु यू आर, आप कौन है, अंदर से क्या है, वो देखता है। एक लघु कथा याद आ गई हमको कि एक पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा, पिता बेटा जो है वो कहीं से लड्डू चुरा लाया, तो हलवाई की दुकान से। तो पिता ने पूछा बेटे से कि बेटा ये लड्डू चुरा कहाँ से पाया। तो बेटे ने कहा कि वो हलवाई दुकान पर था नहीं, उधर देख रहा था, हम लड्डू चुरा लाए। पापा ने कहा किसने देखा तो नहीं, तो कहा बच्चे ने कहा नहीं किसी ने नहीं देखा। तो पापा ने उसको समझाया कि बेटा कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है, हमेशा इस बात को याद रखना। बेटे ने इस बात को मन में ठान लिया कि कोई भी नहीं देख रहा है तो वो ऊपर वाला देख रहा है, जिसे हम ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गाड कहें, परवरदिगार कहें, आप किसी भी नाम से पुकारे, वो एक सत्ता जो पूरे विश्व को चलाती है, वो देखती है। पिता ने बेटे को समझाया और कुछ दिन के पश्चात बगल के खेत में गन्ने लगे हुए थे, तो पापा ने बेटे से कहा कि चलो तुम वहाँ बैठे रहना, मैं जरा गन्ने ले आऊँगा और कोई आएगा तो बता देना, कोई देख नहीं रहा है। तो पिताजी चले गए गन्ने काटने के लिए। कुछ देर हुई थी कि बच्चे ने आवाज़ लगा दी, पापा पापा वो देख रहा है। पिताजी लौट कर आए तो उन्होंने कहा क्या हुआ, कौन देख रहा है। बच्चे ने पापा से कहा कि आपने क्या कहा था, अगर कोई नहीं देख रहा है तो भी कोई देख रहा है, वो ऊपर वाला देख रहा है। अक्सर यही होता है, हम इस दुनिया में जिस बात को समझाना चाहते हैं शायद उस बात को खुद समझ जाएं, तो मुझको लगता है कि दुनिया की आधी समस्याएं हल हो सकती हैं। अक्सर मैंने देखा कि हम जिस बात को समझाना चाहते हैं उसे खुद ही नहीं समझ पाते कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। तो चाहे आप उजले कपड़ों में रहें चाहे काले कपड़ों में, वो सब जानता है, अच्छे कारनामे और बुरे कारनामे सब। और रोक पाएगी न जंजीर न दीवार कोई, रोक पाएगी न जंजीर न दीवार कोई, अपनी मंजिल का पता आए जसा जानती है, यानी खुशबू। कहा जाता है कि हवा, खुशबू और प्यार अपना रास्ता बना लेते हैं, तो आप उनको लाग कैद कीजिए, वो रुकेंगे नहीं। टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, हारूंगा नहीं, टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, हारूंगा नहीं, मेरी हिम्मत को जमाने की हवा जानती है। यहाँ लोग ये जानते हैं कि ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन जब तक बंदे में दम है तब तक लड़ेगा। और यही चीज़ें महत्वपूर्ण है। पियरे डी कुबर्टिन, जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि द एसेंशियल थिंग इन द लाइफ इज नॉट कॉन्क्वायरिंग बट फाइटिंग वेल। जिंदगी में महत्वपूर्ण चीज
जीतना नहीं बल्कि ठीक ढंग से लड़ना होती है। हम जीते या हारे वो एक अलग बात है, महत्वपूर्ण ये है कि हम लड़े कितना बेहतर, वो महत्वपूर्ण है। तो टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, हारूंगा नहीं, मेरी हिम्मत को जमाने की हवा जानती है। आप सच बोल रहे हैं तो पशेमा क्यों है? पशेमा मतलब शर्मिंदा, शर्मसार। आप सच बोल रहे हैं तो पशेमा क्यों है? ये वो दुनिया है जो अच्छों को बुरा जानती है। लाइन भी है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। आंधियां जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, आंधियां जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बाद सबा जानती है। आंधी के गुजर जाने के बाद भी फूल खिलेंगे। आंख वाले नहीं पहचानते उसको मंजर, जिसे नज़दीक से फूलों की अदा जानती है। कभी कभी इंसान की आंखें धोखा खा जाती हैं और आंखों का देखा हुआ भी सच नहीं होता। लोग कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, लेकिन ये चीज़ हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ जगह हमको मानना पड़ता है। जी हाँ भाई, हमारे पास नगर ढाकर जी कहते हैं थैंक यू मनुष्य जी, अगर आपकी अवार्ड आपके हाथों मिलेगा तो जी रे बिल्कुल, मैं सिफारिश करूँगा तो मैं ही ला कर दूँगा। सबजा ने लिखा है बहुत प्यारी गज़ल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और गीता श्रीवास्तव बहन जी प्रणाम करते हैं आपको, बहुत सुंदर गज़ल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ब्यूटीफुल गीत। जी हाँ, दीप सिंह जी ITI अयोध्या से, भाई इतने दिनों के बाद अगर आप इस तरह से आएंगे तो मतलब कैसे काम चलेगा। जी हाँ नमस्कार आपको। नीना जी ने लिखा है हुई पता नहीं क्या हुई जिंदगी के ऊपर, अच्छा जी, मौत भी क्या गजब चीज़ है, न सबका पता जानती है, क्या बात है। नागेश्वर धाकर, बच्चों को पहले चोरी नज़रअंदाज करने पर उसे दूसरी चोरी करने की हिम्मत मिल जाती है, इसलिए बच्चों को चोरी करने पर ही उसे समझा कर मना करो। ये नागेश्वर जी बहुत अच्छी बात कही आपने, मतलब जो होना चाहिए, मतलब जो तरबियत होती है, जो संस्कार होते हैं। और याद रखिएगा, मतलब मेरा मानना यह है कि कभी कभी बच्चे आपको बहुत अच्छा सिखा जाते हैं। हम बच्चों को कुछ बात बता करके भूल जाते हैं और लेकिन बच्चों को याद रह जाती है, और फिर जब बच्चे याद दिलाते तो उनको याद आता है, हाँ यार ये तो मैंने कहा था, ये तो गड़बड़ हो गया मुझसे, चलो अब नहीं होगा। जी हाँ, तो बहुत कम गज़लें हैं जिनको लता जी ने गाया है और बहुत ही कम गज़लें हैं जिनको रफ़ी जी ने गाया है। तो हमने आपको एक लता जी की गज़ल सुनाई, आइए अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक प्यारी सी गज़ल, और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए। सुपर हिट गाना।

जी हाँ भाई, उपस्थित है हमारे सामने अनिल वर्मा जी सैदापुर से। शुभ संध्या आपको भी, सादर प्रणाम। और लता जी के नगमे के साथ उनकी लाइफ भी बहुत रोमांचपूर्ण रही है। बिल्कुल इट्स कुमार जी, आपकी बात से पूर्णतः सहमत। और बिल्कुल जी, और सविता शास्त्री जी ने बहुत सारे स्टार दे दिए, क्या बात है। मनु जी सर, गुड इवनिंग, बहारे गजल में आपका स्वागत है। जी हाँ, देखिए अब घड़ी की सुइयाँ 10:20 बजा रही हैं और स्वागत है भाई, आपका भी स्वागत है। और अच्छा हुआ कि आज अपने मनोज नहीं लिखा, मनु लिखा, ये अच्छा लगा हमको। चलिए, गए थे शौक से हम भी ये दुनिया देखने को, गए थे शौक से हम भी ये दुनिया देखने को, मिला हमको हमारा ही तमाशा देखने को। खड़े हैं राह चलते लोग कितने खामोशी से, सड़क पर मरने वालों का तमाशा देखने को। इस दुनिया में तमाशा देखने वाले लोग बहुत हैं, मदद करने वाले लोग शायद बहुत कम हैं। बहुत से आईना खाने हैं इस बस्ती में, लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत से आईना खाने हैं इस बस्ती में, लेकिन तरसती हैं हमारी आंखें चेहरा देखने को। हम अपना चेहरा किसे दिखाएं, कमानों में खिंचे हैं तीर, तलवारें हैं चमकी। जरा ठहरो, कहाँ जाते हो दरिया देखने को। का यहाँ तो सब तरफ नफरत ही है। कहीं किसी पंक्ति में पढ़ा था मैंने कि ये नफरत की कैसी हवा बह रही है, चरागे मोहब्बत बुझा जा रहा है। जो पत्ता हवा का पता दे रहा था, वो पत्ता हवा में उड़ा जा रहा है। साहब, जिंदगी का सामना है ये। खुदा ने मुझको बिन मांगे ये नेमत दी है मंजर, तरसते हैं बहुत से लोग ममता देखने को। जी हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे सौभाग्यशाली लोग वो हैं जिनको माँ का प्यार नसीब होता है, और वो भी बहुत अच्छी, मतलब एक अपने आप में अद्भुत, अतुल्य और अविश्वसनीय। माँ के प्यार जैसा किसी का प्यार शायद ही हो, मुझे नहीं लगता किसी का हो सकता है। हालांकि अपना अपने अपनी अपनी समझ है। और आइए भाई, हमारे नागेश्वर धाकर जी महेंद्र कपूर को सुनना चाहते हैं। आइए, महेंद्र कपूर के साथ हम आपको एक सिंगर से और आपकी मुलाकात कराते हैं। बहुत ही प्यारी सी गज़ल है। आपने जब कहा कि सर ये गज़ल, तो हमने कहा चलिए इससे बेहतरीन गज़ल। और मैं दावा करता हूँ नागेश्वर जी और अपने सभी साथियों से कि ये गज़ल आपके दिल को छूने वाली है। जरा गज़ल को सुनकर बताइएगा कि इसने आपके दिल को छुआ या नहीं छुआ। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल इसी कार्यक्रम में बाहर एक गज़ल में ठीक 9:30 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे आपसे यहीं पर ठीक 9:30 बजे आप ही के कार्यक्रम बाहर गज़ल में।

0: इसी तरह दो बेटियों की शादी कर चुके थे। सबसे छोटे बेटे अरुण ने बीए पास करने के बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग ली थी। वो एक साल से घर में बेकार बैठा था। अरुण एक तो छोटी मोटी ट्यूशंस करता था, उसके पास स्लीपर क्लास के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए पटना से दिल्ली जनरल डिब्बे में जाना पड़ रहा था। माँ ने कहा, बस हो गया, मैंने पराठे और भुजिया एक पैकेट में पैक कर दिया है, तुम याद से अपने बैग में रख लेना। पिता ने भी बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, जाओ बेटा, अपने सामान का ख्याल रखना। अरुण माता पिता को प्रणाम कर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। यार्ड में जाकर एक डिब्बे में खिड़की के पास वाली सिंगल सीट पर कब्जा जमा कर उसने चैन की सांस ली। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो चढ़ने वालों की बेतहाशा भीड़ थी। अरुण जिस खिड़की वाली सीट पर बैठा था वो इमरजेंसी खिड़की थी। एक लड़की डिब्बे में घुसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस लड़की ने अरुण के पास आकर कहा, आप इमरजेंसी खिड़की खोलें तो मैं भी डिब्बे में आ सकती हूँ, मेरा इस ट्रेन से दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। अरुण ने उसे सहारा देकर खिड़की से अंदर डिब्बे में खींच लिया। लड़की पसीने से तर बतर थी। दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछते हुए उसने अरुण को थैंक्स कहा। थोड़ी देर में गाड़ी खुली तो अरुण ने अपनी सीट पर जगह बनाकर लड़की को बैठने को कहा। पहले तो वो झिझक रही थी, पर बाद में और लोगों ने भी बैठने को कहा तो वो चुपचाप बैठ गई।
1: करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से, लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आप खुले तो कुछ ना पाए, आओ

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक। बीच वाले स्टेशन बोले

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछली पट्टम दिमली पट्टम दिमली पट्टम मछली पट्टम, उंगोल नृत्य गोल नृत्य गोल उंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, शोरनूर पोटनूर शोरनूर पोटनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है हिसाब बराबर। अब तक आपने सुना, अरुण बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहा था और एक इंटरव्यू देने दिल्ली जा रहा था। वहां पर उसने भीड़ से खचा खच ट्रेन में चढ़ने के लिए एक लड़की की मदद की और फिर उसको अपनी सीट शेयर करके बैठा भी लिया। अब आगे तकरीबन 2 घंटे बाद ट्रेन बक्सर पहुंची। ये बिहार का आखिरी स्टेशन था। यहाँ कुछ लोकल मुसाफिरों के उतरने से राहत मिली। अरुण के सामने वाली सीट खाली हुई तो वो लड़की वहां जाकर बैठ गई। अरुण ने लड़की का नाम पूछा तो वो बोली आभा। अरुण बोला मैं अरुण। दोनों में बातें होने लगी। अरुण ने पूछा तुम पटना में कहाँ रहती हो? आभा बोली सगुना मोड़ दानापुर के पास। मैं बहादुरपुर। मैं पटना के पूर्वी छोर पर हूँ और तुम पश्चिम छोर पर। दिल्ली में कहाँ जाना है? अरुण ने पूछा कल मेरा एक इंटरव्यू है। आभा बोली वाह मेरा भी कल एक इंटरव्यू है। बुरा ना मानो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किस कंपनी में इंटरव्यू है? अरुण ने पूछा। आभा ने कंपनी का नाम बताया तो अरुण तकरीबन अपनी सीट से उछलकर बोला वाह क्या सुहाना सफर है, आगाज से अंजाम तक हम साथ रहेंगे। रात भर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे, कभी सोते कभी जागते रहे। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई थी, इसके बावजूद काफी देर से गाजियाबाद स्टेशन पर खड़ी थी। सुबह के 7 बज चुके थे। अरुण नीचे उतरकर लेट होने की वजह पता लगाने गया। वापस आकर अपनी सीट पर बैठते हुए बोला गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक गाड़ी पटरी से उतर गई है, आगे काफी ट्रेनें फंसी हैं। ट्रेन के दिल्ली पहुंचने में काफी समय लग सकता है। आभा ये सुनकर घबरा गई। अरुण ने उसे शांत करते हुए कहा डोंट वरी, हम दोनों यहीं उतर जाते हैं, यहीं फ्रेश होकर कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर यहीं से

ऑटो रिक्शा लेकर सीधा कैनॉट प्लेस एक घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। दोनों ने गाजियाबाद स्टेशन पर ही चाय नाश्ता किया। ऑटो रिक्शा से दोनों कंपनी पहुंचे। दोनों ने अलग अलग इंटरव्यू दिए। इसके बाद कंपनी के मालिक मोहनलाल ने दोनों को एक साथ बुलाया। मोहनलाल ने कहा, देखो मैं भी बिहार का ही हूँ, दोनों की क्वालिफिकेशंस एक ही हैं, इंटरव्यू में दोनों की परफॉर्मेंस भी बराबर रही है, पर मेरे पास तो एक ही जगह है। अब तुम लोग बाहर जाकर ये तय करो कि किसे नौकरी की ज्यादा जरूरत है, मुझे बता देना, मैं ऑफर लेटर इशू कर दूंगा। अरुण और आभा दोनों ने बाहर आकर बात की, अपनी अपनी पारिवारिक और माली हालत बताई। आभा की माँ विधवा थी, उसकी एक छोटी बहन भी थी, वो पटना के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम नौकरी करती थी, पर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, परिवार को उसी को देखना होता था। अरुण ने आभा के पक्ष में सहमति जताई, आभा को वो नौकरी मिल गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है हिसाब बराबर। अब तक आपने सुना अरुण और आभा की मुलाकात ट्रेन में हुई। उन दोनों ने एक ही कंपनी में इंटरव्यू दिया और दोनों का परफॉर्मेंस बराबर रहा। अब उनके सामने ये कंडीशन थी कि उन्हें खुद मिलकर ये तय करना था कि इस नौकरी की ज्यादा जरूरत किसे है, तो उसे ही ऑफर लेटर मिल जाना था। अरुण ने आभा के पक्ष में सहमति जताई। आभा को वो नौकरी मिल गई। अब आगे मालिक मोहनलाल अरुण से बहुत खुश हुआ और बोला, नौकरी तो तुम भी डिजर्व करते थे, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। वैसे तो किराया देने का कोई करार नहीं था, फिर भी मैंने अकाउंटेंट को कह दिया है कि तुम्हें थर्ड एसी का अप डाउन रेल किराया मिल जाएगा। जाओ, जाकर पैसे ले लो। अरुण ने पैसे ले लिए। आभा उसे धन्यवाद देते हुए बोली, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ा त्याग किया है। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए और संपर्क में रहने को कहा। अरुण जनरल डिब्बे में बैठकर पटना लौट आया। उसने किराए का काफी पैसा बचा लिया था। माता पिता को जब पता चला कि उसे नौकरी नहीं मिली तो वो दोनों उदास हो गए। कुछ ही दिनों में अरुण के पिता चल बसे। अरुण किसी तरह 2-3 ट्यूशन करके अपना काम चला रहा था। जिंदगी से उसका मन टूट चुका था। कभी सोचता कि घर छोड़कर भाग जाए, तो कभी सोचता गंगा में जाकर डूब जाए। फिर अचानक बूढ़ी माँ की याद आती तो आंखों में आंसू भर आते। एक दिन अरुण बाजार से कुछ सामान खरीदने गया। एक 16-17 साल का लड़का अपने कंधे पर एक बैग लटकाए कुछ बेच रहा था। उसके एक पैर में पोलियो का असर था। लाठी के सहारे चलता हुआ वो अरुण के पास आकर बोला, भैया आपको पापड़ चाहिए? 10 रुपए का एक पैकेट है। अरुण ने कहा, नहीं चाहिए पापड़। लड़के ने थैले से एक शीशी निकालकर कहा, आम का अचार है, चाहिए? पापड़ और अचार दोनों घर में बने हैं, माँ बनाती है। अरुण के मन में दया आ गई। उसके पास 5 रुपए ही थे। उसने लड़के को देते हुए कहा, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, पर तुम ये रख लो। अरुण ने रुपए उसके हाथ में पकड़ा दिए। दूसरे ही पल वो लड़का गुस्से में बोला, मैं विकलांग हूँ, भिखारी नहीं, मैं मेहनत करके खाता हूँ। जिस दिन कुछ नहीं कमा पाता, माँ बेटे पानी पीकर सो जाते हैं। इतना बोलकर उस लड़के ने रुपए अरुण को लौटा दिए। पर वो अरुण की आंखों में उम्मीद की किरण जगा गया। वो सोचने लगा, जब ये लड़का जिंदगी से हार नहीं मान सकता है तो मैं क्यों मानूं? अरुण के पास दिल्ली में मिले कुछ रुपए बचे थे। वो कोलकाता गया। वहां के मंगला मार्केट से थोक में कुछ मोजे, रुमाल और गमछे खरीद लाया। ट्यूशन के बाद बचे समय में फुटपाथ पर उन्हें बेचने लगा। इस इलाके में सुबह से लेकर देर रात तक काफी भीड़ रहती थी। अरुण की अच्छी बिक्री हो जाती थी। शुरू में अरुण को कुछ झिझक होती थी, पर बाद में उसका इस काम में धीरे धीरे मन लगने लगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है हिसाब बराबर। अब तक आपने सुना, अरुण बहुत गरीबी में जिंदगी काट रहा था। एक बार उसे एक नौकरी मिली, लेकिन उसने उससे भी ज्यादा जरूरतमंद एक लड़की को वो नौकरी सहर्ष दे दी, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही सीट बाकी थी। वो अपने घर लौट आया, दो चार ट्यूशंस पढ़ाता और शाम को फुटपाथ पर बैठकर छोटे मोटे सामान बेचता। अब आगे धीरे धीरे उसने देखा कि एक ही हफ्ते में तकरीबन 700-800 रुपए तो कभी 1000 रुपए की बचत हो जाती थी। इस बीच बहुत दिन बाद उसे आभा का फोन आया। उसने कहा, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, कार्ड पोस्ट कर दिया है, तुम जरूर आना और अपनी माँ को भी साथ लाना। अरुण माँ के साथ आभा की शादी में गया। आभा ने अपनी माँ, बहन और पति से उसे मिलवाया और कहा, मैं जिंदगी भर अरुण की कर्जदार रहूंगी, मुझे नौकरी अरुण की वजह से ही मिली थी। शादी के बाद आभा दिल्ली चली गई। अरुण की दिनचर्या पहले जैसी हो गई। एक दिन आभा का फोन आया। उसने कहा, मेरे पति गुड़गांव की एक गारमेंट फैक्ट्री में डिस्पैच सेक्शन में हैं। फैक्ट्री से मामूली डिफेक्टिव कपड़े सस्ते दामों में मिल जाते हैं, तुम चाहो तो इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अरुण बोला, नेकी और पूछ, मैं गुड़गांव आ रहा हूँ। इधर अरुण उस पापड़ वाले लड़के का स्थायी ग्राहक हो गया था। उसका नाम रामू था। वो अक्सर उससे पापड़ और अचार खरीद लिया करता था। अब अरुण महीने दो महीने में एक बार दिल्ली जाकर कपड़े लाता और उन्हें अच्छे दामों पर बेच देता। अरुण की शादी थी, उसने आभा को भी बुलाया, वो भी पति के साथ आई थी। अरुण ने उस पापड़ वाले लड़के को भी अपनी शादी में बुलाया था। शादी हो जाने के बाद जब अरुण अपनी माँ के साथ मेहमानों को विदा कर रहा था, अरुण ने आभा को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा। आभा ने कहा, अरे यार, नो मोर थैंक्स, हिसाब बराबर, हम दोस्त हैं। फिर अरुण ने रामू को बुलाकर सबसे परिचित कराते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस लड़के की वजह से हूँ। मैं तो जिंदगी से निराश हो चुका था, मेरे अंदर जीने की इच्छा को इस स्वाभिमानी मेहनती रामू ने जगाया। तब अरुण रामू से बोला, मुझे अपनी दुकान में एक सेल्समैन की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने हामी भरकर सिर झुकाकर अरुण को नमस्कार किया। अरुण बोला, मैंने यहाँ के विधायक को अर्जी दी है तुम्हें अपने फंड से एक तिपहिया रिक्शा देने की, तुम उसे आसानी से चला सकते हो और आ जा सकते हो। अरुण, आभा, रामू और बाकी सभी की आंखें खुशी से नम थीं। तीनों एक दूसरे के मददगार जो बने थे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है हिसाब बराबर। आपने सुना किस तरह अरुण ने आभा की मदद करके उसे नौकरी दिलवाई, फिर आभा ने उसे अपने पति की मदद से बिजनेस में सेट किया। दोनों अपनी जिंदगी में खुश हो गए, दोनों अपने अपने बुरे हालातों से ऊपर उभर आए। इसी बीच में एक और कड़ी भी जुड़ी जिसने अरुण को प्रोत्साहित किया और बाद में अरुण ने उसे अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। इस तरह एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ाने से वो सब अब एक शानदार जिंदगी जीने लगे। जिंदगी कोई ऐसी रेस नहीं है जहां हमें दूसरों को गिरा कर जीतना हो। हकीकत में जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जो अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर तय किया जाता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सिर्फ किसी और का भला नहीं कर रहे होते बल्कि अपने खुद के जीने का मकसद और सफलता का रास्ता भी गहरा कर रहे होते हैं। इस फिलॉसफी को सहयोग से सफलता या कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल ग्रोथ कहा जाता है। अगर हम अपने आसपास की कुदरत को देखें तो हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। एक छोटा सा पौधा भी सूरज की रोशनी, मिट्टी के पोषण और पानी के बिना बड़ा नहीं हो सकता। मधुमक्खी फूलों से रस लेती हैं और बदले में उनका पॉलिनेशन करती हैं। जब पूरी कायनात एक दूसरे की मदद पर टिकी है तो इंसान अकेले कामयाब होने की जिद कैसे कर सकता है। इंसानी समझ की बुनियाद ही इस बात पर है कि हम एक दूसरे के काम आए। कामयाबी का मजा तभी आता है जब आपके पास खुशी बांटने के लिए लोग हों, और वो लोग तभी होते हैं जब आपने उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया हो। इस दुनिया में हर किसी के लिए काफी जगह और मौके हैं। भगवान ने सबके लिए सब कुछ भरपूर बनाया है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप उनका विश्वास जीत लेते हैं। ये विश्वास आगे चलकर आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनता है। किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है ना, वो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। ये आपको अंदर से सुकून और खुशी देती है। जब दो लोग एक दूसरे की ताकत बनते हैं तो उनकी कामयाबी की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। जो काम अकेले इंसान महीनों में नहीं कर सकता वो मिलकर पलों में हो जाता है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने से एक ऐसा रिश्ता बनता है जहां नफरत, जलन और डर की जगह प्रेम और सुरक्षा ले लेती है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी हिसाब बराबर। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, एक और भीगी रात, बारिश की वो धीमी फुहारें, खिड़की से टपकती बूंदें और दिल में उठती वो मीठी सी कसम। मैं हूँ आपकी सुकून, ठंडक, गर्मी, बरसात और हर मौसम और हर मिजाज की आपकी रेडियो साथी अनोखी। और आज भूले बिसरे गीत के इस खास मानसून स्पेशल में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीत के सफर पर, जहां हर बूंद के साथ एक याद, एक झोंके के साथ एक तराना जुड़ा है, जो रात के सुरीले और भीगे भीगे मूड को समर्पित है। और दोस्तों, आपकी अनोखी ने तो आज के एपिसोड का नामकरण तक कर रखा है। हाँ जी, हमने नाम रखा है आज के एपिसोड का भीगी रातों के तराने, एक यादगार सफर। तो चलिए पहली बूंद के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो खुद बारिश की तरह हर दिल को छू जाता है। आज के शो का पहला सॉन्ग भीगी भीगी, हाँ जी भीगी भीगी क्या, भीगी भीगी रातों में। और ये सॉन्ग है आवाज से जिसको सजाया है आशा भोसले जी और किशोर कुमार ने। तो चलिए सुनते हैं ये नगमा, और उससे पहले आपको बता दूं कि इस नगमे को सुनते हुए इन ख्यालों में जरूर डूबिएगा। ख्याल कुछ यूं है, रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी। रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी, उसके साथ बिताई हर शाम की याद इन बूंदों में बह रही थी। वो भीगी हुई रातें सिर्फ मौसम नहीं थी, वो अधूरे ख्वाबों का गीत था। और दिल कह उठा, या भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, हल्की बरसातों में, कैसा लगता है। जैसा भी लगता है, आप खुद ही एंजॉय करिए ना इस गाने के माध्यम से।

तो अभी हमने एंजॉय किया ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि बताएंगे नहीं, चलिए एक प्रश्न की ओर रुख करते हैं और उसके बाद में थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं। क्या आपने कभी भीगी किसी का इंतज़ार किया है, या किसी के साथ बैठकर खामोशी से बारिश को महसूस किया है? बस यही एहसास बनता है ये अगला नगमा, जिसका आनंद अभी आपने लिया। और अब सुनिए एक और तराना, जो बारिश में भीगी एक मासूम सी लड़की की कहानी कहता है। सॉन्ग है, सॉन्ग बताएंगे ना, उससे पहले थोड़ी सी और गहराई में उतरते हैं। एक लड़की जो भीगी भी है और शायद भीगी हुई और भागी हुई भी है, कहाँ से आई कहाँ जाएगी कोई पता नहीं, पर एक बात का पूरा पता है कि इस बारिश ने उसे और भी हसीन बना दिया है। एक ऐसी लड़की जो भीगी सी है, भागी सी है, हवा में लहराती एक कहानी सी है। उसकी आंखों में कुछ अनकहे पल हैं जो किसी मुलाकात का जिक्र करना चाहते हैं। जी हाँ, और वो सॉन्ग कोई और नहीं, वो सॉन्ग है एक लड़की भीगी भागी सी, और आवाज से इसको सजाया है किशोर कुमार जी ने। आइए चलिए सुनते हैं और लुत्फ़ में खो जाते हैं इस सॉन्ग के साथ।

सजन दूर था पर सावन पास था, बदन में जैसे हर बूंद के साथ उनके होने का एहसास था, सांसों में उनकी यादें और इस मौसम का जादू। अब अगला गीत कुछ शरारत लिए, कुछ अदाएं लिए आपसे मिलना चाहता है और गुनगुनाता है

ये वो सॉन्ग है जो बदन में सिहरन दौड़ा दे और असली सावन के जादू को याद दिला दे। मीठी सी तड़प और मिलन की दरकार के एहसास के साथ 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज का सुहाना सफर। हाँ जी, तो चलिए एंजॉय करते हैं मिलकर।

हम बिना सुधारे ही गा सकते हैं, गा नहीं सकते तो साथ में एंजॉय तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस गीत की ओर। एक ऐसा गीत जो पनघट की हंसी, झूले की टुनक, सावन का शोर जैसे दिल की धुन को साथ ले चले। पवन बोले पेड़ गाए, ये गीत गांव के हर आंगन में जाए। शोर मूवी से किशोर दा और लता जी की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग।

अब मैं आपसे जिस गीत की बात करने वाली हूँ, उस गीत में छुपा है गांव का वो सौंदर्य, वो कच्ची सड़कें, वो पनघट, वो बारिश के संग झूमती प्रकृति जो मन के भीतर मयूरी बन नाच उठती है। और जब बात झूमने की हो तो ये आया सावन झूम के, गीत कैसे पीछे रह सकता है। झूले पत्तों पे झूमे, बच्चे गलियों में घूमे, दिल ने फिर से सपना बुना, आया सावन झूम के, प्यार हर दिल में चुपके से घूमे, के आया सावन झूम के।

0: तो अभी हमने इस गीत के माध्यम से उस पल को महसूस किया जो सावन का मौसम जैसे ही आता है, अपने साथ बचपन की यादें, पहली बारिश, भीगे पैर और वो नाचते हुए घर लौटना, सब कुछ लौटा आता है। अब एक ऐसे मस्ती भरे गीत की तरफ चलते हैं जिसमें दिल धड़कता है और कहता है, रामा रामा गजब हुई गवारे, हाल हमरा अजब हुई गवारे। हाँ जी, आज तो दिल सच में सावन बना बैठा है, ये ना जाने क्या हुई गवा है, ना जाने सावन में कौन सा जादू है, हर कोई दीवाना, हर चेहरा बावला बन बैठा है। तो चलिए मोहम्मद रफी साहब की और साथ ही साथ में लता जी की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।
1: हाय राम।

0: बूंदों की ताल पे झूमे हैं अरमां, हर एक बूंद में छिपा है एक गुमनाम अंजाम। रिमझिम राग मन का साज, बारिश ने छेड़ा वो मीठा अंदाज। क्या गजब बात है, बारिश और मस्ती एक साथ आ जाए तो बस दिल भीग जाता है। और अब एक गीत जिसमें बारिश मन की हर तार को छूती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों की हर लय से निकले सुर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं हमारे खुश होने का कारण, जिसमें बरखा बहार के साथ आती है और बूंदे अपनी फ्रेंड रिमझिम जी के साथ, जिसको अपनी आवाज के जरिए मिलाने का काम किया है लता मंगेशकर जी ने। तो चलिए हम भी मिल लेते हैं इस प्यारे से गीत से।
1: ओ, सजन।

घटाएं घिरी थी जैसे यादें मुड़ी हों। सांवली सी वो शाम जिसमें उसके कहे बिना सब कह दिया था मैंने, और दिल ने बस इतना ही कहा। क्या कहा? ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी। तो बिना देरी किए चलिए एंजॉय कर लेते हैं ये वाला सॉन्ग, जिसमें आप याद करेंगे अपने उन दिनों को जब किसी के साथ में आपने एक प्यारी सी शाम बिताई होगी।

इतने सारे सॉन्ग्स तो हमने एंजॉय कर लिए जी हाँ मॉनसून स्पेशल वाले शो में। और मॉनसून स्पेशल शो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि एक जो सॉन्ग है वो मेरे जहन में यूं आया था कि हमने किसी से फरमाया कि जनाब हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो थोड़ा सा वक्त तो बनता है ना आपके साथ में, बिल्कुल कॉफ़ी बनती है, चाय बनता है और थोड़ा घूमना शूमना भी बनता है। लेकिन जनाब ने इनकार कर दिया, और इनकार करने का कारण वही जो आमतौर पे हर एक महापुरुषों का होता है, नॉर्मल पुरुष तो ना नहीं करते हैं। हाँ जी, तो उन्हीं में से थे वो जिनसे हमने दरकार की। लेकिन जब हमको ये आइडिया हमारे जहन में आया तो हमने कहा कि इस सॉन्ग को भी आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। और इस सॉन्ग के जो बोल हैं वो कुछ यूं हैं, हाँ हाँ हाँ वही वाला सॉन्ग कि तेरी दो टकिया दी नौकरी पे मेरा लाखों का सावन जाए। वैसे सावन केवल लाखों का नहीं होता है जनाब, इतना कीमती होता है ना कि बस उसका कोई भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल बढ़ते हैं इस सॉन्ग की ओर। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान मूवी का ये उम्दा वाला सॉन्ग एवरग्रीन सॉन्ग, चलिए मिलके एंजॉय करते हैं।

तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो वेमिसली 89.6 एफएम पे अपना फेवरेट वाला शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जहाँ पे गीत तो होते हैं लेकिन उस दौर के, उस जमाने के, जो आपको अपने तक बुला ही लेते हैं और हम कहीं जाके गुम से हो जाया करते हैं। और आज का सफर यहीं पे हमको कहता है कि थोड़े से थम जाते हैं ताकि फिर से हम आपसे आके किसी नए सफर पे आपको ले चलें। आज की ये भीगी रात और ये भूले बिसरे तराने उम्मीद है आपके दिल को भी भीगो गए होंगे। मैं आरजे अनोखी अब लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन जाते जाते आज कहूंगी, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, और हर पुराने गाने में हमारी अधूरी बात। तो ये अधूरी बात हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन बतौर तोहफा ये वाला सॉन्ग स्पेशली आपके लिए, जो कि बहुत बहुत बहुत बहुत आला है। और इसी के साथ, भीगी बातों के साथ, शुभ रात्रि और प्यार भरी बारिश की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त और एक नए चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।